0: सुनो शारदा 90.8 FM।
1: हरे कृष्णा, आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM। हमें भगवद गीता एक बहुत सुंदर बात बताती है। वह हमें बताती है कि जिस प्रकार से एक गांव में बहुत सारे कुएं होते हैं, किसी कुएं में कपड़े धोते हैं, किसी में हम स्नान करते हैं, परंतु इन सारे कुओं का जो कार्य है, एक नदी पूर्ण कर देती है। उसी प्रकार से अगर हम अपने जीवन में बहुत सारे लक्ष्यों को एक साथ लेकर चलेंगे, तो हम भी इसी प्रकार से अलग अलग कुओं में जाना पड़ेगा। लेकिन अगर जीवन में एक लक्ष्य बनाकर उस पर पूरे फोकस से कार्य करें, तो आप उसको बहुत आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। इसीलिए फोकस होना जीवन में बहुत आवश्यक है। हरे कृष्णा।

0: नमस्कार, मैं हूं अभिनव चतुर्वेदी और आप सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।
1: हर हर बम बम ओम नमः शिवाय। शिव कथा प्रेमी बंधुओं, आपने आज तक ना जाने भोलेनाथ की कितनी पावन कथाएं सुनी होंगी, लेकिन आज मैं आपको भगवान शिव और मां पार्वती के प्रेम की ऐसी पावन कथा सुनाने जा रहा हूं जिसे सुनकर आपके जीवन में प्रेम के मायने बदल जाएंगे। मां पार्वती जन्म से ही भोलेनाथ को अपना पति स्वीकार करे हुए थी। माता पिता सखी सहेली गुरुओं ने ऋषियों ने सब ने मिलकर पार्वती को कितना समझाया कि पार्वती वो औघड़ है, योगी है, मृग छाला पहने रहता है, तन पे भभूति रमाता है, भांग धतूरा खाता है, भूत प्रेत जिसके गण है। हे पार्वती, तू महलों में पली बड़ी हुई है, भला उस वीरान शमशान में जाकर उस औघड़ के साथ किस तरह जीवन बिताएगी। परंतु पार्वती, उन्होंने तो मन ही मन शिव को अपना पति मान लिया था। ऐसी कठोर घनघोर तपस्या की कि शिव जी को प्रसन्न होकर पार्वती को पत्नी रूप में स्वीकार करना पड़ा। तो आइए बंधु, सुनते हैं शिव और

0: फिल्म मेकिंग एक क्रिएटिव फील्ड है और यदि आप क्रिएटिव सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है। तो आज विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
1: The world is here.

नमस्कार, मैं हूं गगन और आप सब सुन रहे हैं शारदा सवेरा। सुनो शारदा 90.8 FM पर। कर्म तेरे अच्छे हैं तो किस्मत तेरी दासी है, नियत तेरी अच्छी है तो घर में मथुरा और काशी है।

से शुक्र करूं तेरी रहमतों का ऐ खुदा, मुझे मांगने का सलीका नहीं है, पर तू देने की हर अदा जानता है। नमस्कार, मैं हूं गगन और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM पर शारदा सवेरा।

0: भाई मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम नए अंदाज में। सुनो शारदा 90.8 एफएम सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम। भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक
1: समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर। तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 एफएम।

0: हाय, मैं हूं रणविजय। आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा एट 90.8 FM।
1: खूबसूरती दिल और जमीर में होनी चाहिए। लोग बेवजह उसे शक्ल और कपड़ों में टटोलते हैं, ये कहना है अज्ञात का। नमस्कार, मैं हूं गगन और आप सुन रहे हैं शारदा सवेरा, सुनो शारदा 90.8 FM पर।

0: सुनो शारदा 90.8 FM।
1: हाय प्रिया, तुम इतनी टेंशन में क्यों हो? आखिर हुआ क्या तुम्हें?
2: रोहन, अब क्या बताऊँ, इतने सारे कोर्स है, समझ नहीं आ रहा बैचलर्स में एडमिशन कहाँ लूँ।
1: अच्छा प्रिया, ये बताओ कि तुम्हें लाइफ में करना क्या है?
2: मुझे मैं चाहती हूँ मेरी आवाज पूरी दुनिया में गूंजे। मैं चाहती हूँ कि कैमरा उठा के निकल जाऊँ और फोटोग्राफी करूँ। मैं चाहती हूँ कि अपने ट्रेवल व्लॉग्स और फिल्में बनाऊँ। मैं चाहती हूँ।
1: मैं समझ गया प्रिया, तुम क्या चाहती हो? तुम ऐसा कोर्स चाहती हो जिसमें रेडियो, फिल्म और एंटरटेनमेंट का कॉम्बो हो।
2: लेकिन ऐसा कोई कोर्स है क्या?
1: बिल्कुल प्रिया, शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट एक ऐसा कोर्स ऑफर करता है जिसमें आपको सब कुछ सीखने को मिलेगा।
2: क्या सच में? इसका मतलब मेरे सपने साकार हो सकते हैं, तो चलें।
1: हाँ, मैंने तो एडमिशन ले लिया है, अब तुम्हारी बारी है।
3: Come and explore the world of Sharda School of Media, Film and Entertainment, which makes you industry ready.
4: और साथ ही साथ आपको मिलेगा ऑपरेशनल सुरुशाद 90.8 FM कम्युनिटी रेडियो स्टेशन के साथ काम करने का सुनहरा मौका, जहां से आप आरजेइंग सीख सकते हैं, प्रोडक्शन करना सीख सकते हैं, वॉइस ओवर करना सीख सकते हैं। और टीवी इंडस्ट्री का मौका चाहते हैं तो शारदा टीवी भी आपको मौका देता है, जहां नजदीकी से एक्टर, डायरेक्टर और प्रोडक्शन टीम के साथ सीखने को बहुत कुछ मिलता है।
3: So, where are you? The world is here at Sharda University.
5: Hi, मैं हूँ विदिता बाग और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM, ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।
4: नमस्कार, आप सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM, मेरे यानी गगन के साथ। जिंदगी को जीने की बातें करते हैं, खुश रहने वाली बातें हम आपके साथ साझा करते हैं और बहुत कुछ खास होता है इस सामुदायिक रेडियो स्टेशन के माध्यम से। ये सारी बातें जन जन तक हम पहुंचा रहे होते हैं। तो 01204060205 पर आप हमें कॉल कर बता सकते हैं कि आपको अपने शहर ग्रेटर नोएडा का कम्युनिटी रेडियो स्टेशन कैसा लगता है। इसके अलावा 90.8 FM@sharda.ac.in पर भी आप हमें मेल कर बता सकते हैं। जिंदगी वाकई बहुत खूबसूरत है, इसे प्यार के साथ, मोहब्बत के साथ, खुशियों के साथ गुजारते चले जाइए। जिंदगी और भी खूबसूरत हो जाती है जब हमारे साथ हमारे टीचर जुड़ जाते हैं, वो टीचर जो कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में हमें तराश रहे होते हैं, हमें एक अच्छा इंसान बनाने की कोशिश करते हैं, बहुत सारी बातें वो हमसे साझा कर रहे होते हैं, हमें बता रहे होते हैं। पढ़ने पढ़ाने की जो बातें वो मैं इसलिए शेयर कर रहा हूं कि BGMC की पास आउट स्टूडेंट हमारे साथ आज जुड़ रही हैं और उनका जो नाम है वो है प्रियंवदा। 2016 में इन्होंने यहाँ से कोर्स किया जिसका नाम है BGMC। तो प्रियंवदा, आपका फाइनली सुनो शारदा 90.8 FM पर बहुत बहुत स्वागत है।
6: थैंक यू सो मच सर।
4: कैसा फील कर रहे हैं? काफी टाइम के बाद आप अपने कैंपस में आए हैं और अपने स्कूल में आए हैं, अपने टीचर से आप मिल रहे हैं, कैसा फील कर रहे हैं?
6: सर, स्कूल वापस आके तो अच्छा लगता ही है, टू मीट ऑल द ओल्ड टीचर्स हु बीन देयर। कुछ टीचर्स तो आई थिंक हैव मूव्ड ऑन फ्रॉम हियर एंड बाकी जो टीचर्स यहाँ पे, आई ऑलवेज हैड अ वेरी स्पेशल रिलेशन विद ऑल ऑफ देम एंड आई यूज टू वर्क अ लॉट। प्रैक्टिकली 3 साल मैंने फैकल्टी रूम से ही अपनी पढ़ाई की।
4: ओह ग्रेट,
6: बिकॉज वहाँ पे आई यूज टू बी द एडिटर फॉर द न्यूज़पेपर आल्सो शार्दन्स की।
4: एक्सीलेंट,
6: तो मैं प्रैक्टिकली वहीं पे रहती थी।
4: मुझे यूं कहें कि मैं बहुत चक्का क्यों रह गया, इसके पीछे एक वजह है कि मैं स्टूडेंट्स को देखता हूँ कि उनको पता ही नहीं होता कि फैकल्टी रूम कहाँ है। मतलब आपने वहाँ अपनी कुर्सी जमा ली और लोगों से मिलते रहे, बात करते रहे, तो क्या क्या सीखा उस दौरान आपने?
6: सो फर्स्ट थिंग व्हाट आई लर्नड वाज द कमिटमेंट टुवर्ड्स योर वर्क, कि कुछ भी हो, जो भी काम हो, 100% वही उसी को करना है विद फुल फोकस एंड लर्निंग फ्रॉम योर मिस्टेक्स। यहाँ पे टीचर्स आर वेरी वेलकमिंग फॉर स्टूडेंट्स टू मेक मिस्टेक्स एंड टू लर्न फ्रॉम इट, बिकॉज वो आई थिंक सबसे बड़ी सीख होती है। अगर अपनी मिस्टेक्स से आप खुद सीख के आगे बढ़ो,

0: तो जो 3 साल मैंने यहाँ पे सीखा अपना सीखा है वो माई टीचर्स हैव बीन माई कॉन्स्टेंट सपोर्ट. इनफैक्ट ऑल माई टीचर्स, स्पेशली एक अभिषेक सर थे, अशरफ सर थे, इन्होंने ही मेरे को पुश किया था यहाँ से बॉम्बे जाने के लिए.
1: ग्रेट. तो उनका एक्सपीरियंस कैसा?
0: उनके साथ सर सीखने को बहुत मिलता था. इनकी क्लासरूम ऐसे क्लासरूम नहीं लगती थी. इट यूज्ड टू बी मोर लाइक सिटिंग, टॉकिंग टू हिम, वर्किंग विद हिम. वो साथ में काम करते थे बच्चों के साथ एंड लाइक वहाँ से उससे सीख बहुत अच्छी मिलती थी. टू एक इनफॉर्मल एटमॉस्फेयर जो क्लासरूम में होता है, तो लाइक आई थिंक फॉर मी वो बहुत अच्छा सीखने का एक्सपीरियंस था.
1: अभिषेक सर से तो फोन पे बातचीत हो जाती
0: है? हाँ, अभिषेक सर से भी आई हैव बीन इन कॉन्टैक्ट उनके साथ, पर वो थोड़ा सा वो मतलब आप वो बहुत पुश करते हैं स्टूडेंट्स को टू द पॉइंट कि अगर उनको पता है कि व्हाट इज द कैपेबिलिटी ऑफ अ स्टूडेंट, वो कितना आगे जा सकता है, तो उनसे तो प्रैक्टिकली हमेशा डांट ही पड़ती रहती है कि तुम लोग कर क्या रहे हो, तुम लोग कुछ कर नहीं रहे हो.
1: अच्छा, प्रेम अदा मुझे ये बताइए कि ये जो बहुत कुछ आपने सीखा अपने टीचर से, अपने कुलीग से, अपने दोस्तों से, मुंबई जब आप गए तो कितना काम आया? आपको लगा कि अगर काश मैं वहाँ ये सारी चीजें मिस कर देती तो मैं यहाँ जीरो से स्टार्ट करती. जो आपने सीखा यहाँ शारदा यूनिवर्सिटी से अपने टीचर से, कितना काम आया?
0: सब बहुत काम आया. इनफैक्ट मैं यहाँ पे जब मेरे को सेकंड ईयर में शारदन्स का एडिटर बनने का मौका मिला था सेकंड ईयर से, सो मैं 2 ईयर्स आई वाज द एडिटर हियर. मेरे को एक तो टाइमलाइन, हाउ टू वर्क विद इन अ टाइम लिमिट, एंड स्टार्टिंग जब मैंने एडिटर से की थी तो वहाँ पे भी मैंने स्टार्ट एज अ राइटर किया था.
1: ग्रेट.
0: एंड आई रोट स्क्रिप्ट्स फॉर टीवी शोज, नॉन फिक्शन टीवी शोज. एंड फिर मैं जब क्रिएटिव फील्ड में गई तो एक सर वो जो फाउंडेशन यहाँ बनी थी
1: वो वहाँ काम आया,
0: वो बहुत वहाँ काम आया. इनफैक्ट उसी पे बिल्ड हुआ है मेरा करियर.
1: एक्सीलेंट. ये आंसर में इसलिए जानना मेरे लिए बहुत जरूरी है क्योंकि हमारे पास कुछ इंटर्न्स आते हैं, बहुत कैजुअली ले लेते हैं कि हम यहाँ से पास आउट हैं, इतने फैमिलियर हो चुके होते हैं कि वो उस चीज को सीखना या समझना नहीं चाहते. आप उनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? क्योंकि बातें अभी शुरू हुई हैं, लेकिन इस मैसेज को मैं अभी इसलिए जानना जरूरी है क्योंकि इस बात का संबंध आपकी बात से संबंध है. तो क्या उनको कहना चाहेंगे कि किस तरीके से वो यहाँ सीखें, किस तरीके से अपने आप को आगे लेकर जा सकते हैं, क्या एक मैसेज होगा?
0: मैं अगर वो मैसेज बताऊं सर, इट इज एक्चुअली कि शारदा में यू हैव एन अपॉर्चुनिटी टू लर्न. आपको जिस डायरेक्शन में सीखना है, जो सीखना है, टीचर्स आर वेरी सपोर्टिव हियर. एंड टू द फैक्ट कि आप स्टार्ट करके यू कैन बिल्ड योर फाउंडेशन,
1: राइट,
0: कि आगे व्हेन यू गो इन द वर्ल्ड यू कंटिन्यू योर करियर, इट रियली हेल्प्स. एंड यू कैन फॉल बैक टू योर फाउंडेशन एनी टाइम. वापस आके यू कैन रीलर्न एवरीथिंग फ्रॉम दीज टीचर्स. दे आर दैट ओपन टू यू एज अ स्टूडेंट. एज अ पास आउट, आई हैव पास्ड आउट इन 2016, बट टू स्टार्ट लर्निंग, बट टू कम बैक टू द रूट्स एंड जस्ट टॉक टू द टीचर्स एंड लर्न एंड लर्न, आई थिंक दिस इज द थिंग. क्योंकि लर्निंग, आई फील देयर इज नो एज टू लर्न.
1: बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही कहा कि जो सीखने की कोई उम्र नहीं होती, कोई सीमा नहीं होती, जब चाहे आप सीख सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं. और अगर मैं समझता हूँ कि कहते हैं ना कि बुनियाद अगर आपकी मजबूत होगी तो उस पर आप इमारत को खड़ा कर सकते हैं. और आपकी बेशक इसमें कोई शक वाली बात है नहीं कि आपकी जो नींव मजबूत रही अपने टीचर्स के सानिध्य में, आपने बहुत कुछ नाम कमाया है, कमा रही है. सो लिसनर्स, मैं बताना चाहूंगा, मेरे साथ जुड़ी हुई हैं, प्रोड्यूसर हैं आप, डायरेक्टर हैं, राइटर हैं आप, हैं प्रेम वदा. तो प्रेम वदा के साथ बहुत सारी बातें हो रही. ये परिचय मैं इसलिए बताना भूल गया, लगा अरे नहीं आप नहीं तो स्टूडेंट है. प्रेम वदा, यहाँ पर एक छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक लेते हैं और आपके साथ जो बातों का सिलसिला है लगातार जारी है. सो डोंट गो एनीवेयर, स्टे ट्यून्ड ऑन योर शारदा 90.8 एफएम. मैं हूं गगन आपके साथ, मेरे साथ हैं प्रेम वदा जो कि प्रोड्यूसर, डायरेक्टर और राइटर हैं. सो कहीं जाएगा मत, सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन शारदा 90.8 FM.

0: वेलकम बैक, एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत। आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुरू शारदा 90.8 FM। मीडिया क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र है और कहा जाता है कि ये मजबूत स्तंभ है, और यहाँ स्टूडेंट आते हैं, अपने आप को आगे लेकर जाना चाहते हैं, बहुत कुछ सीखना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं। तो मैं तो ये कहूँगा कि शारदा विश्वविद्यालय आपके लिए बाहें पसारे इंतजार कर रहा है। यहाँ का जो मास्कॉम है, यहाँ का जो स्कूल है, बहुत सारे स्कूल में यूँ कहें कि स्टूडेंट्स यहाँ आते हैं, सीखते हैं, समझते हैं, और इसके बाद कहीं ना कहीं विदेश में, मुंबई में अपना योगदान दे रहे होते हैं। जैसे कि प्रेमवदा हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, जो कि 2016 में यहाँ से पास आउट रही हैं। बीजीएमसी का कोर्स इन्होंने किया, इसके बाद मुंबई का सफर रहा, और उसके बाद जो मैं अभी थोड़ा ऑफ एयर मेरी आपसे बात हो रही थी, 2019 का रुख किया आपने विदेश की तरफ। ये फर्दर स्टडी के लिए आपको जाना हुआ या कुछ प्रोजेक्ट की वजह से जाना हुआ उधर?
1: 2019 में मैं गई थी जर्मनी फॉर अ वन ईयर कोर्स इन फिल्म मेकिंग। मैंने अपना मास्टर्स इन फिल्म मेकिंग किया है, डॉक्यूमेंट्री फिल्म्स को एज अ स्पेशलाइजेशन लेके। सो एक साल का मेरा कोर्स था वहाँ पे, मेट फिल्म स्कूल करके एक फिल्म स्कूल है बर्लिन में, एंड वहाँ से आई हैव डन माय वन ईयर ऑफ मास्टर्स।
0: वो एक्सपीरियंस कैसा रहा, वहाँ का माहौल कैसा है, यहाँ का कल्चर और वहाँ के कल्चर में कितना जमीन आसमान का फर्क महसूस करते हैं, किस तरीके से पढ़ाई होती है, प्रैक्टिकल पे जोर ज्यादा दिया जाता है या थ्योरी पढ़ाई जाती है?
1: वहाँ पे प्रैक्टिकल पे बहुत फोकस रहता है। इनफैक्ट एज अ फिल्म स्टूडेंट वो एक्सपेक्ट करते हैं कि आप फिल्म एज अ ऑडियंस ना देख के, एज अ स्टूडेंट देख के उस पर क्या अपनी क्रिटिक आप दे सकते हो, वो आपकी थॉट बिल्डिंग करवाते हैं वहाँ पे। कि एक फिल्म को अगर आप देख रहे हो नॉट एज एन ऑडियंस बट एज अ फिल्म मेकर, एज अ स्टूडेंट, तो टेक्निकलिटीज पहचानने का और डिफ्रेंशिएट करने का आप में वो टैलेंट एंड वो स्किल वो लोग डेवलप वहाँ पे बहुत कराते हैं।
0: ग्रेट। उसके बाद फिर जो आप जर्नी रही,
1: yes,
0: वो कैसी जर्नी रही वहाँ? मतलब आपने कुछ प्रैक्टिकल वहीं किए, वहीं काम किया, या उसके बाद बैक टू पवेलियन या हिंदुस्तान आना हुआ?
1: जब मैं बर्लिन में थी, इन सिक्स मंथ्स इनटू माय कोर्स, वहाँ पे तो लॉकडाउन लग गया था बिकॉज ऑफ द कोविड लॉकडाउन। तो फर्स्ट लॉकडाउन वाज, वहाँ पे नोबडी न्यू कि क्या है, कैसे है, क्लासेस कैसे होंगी, क्या होगा। सो कपल ऑफ स्टूडेंट्स वहाँ पे मिलके, इनफैक्ट मेरा एक सीनियर है यहीं शारदा का, वो भी वहाँ पे था, हम दोनों ने मिलके एक फिल्म बनाई। एंड प्रैक्टिकल वी थॉट कि जो हमने अभी तक सीखा है 6 महीने में उसको हम कैसे इम्प्लीमेंट करें। सो स्कूल से वहाँ पे भी बहुत सपोर्ट मिला इन टर्म्स ऑफ इक्विपमेंट वहाँ पे, इन टर्म्स ऑफ स्टूडियो, इन टर्म्स ऑफ वहाँ पे टीचर्स से डिस्कस करना इतनी नॉलेज वो कि हम ये फिल्म शूट करना चाहते हैं। सो वो सारा लेके वी मेड एक्सपेरिमेंटेड विद अ शॉर्ट फिल्म, 3 मिनट की फिल्म है, इट इज ऑन लाइक 1 टेक में हमने पूरी शूट करी, एंड इट इज कॉल्ड कोल मीट। वो लेके भी टीचर्स वर वेरी सपोर्टिव, जब हमने फिल्म उनको प्रेजेंट करी तो उन्हीं का आइडिया था कि अब इस फिल्म को लेके तुम थोड़ा फिल्म मार्केट एक्सप्लोर करो और सीखो। तो वो भी वहाँ पे बैठ के किया था कि हम लोग ने फिल्म फेस्टिवल्स में ये फिल्म डाली, फिर सीखा कि कौन सी मार्केट में कैसी फिल्म चलती है, क्या होता है।
0: तो किस लेवल पर वो फिल्म गई आपकी?
1: वो फिल्म US में हैज वन अवार्ड्स एज बेस्ट डायरेक्टर, बेस्ट फिल्म, एंड आई वाज नॉमिनेटेड फॉर प्रोड्यूसर आल्सो इंडी फिल्म फेस्टिवल्स में इन लॉस एंजलिस। इंडिया में भी 2 फिल्म फेस्टिवल्स, ग्लोबल इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल और गोवा फिल्म फेस्टिवल में ये फिल्म हैज been selected and has won award.
0: Oh great, बधाई हो। आप जिस तरीके से बातें कर रहे हैं और मुझे बता रहे हैं, बहुत सादगी से बातें अपनी रख रहे हैं, अदरवाइज तो लोग ये कहते हैं कि आसमान में उड़ रहे होते हैं। बहुत अच्छी तरीके से आप अपनी बातें हमसे शेयर कर रहे हैं। ग्रेटर नोएडा या इसके आसपास की मैं बात करूँ, इस एरिया में दिल्ली NCR में भी फिल्म फेस्टिवल्स होते रहते हैं, ग्रेटर नोएडा के अलावा मैं बात करूँ नोएडा में भी फिल्म फेस्टिवल है, और आने वाले समय में यहाँ फिल्म सिटी आ रही है, तो क्या कभी कोई यहाँ अपनी फिल्म को लेकर आप आगे गए, एक बात, और दूसरी बात क्या कहना चाहते हैं कि यहाँ जो फिल्म सिटी आ रही है कितना स्कोप होगा स्टूडेंट्स के लिए? 2 बातें।
1: सर, ये फिल्म तो अभी फेस्टिवल सर्किट में चल ही रही है, मैंने इसका इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में, क्योंकि माय एम वाज टू अंडरस्टैंड इंटरनेशनल फिल्म मार्केट। इंडिया का तो लाइक बीइंग एन इंडियन एंड बीइंग अ स्टूडेंट हियर वर्किंग इन बॉम्बे, थोड़ा बहुत आइडिया तो अंडरस्टैंडिंग फिल्म मार्केट की थी, बट बाहर का अंडरस्टैंडिंग लेने के लिए दिस फिल्म पर्पस वाज दैट। अब आफ्टर द फिल्म फेस्टिवल सर्किट नेक्स्ट ईयर फिर ये फिल्म हम लोग यहाँ पे नोएडा दिल्ली में थोड़ा उसको वो करेंगे
0: एक्सप्लोर करेंगे
1: एंड इन टर्म्स ऑफ अगर यहाँ पे फिल्म सिटी आ रही है फॉर स्टूडेंट्स आई थिंक ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है टू लर्न द बेसिकली प्रोडक्शन फिल्म प्रोडक्शन जो हम पेपर पे सीखते हैं और जो हम फिल्म सेट पे सीखते हैं वो बहुत डिफरेंट होता है एक फिल्म एटिकेट होती है जो सेट पे
0: राइट
1: एज अ प्रोफेशनल जब आप स्टेप इन करते हो फिल्म सेट पे वो आई थिंक क्लासरूम के बियॉन्ड एक लर्निंग है
0: बिल्कुल सही कहा
1: वो आप यहाँ पे ऑन पेपर विद टीचर्स जितना सीख सकते हो बट व्हेन यू स्टेप इन टू दैट फिल्म सेट और व्हेन यू स्टेप इन टू लाइक इन अ प्रोफेशनल फील्ड वो आई थिंक स्टूडेंट्स विल गेट अ बेटर अंडरस्टैंडिंग जब यहाँ पे फिल्म सिटी बन जाएगी इट विल बी अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी तो मतलब सबको बॉम्बे नहीं भागना पड़ेगा
0: दिल्ली एनसीआर में बहुत अच्छा स्कोप रहेगा स्टूडेंट्स के लिए जो यहाँ से पढ़ रहे हैं यहाँ से पास आउट हो रहे हैं अभी आपने एक बहुत अच्छी बात छेड़ दी है प्रेमवदा कि एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिलता है जब आप फील्ड में उतरते हैं मैदान में उतरते हैं डायरेक्टर के साथ काम कर रहे होते हैं असिस्टेंट डायरेक्टर होते हैं या कुछ और उस समय बहुत सारी चीजें काम आती हैं कि नो डाउट जैसे आपने खुद कहा कि मैं यहाँ से सीख कर गई थी तो मुंबई में मुझे वो सारी चीजें काम आई कुछ लोग तो जाहिर सी बात है कि अपने समय को खराब कर रहे होते हैं 3 साल या 4 साल व्हाटएवर जो भी है उसके बाद उनको ऐसा लगता है कि मुझे पका पकाया मिल जाए एक तो धैर्य की कमी होती है दूसरा ये भी होता है कि वो सुनना पसंद नहीं करते अगर टीचर जाहिर सी बात है टीचर के साथ भी ये प्रॉब्लम होती है कि स्टूडेंट सुनना नहीं चाहते फिर वो डायरेक्टर की या असिस्टेंट डायरेक्टर की कैसे सुनेंगे अगर वो सारी चीजें यूं कहें कि जो आप एटिकेट्स की बात कर रहे हैं तमीज की बात कर रहे हैं अगर किसी विद्यार्थी में वो सारी चीजें हैं सुनने की क्षमता है सीखना चाहता है टाइम स्पेंड करना चाहता है तो निश्चित तौर पर वो आगे बढ़ेगा और जिस विद्यार्थी के पास ये सारी चीजें नहीं है क्या कहना चाहेंगे
1: अभी भी टाइम है सीखने को बट वहां पे जाके आपको कोई दोबारा अगर आपने गलती करी कोई बैठ के समझाएगा
0: नहीं समझाएगा राइट
1: ये एक चीज है वहाँ पे अगर आपने वो अपॉर्चुनिटी मिस कर दी विद वन
0: किसी mistake, को मतलब नहीं है आपसे राइट
1: फिर वो आगे बढ़ जाएंगे आप अपनी मिस्टेक जहाँ तक आप जब तक रियलाइज करोगे फिर टू स्टार्ट ऑल ओवर अगेन वो थोड़ा एक डिफिकल्ट हो जाता है
0: क्या कहना चाहेंगे शारदा यूनिवर्सिटी में अपने स्कूल में काफी समय के बाद आप आए हैं रेडियो स्टेशन उस वक्त आपका आपके सामने बन रहा था और आज आप रेडियो स्टेशन में है एक और आपका एक साक्षात्कार मैं कर रहा हूँ सो कैसा फील करते हैं अपनी कॉलेज में आकर रेडियो स्टेशन में आकर क्या कहना चाहेंगे फाइनली
1: एक्चुअली सर आई फील वेरी हैप्पी एंड वेरी प्राउड कि जहाँ पे मतलब व्हेन हम लोग थे तो इतना इंफ्रास्ट्रक्चर इतना एम्फेसिस ऑन अ फिल्म स्कूल ऑन मास कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट नहीं था एंड नाउ अब आके देख रही हूँ कि इतना इंफ्रास्ट्रक्चर इतना अपॉर्चुनिटीज यहाँ पे हो गई हैं सो आई फील लाइक कि एज स्टूडेंट्स वी मिस्ड आउट ऑन दैट हम लोगों को हर चीज के लिए वी वर लाइक कि अपने से वो करते थे
0: जी जी
1: बट नाउ यहाँ पे इतनी अपॉर्चुनिटीज देख के फॉर स्टूडेंट्स आई फील रियली हैप्पी एंड रियली प्राउड
0: रियली नाइस सो मैं भी यही कहूंगा आपकी बात का एक निष्कर्ष निकालते हुए कि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं यहाँ पढ़ रहे हैं सीख रहे हैं समझ रहे हैं इस अवसर का उनको फायदा उठाना चाहिए लापरवाही नहीं बरतनी चाहिए क्योंकि अगर आप मुंबई जाना चाहते हैं या फ्रीलांस अपना कुछ काम करना चाहते हैं जो सीखने का मौका आपको मिल रहा है जिंदगी शायद वो दोबारा आपको सीखने का मौका ना दे और अगर आप किसी डायरेक्टर के साथ काम करें तो धैर्य पेशेंस होना बहुत जरूरी है पैशन के साथ आपने उस पेशेंस को जब आप कैरी करके चलेंगे तो निश्चित तौर पर उसका कहीं ना कहीं रिजल्ट जो आएगा परिणाम जो आएगा वो सुखद आएगा सो प्रेमवदा मुझे आपसे बात करके वाकई बेहद खुशी हुई बहुत अच्छा लगा और खास बात ये अच्छी लगी कि जो आपने कहा वो मैंने पाया आपकी सादगी में और मैं आपके भविष्य के लिए बहुत बहुत दुआएं करता हूँ और सब कुछ अच्छा हो बेहतर हो हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं
1: थैंक यू सो मच सर
0: सो लिसनर्स आप थे हमारे साथ प्रेमवदा जो कि एक प्रोड्यूसर हैं डायरेक्टर हैं राइटर हैं ये प्रोग्राम आपको कैसा लगा 01204060205 पर आप हमें कॉल करके बताएगा जरूर इसके अलावा 90.8 FM @sharda.ac.in पर भी आप हमें मेल कर सकते हैं सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुरु शारदा 90.8 FM मैं हूं गगन मुझे दीजिए अनुमति जिंदगी वाकई बहुत खूबसूरत है प्यार के साथ मोहब्बत के साथ गुजारते चले जाइए ना टेंशन लेने की जरूरत ना किसी को टेंशन देने की जरूरत टाटा बाय बाय एंड टेक केयर
2: प्ले क्या बात है

0: फिल्म मेकिंग एक क्रिएटिव फील्ड है और यदि आप क्रिएटिव सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है। तो आज विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
1: The world is here.

0: बेटा दाई माँ से बात कर लेना, पर सबका समय नजदीक आ रहा है, उन्हें कभी भी आना पड़ सकता है।
1: दाई क्यों माँ, गांव में अस्पताल है, बच्चे का जन्म वहीं कराएंगे।
0: पर बेटा हमारे खानदान में सब लोग दाई के हाथों से ही जन्म लेते हैं, अब ये अस्पताल अस्पताल।
1: पहले का समय कुछ और था, अब तो इतनी सुविधाएं हैं, बच्चे का जन्म अस्पताल में ही होगा।
2: बिल्कुल सही कह रहा है आपका बेटा।
0: अरे आशा बहू आओ आओ।
2: सुरेश की अस्पताल में प्रसव कराने की सोच एकदम सही है, अस्पताल में प्रसव सुरक्षित और फायदेमंद होती है। जैसे बच्चे का जन्म प्रशिक्षित डॉक्टर और नर्स के द्वारा होता है, प्रसव के बाद खतरे के लक्षण पहचानकर उनका तुरंत इलाज किया जा सकता है, साफ सफाई का ध्यान रखा जाता है ताकि जच्चा बच्चा को कोई संक्रमण ना हो, खून की जरूरत पड़ने पर वो स्थिति संभाल सकते हैं। इसके साथ ही जननी सुरक्षा योजना के तहत सरकारी अस्पताल में प्रसव कराने पर माँ को प्रोत्साहन धनराशि भी मिलती है, और जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम के तहत अस्पताल में जांचों, दवाओं, एम्बुलेंस, ऑपरेशन, खून और खान पान आदि की भी सुविधा बिल्कुल मुफ्त है।
0: बिल्कुल सही कह रही हो आशा बहू। सुरेश बच्चे का जन्म अब सिर्फ अस्पताल में ही होगा।
2: जे हुई ना बात, तो आप भी समझ गए ना, बच्चे का जन्म सिर्फ अस्पताल में, क्योंकि अस्पताल में प्रसव कराने से फर्क पड़ता है।
3: सुरक्षा गुणवत्ता के साथ पालन पोषण एवं विकास सभी नवजात शिशु का जन्मसिद्ध अधिकार है। यूनिसेफ द्वारा जनहित में प्रसारित

0: भाई?
1: भाई मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM नए अंदाज में।
2: सुनो शारदा 90.8 FM सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम।
3: भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक
4: समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर।
2: तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।

0: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट इज अ टेम्पल ऑफ क्रिएटिविटी। यदि आप मीडिया में करियर बनाना चाहते हैं तो ज्वाइन कीजिए शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट। ये कोर्स ऑफर करता है बैचलर्स एंड मास्टर्स डिग्री इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, स्पेशली डिजाइन फॉर फिल्म, टेलीविजन, ओटीटी प्रोडक्शन, एनिमेशन, वीएफएक्स, गेमिंग डिजाइन, पब्लिक रिलेशन एंड एडवर्टाइजिंग।
1: और हाँ, एक खास बात, SSMFE का अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM, ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन। आर्जिंग, एडिटिंग, प्रोडक्शन और स्क्रिप्ट राइटिंग सिखाने के साथ इंटर्नशिप का भी गोल्डन चांस देता है। तो फिर कहीं देर ना हो जाए, कॉल करिए 01204060210 पर और विजिट करिए www.sharda.ac.in। शारदा यूनिवर्सिटी, नॉलेज पार्क, ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश।

0: हाय नमस्कार, मैं हूँ आरजे रौनक और आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 एफएम पर।
1: नमस्कार, आप सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 एफएम, मेरे यानी गगन के साथ बात हेल्थ की। में आज हम बात करते हैं कि किस तरीके से हम अपने बच्चों की निगरानी कर सकते हैं, किस तरीके से बच्चों को हम संस्कार दे सकते हैं और किस तरीके से वो अगर गलत दिशा में जा रहे हैं तो हम उनको कैसे रोक सकें। जी हाँ, कुछ ऐसी बातें कहीं ना कहीं सुनने को समझने को मिल जाती है, लेकिन कुछ चुनिंदा बातों को अगर हम ध्यान रखेंगे तो निश्चित तौर पर आपका बच्चा आगे चलकर आपका नाम रोशन करेगा, देश का भविष्य वो तय करेगा। जी हाँ, बात करते हैं आपका बेटा या बेटी को अगर कुछ ऐसे सबक सिखाएंगे तो निश्चित तौर पर आपका बच्चा एक संस्कारी बेटा या बेटी बनकर आगे बढ़ता रहेगा। जरूरी है कि उनकी गलतियों पर हमें पर्दा नहीं डालना है, जरूरी है कि उनकी गलतियों को सुधार में लाकर आगे बढ़ते हुए चले जाना है। बात करते हैं कुछ ऐसे ही विषय के विषय में। बच्चे बड़े होकर क्या बनेंगे इसका पता किसी को नहीं, लेकिन वो अच्छे इंसान बनेंगे या नहीं ये आप पर निर्भर करता है। आप सोच रहे होंगे कि कैसे, चलिए हम आपको बताते हैं। दरअसल आपने ये कहावत तो सुनी ही होगी कि बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से होंगे। बच्चे भी वही आम की ही तरह होते हैं जिसको आपको बनाने में बड़ी मेहनत लगती है। अगर आप अपने बच्चों को अच्छी आदतें नहीं सिखाएंगे तो आपके लिए बच्चों के बेहतर भविष्य को तय करना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए जरूरी है कि शुरू से ही बच्चों को अच्छी आदतें सिखाई जाएं। हालांकि मौजूदा वक्त में हम बच्चों की गलतियों को नजरअंदाज कर उन पर हंसते हैं जो उन्हें आगे चलकर बिगाड़ने का काम करती हैं। आइए आपको बताते हैं कि बच्चों को सिखाई जाने वाली 5 ऐसी अच्छी आदतों के बारे में जो उन्हें अच्छा इंसान बनने में मदद करेंगी। बात करते हैं सबसे पहले ईमानदारी के विषय में। ईमानदारी एक ऐसा विषय है कि अगर आपके पास ये है तो निश्चित तौर पर आपको आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता और इसकी जो खुशबू है वो चारों दिशाओं में फैलती है। जी हाँ, बच्चों को शुरू से ही ईमानदारी के रास्ते पर चलना सिखाना होगा और इससे आपको 2 फायदे होंगे। पहला तो ये कि बच्चा सच बोलने में कभी आपसे कतराएगा नहीं और दूसरा उसे अपने व्यक्तित्व को बेहतर बनाने में मदद मिलेगी। ईमानदारी बच्चों में मासूमियत बरकरार रखने का काम करती है। आप बच्चों को झूठ बोलने के परिणामों के बारे में बताएं और उन्हें गलती स्वीकार करना सिखाएं। अच्छा स्वभाव यानी कि गुड मैनर्स टू टीच टू किड्स। माता पिता को अपने बच्चों को जल्द से जल्द अच्छा स्वभाव अपनाना सिखाना चाहिए। अच्छा स्वभाव आपके बच्चे का सोशल IQ तो बढ़ाता ही है, साथ ही उसे बेहतर तरीके से निखार कर सामने आने में भी मदद करता है। अच्छा स्वभाव उसे उसके जीवन में अच्छा इंसान बनने में भी मदद करता है। बात करते हैं हेल्दी फूड्स के विषय में। हेल्दी फूड्स का चुनाव करना ये भी एक बड़ा सब्जेक्ट है, यानी हेल्दी फूड्स सिलेक्शन टू टीच टू किड्स। माता पिता को अपने बच्चों को हमेशा हेल्दी फूड्स का विकल्प चुनना सिखाना चाहिए। जब बच्चों को हेल्दी फूड्स के बारे में पता होगा तो अपने जीवन में हेल्दी रहना वो सीख पाएंगे, हेल्दी लाइफस्टाइल भी फॉलो करेंगे। हेल्दी फूड्स बच्चों के स्वास्थ्य को हेल्दी रखने की एक गारंटी है जिसे हर माता पिता को अपने बच्चों को सिखाना चाहिए। बात करते हैं सम्मान की। सम्मान हर कोई चाहता है, लेकिन अगर आप किसी को सम्मान देते हैं तो निश्चित तौर पर ये आपके सम्मान की बात है, यानी कि रेस्पेक्ट टू टीच टू किड्स। छोटे बड़ों का सम्मान करना हर किसी को आना चाहिए। ये एक ऐसा भाव है जो हर बच्चे में होना चाहिए, फिर चाहे वो बड़े हों या छोटे, सभी का आदर बहुत जरूरी है। एक अच्छा इंसान बनने के लिए बच्चों को शुरू से ही आदर सम्मान करने का भाव सिखाना बहुत जरूरी है। बात करते हैं टाइम की, यानी कि टाइम मैनेजमेंट की। इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में बच्चों को समय का प्रबंधन सिखाना बहुत जरूरी है। बच्चों को ये पता होना चाहिए कि उन्हें अपना समय कब कहाँ खर्च करना है, क्योंकि बीता हुआ समय कभी वापस नहीं आता और उस समय को बर्बाद करना आपके लिए और भी ज्यादा नुकसानदेह साबित हो सकता है। इसलिए बच्चों को समय का प्रबंधन सिखाना बहुत जरूरी है। ऐसी खास जानकारी के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM, मेरे यानी गगन के साथ।
2: हमारा शरीर जब अग्नि के संपर्क में आता है तो शरीर को बड़ी पीड़ा होती है। कल्पना करिए जब किसी इंसान के चारों तरफ आग ही आग हो और जब वो वहां फंस जाए जहां से निकलना मुश्किल हो, तो हम कल्पना कर सकते हैं कि कितनी बड़ी घटना दुर्घटना घट सकती है। आग से अपने आप को हम कैसे बचा कर रखें, वो कौन कौन सी सावधानियां हैं जो आपको हमें बरतने की बहुत जरूरत है। राम राम दो असलाम सत श्री अकाल आदाब, मैं हूं गगन आपके साथ और आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि कहीं कभी जनधन हानि न हो, लेकिन अगर हम लापरवाही बरत रहे हैं तो ये हमारे लिए सही नहीं है। इस गर्मी के मौसम में हमें सिर्फ कुछ सावधानियों को ध्यान में रखने की जरूरत है, क्योंकि दिल्ली NCR में बढ़ती आग की घटनाओं की वजह से जनधन हानि हमें देखने को मिल रही है। और इन घटनाओं से सबक लेते हुए गौतम बुद्ध नगर जिला क्या कर रहा है उसके बारे में बात करते हैं, और हमें क्या करना है। क्लब, होटल, मॉल, स्कूल और अस्पतालों के प्रबंधकों के साथ एक हमें मीटिंग करनी चाहिए, जो कि सरकारी अमला ये करता रहता है समय दर समय। हमारा फर्ज बनता है कि इस तरीके की मीटिंग में हमें सहयोग करना चाहिए। जी हाँ, आपदा प्रबंधन योजना, इसके तहत अग्नि सुरक्षा उपकरण, हर मंजिल पर वर्किंग कंडीशन में स्मोक डिटेक्टर, फायर अलार्म और सही श्रेणी के अग्निशमक यंत्र लगाए, निकास मार्ग यानी कि आपातकालीन सीढ़ियों और बाहर निकलने के रास्तों को हमेशा साफ रखें, वहां कोई सामान जमा ना करें, विद्युत सुरक्षा यानी कि बिजली के आउटलेट को ओवरलोड ना करें, और शॉर्ट सर्किट से बचने के लिए सालाना वायरिंग की जांच करवाएं। इमरजेंसी प्लान यानी अपने संस्थान या घर का एक फ्लोर प्लान यानी निकासी नक्शा बनाएं, और समय समय पर फायर मॉक ड्रिल का अभ्यास करें। आग लगने की स्थिति में तुरंत क्या करें, ध्यान दीजिए, अलार्म बजाएं। आग दिखने पर तुरंत फायर अलार्म का बटन दबाएं और आग आग चिल्लाकर दूसरों को सतर्क करें। तुरंत कॉल करें अग्निशमन सेवा को सूचित करने के लिए, तुरंत 101 नंबर पर कॉल करें। सीढ़ियों का प्रयोग यानी बाहर निकलने के लिए हमेशा केवल सीढ़ियों का उपयोग करें, लिफ्ट का उपयोग बिल्कुल ना करें। धुएं से बचाव अर्थात यदि कमरे में धुआं भरा हो तो नाक मुंह को गीले कपड़े से ढकें और फर्श पर झुककर या रेंगकर बाहर निकलें। दरवाजा जांचें, इसके अंतर्गत बात सामने आती है कि किसी भी बंद दरवाजे को खोलने से पहले उसे हाथ के पिछले हिस्से से छूकर देखें, यदि वो गर्म है तो उसे न खोलें। कहने का आशय यही है कि आपकी जान बेशकीमती है। कहते हैं कि सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी, हमें दुर्घटना घटने से बचाना है तो सावधानी को ध्यान में रखना है। अपना ख्याल रखिए और ऐसी जनहित में जारी जानकारी को सुनने के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM।

0: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, जहां सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया भर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ, आप यही के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in।
1: लक्षण, इसी से तो किसी की पहचान बनती है। और बड़े बुजुर्गों ने कहा भी है कि किसी के दो चार लक्षण जान लो, फिर वो इंसान कैसा है मालूम पड़ जाता है। और यही लक्षण पहचान कर हमने न जाने कितनी लड़ाइयां जीती भी हैं। फिर एक खांसी के लक्षण को हम कैसे नकार कर उसे टीबी में बदलने का मौका दे देते हैं, बताइए। देखिए, सिर्फ पांच बातें ही तो याद रखनी है आपको। दो हफ्ते से लगातार खांसी, बुखार, रात में पसीना आना, भूख न लगना, वजन में लगातार गिरावट, इनका पता चलते ही टीबी की जांच कराइए। और सुनिए, सरकारी स्वास्थ्य केंद्र में यह जांच बिल्कुल मुफ्त है, फ्री। इंडिया वर्सेस टीबी, टीबी हारेगा देश जीतेगा।
2: यह संदेश स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: हाय, मैं हूं नवाजुद्दीन सिद्दीकी और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो।

0: ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਦੂਰੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕੁਝ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਅਧੂਰੀਆਂ ਰਹਿ ਕੇ ਵੀ ਪੂਰੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ
1: ਹੈਲੋ ਮੇਰੇ ਬੈਸਟ ਫਰੈਂਡ ਟਿੰਕੂ
2: ਹੈਲੋ ਮੇਰੀ ਪਿਆਰੀ ਦੋਸਤ ਤਾਰਾ
1: ਅਰੇ ਕੀ ਹੋਇਆ ਟਿੰਕੂ ਤੁਮ ਐਸੇ ਕਿਉਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ
2: ਓ ਮੈਨੂੰ ਬੁਖਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ
1: बुखार?
2: पता नहीं मैंने तो डॉक्टर को दिखाया ही नहीं है
1: ओ नो नो नो नो नो टिंकू बुखार में तेरी पड़ेगी भारी और तुम तो ऐसी जगह रहते हो जहाँ मच्छर भी बहुत हैं हो सकता है मच्छर के काटने से तुम्हें बुखार हुआ हो
2: ओ हाँ और कुछ दिन पहले मुझे मच्छरों ने काटा था

0: अब मैं क्या करूं तारा?
1: क्या हुआ तारा?
2: आ जल्दी आओ अप्पा। टिंकू तुम घबराओ नहीं, सबसे पहले पापा मम्मी से कहो कि तुम्हें जल्दी से डॉक्टर के पास ले जाएं।
1: और हाँ, किसी झोला

0: आप डॉक्टर के पास नहीं बेटा, अपने नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र पर जाना और बिना डॉक्टर से पूछे कोई भी दवाई मत लेना, ओके? कोई भी बुखार दिमागी बुखार हो सकता है, जिससे अपंगता या मृत्यु भी हो सकती है।
1: ठीक है, मैं डॉक्टर को दिखाता हूँ। ओके अंकल, बाय बाय।
2: बाय टिंकू।
0: बाय बाय बेटा, टेक केयर।
2: तुम सब भी समझ गए ना?

0: जरूर जाना, जरूर जाना।
1: अगर नहीं समझे तो मैं आऊंगी करने बार, जैसे आई थी पिछली बार।
2: बिल्कुल नहीं, तारा है हमेशा तैयार, और ये मेरा आखिरी वार।
1: तुम जीती, मैं हारी, तारा तुम हमेशा रखती हो पूरी तैयारी।
2: दोस्तों अब मच्छरों को हराने की बारी तुम्हारी, तो क्या टीम तारा है मच्छरों से लड़ने को पूरी तरह तैयार?
3: टीम तारा।

नमस्कार, आप सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM, मेरे यानी गगन के साथ। भाई जो कहते हैं सच कहते हैं कि जान है तो जहान है, सारी मुश्किलें आसान है, इसलिए हर एक मुश्किल को आसान बनाने के लिए हम आपके साथ जुट जाते हैं, अच्छी अच्छी हेल्थ की बातें आप तक पहुंचा रहे होते हैं। कोरोना का समय हम सबने देखा और जहां ऑक्सीजन की कमी की वजह से मारा मारी थी, अगर ये ऑक्सीजन हमें क्षण भर न मिले तो सच बात तो ये है कि जीवन समाप्त हो जाएगा। इस ऑक्सीजन का किस तरीके से हम ख्याल रख सकते हैं, किस तरीके से नेचर का ख्याल रख सकते हैं, कुछ ऐसी ही बातें, यानी कि शरीर में ऑक्सीजन की कमी होने पर अगर आप 5 फल और सब्जियां खाएंगे तो शरीर को भरपूर रूप से मिलेगी आपको एनर्जी। जी हाँ, शरीर में ऑक्सीजन की कमी होने पर कई तरह की परेशानियां हो सकती हैं, इसलिए ऑक्सीजन का स्तर बनाए रखना बहुत जरूरी है। आइए जानते हैं कि शरीर में ऑक्सीजन के स्तर को कैसे कंट्रोल रखें। लेकिन इससे हटकर एक बात कहना चाहूंगा कि अगर आप पौधे लगाएंगे, किसी पौधे को सींचेंगे तो निश्चित तौर पर वो एक बड़ा वटवृक्ष का रूप धारण कर लेगा जो कि आगे चलकर आपको ऑक्सीजन देगा ही देगा। इसलिए पर्यावरण का ख्याल रखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं तो बात सामने आती है ऑक्सीजन लेवल बढ़ाने वाले कुछ फूड्स के बारे में जानते हैं। शरीर को स्वस्थ रखने के लिए जिस तरह पानी की जरूरत होती है उसी तरह ऑक्सीजन भी बहुत जरूरी है। ये कोशिकाओं को बनाने के साथ साथ उनके बेहतर कार्यों में मददगार होती है। ऑक्सीजन हवा के जरिए शरीर को प्राप्त होता है। हम में से कुछ ऐसे लोग हैं जिनके शरीर में ऑक्सीजन लेवल काफी कम होता है। ऐसे में ऑक्सीजन के स्तर को कंट्रोल करने के लिए आपको कुछ प्रयास की जरूरत है। शरीर में ऑक्सीजन के स्तर को कंट्रोल करने के लिए आप कुछ खाद्य पदार्थों की मदद ले सकते हैं। आइए जानते हैं ऐसे कुछ खाद्य पदार्थों के बारे में। पालक से करें ऑक्सीजन की कमी दूर, कैसे जानते हैं। पालक स्वास्थ्य के लिए काफी हेल्दी होता है। ये न सिर्फ शरीर में ऑक्सीजन की कमी को दूर करने में आपकी मदद कर सकता है बल्कि इससे आप शरीर में आयरन की कमी को भी दूर कर सकते हैं। जी हाँ, आयरन की मदद से शरीर में ऑक्सीजन का प्रभाव बेहतर होता है जिससे आपके शरीर में ऑक्सीजन की कमी दूर होती है। इसके साथ ही ये आपके शरीर की मांसपेशियों की मजबूती को भी बढ़ावा देता है। अब बात करते हैं शकरकंद से करें ऑक्सीजन की कमी दूर, कैसे। शरीर में ऑक्सीजन की कमी होने पर आप शकरकंद का सेवन कर सकते हैं। शकरकंद एंटीऑक्सीडेंट्स का काफी अच्छा स्रोत है। इसकी मदद से आप शरीर के अंगों को सुरक्षित रख सकते हैं। इसके अलावा ये मैग्नीशियम और पोटेशियम का भी अच्छा स्रोत होता है जो शरीर में ऑक्सीजन की कमी से होने वाले नुकसान को कम कर सकता है। बात ऑक्सीजन का स्तर बढ़ाए एवोकाडो, यानी शरीर में ऑक्सीजन का स्तर बढ़ाने में एवोकाडो भी काफी हेल्दी माना जाता है। इससे ब्रेन में ऑक्सीजन का प्रवाह सही तरीके से होता है जिससे शरीर में ऑक्सीजन के स्तर में सुधार ला सकते हैं। बात नींबू की, नींबू है असरदार। नींबू अगर आप शिकंजी में मिलाकर पीते हैं तो जाहिर सी बात है नींबू यूं कहें कि शिकंजी के बगैर अधूरी है। नींबू अगर आप सलाद में डालते हैं तो सलाद स्वादिष्ट हो जाता है। नींबू पानी पीते हैं तो वो आपकी सेहत के लिए बड़ा ही लाभदायक है। शरीर में ऑक्सीजन की कमी होने पर नींबू के रस का सेवन करें। नींबू के रस में मौजूद गुड़ शरीर में ऑक्सीजन लेवल को कंट्रोल करने में असरदार होता है। इसके साथ ही इसमें मौजूद पोटेशियम आपके माइंड को अलर्ट रखने में असरदार होता है। बात तरबूज की, जी हाँ, तरबूज गर्मी के सीजन में हर रोज अगर आप खाते तो निश्चित तौर पर आपको इसका फायदा मिलेगा और गर्मी के मौसम में बहुत तादाद में देखा जाता है तरबूज। जी हाँ, तरबूज से ऑक्सीजन की कमी से राहत मिलती है, कैसे जानते हैं। शरीर में ऑक्सीजन का स्तर बढ़ाने के लिए आप तरबूज का सेवन कर सकते हैं। दरअसल तरबूज में अल्कालाइन की अधिकता होती है जो आपके शरीर के पीएच लेवल को बनाए रखने में मददगार साबित हो सकते हैं। इसके अलावा तरबूज में बीटा कैरोटीन और लाइकोपिन मौजूद होता है जो शरीर में ऑक्सीजन के स्तर को बनाए रखने में असरदार है। तो कहने का आशय सिर्फ और सिर्फ यही है कि अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली का ख्याल रखें और हाँ, नेचर का ख्याल रखें। नेचर का ख्याल रखेंगे तो भरपूर मात्रा में आपको ऑक्सीजन मिलती रहेगी।

0: नमस्कार, मैं अमिताभ बच्चन बोल रहा हूँ। मैंने टीवी को बहुत करीब से देखा है और हराया भी है। सही सुना आपने, बड़े धैर्य की लड़ाई थी वो। पहले मैंने टीबी के लक्षण सही पहचाने, फिर डॉक्टर की सलाह लेकर टीबी का कोर्स पूरा किया और टीबी हार गया। इलाज के दौरान थोड़ा राहत महसूस करते ही कोर्स अधूरा ना छोड़ दीजिएगा, बस इसी गलती से ड्रग रेजिस्टेंट टीबी हो सकता है आपको। इसीलिए टीबी का कोर्स पूरा कीजिए, यही है इसका पक्का इलाज। और सुनिए, टीबी का आधुनिक और संपूर्ण उपचार सरकारी स्वास्थ्य केंद्र में बिल्कुल मुफ्त है, फ्री। मेरी तरह आप भी पूरा इलाज कीजिए और टीबी पे जीत पाइए। इंडिया वर्सेस टीबी, टीबी हारेगा देश जीतेगा।
1: हाय, मैं हूं रणविजय, आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा एट 90.8 FM।
2: राम राम दोस्तों, आप सत श्री अकाल आदाब, मैं हूं गगन आपके साथ और आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना वही कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM विद मी, मेरे यानी गगन के साथ। और स्टूडियो की घड़ी में 9:39 हो चुके हैं। हमारे आसपास क्या खास है उसके बारे में जान लेते हैं। फिलहाल आज जो तारीख है वो है 3 तारीख। 3 तारीख बोले तो मंडे का दिन, और जाहिर सी बात है कि मंडे के दिन बहुत ट्रैफिक हमें ऑन रूट देखने को मिलता है। तो इसीलिए कहा जाता है कि वक्त से पहले, समय से पहले घर से निकलिए, और समय से पहले जब आप निकलेंगे घर के लिए, ऑफिस के लिए, तो निश्चित तौर पर यकीन मानिए कि आप समय पर आप ऑफिस पहुंच पाएंगे। आज हम फरीदाबाद से ग्रेटर नोएडा यानी कि शारदा यूनिवर्सिटी पहुंचे हैं, तो कालिंदी कुंज के बारे में मैं जिक्र करना चाहूंगा। कालिंदी कुंज के जो हालात हैं दिन ब दिन, यूं समझ लीजिए कि ट्रैफिक की वजह से दिक्कतें परेशानी हमारे सामने आ रही हैं। एक बात यह कि श्रावण महीना शुरू हो चुका है, तो जाहिर सी बात है कि श्रावण के महीने में बम बम भोले हर हर महादेव के नारे गूंजते हैं, और साथ ही साथ कांवड़ियां हरिद्वार से जल लेकर अपने जो जिनका स्थान है, जहां उनको पहुंचना है, जहां उनका डेस्टिनेशन पॉइंट है, वहां के लिए वो रुख कर रहे हैं, निकल रहे हैं, और जिसकी वजह से ट्रैफिक व्यवस्था तंदुरुस्त बनाने के लिए कालिंदी कुंज की जो 2 लेन है, जब आप नोएडा की तरफ आ रहे हैं तो 1 लेन को बंद कर दिया गया और वहीं से जाम की स्थिति बनी हुई है। तो इसलिए कह रहा हूं कि समय से पहले आप घर से निकले ताकि आप समय पर ऑफिस पहुंच पाए। यकीन मानिए कि आज भी थोड़ी दिक्कत परेशानी हमें हुई और थोड़ा सा हमें फर्क पड़ा कि यानी कि हम ऑफिस पहुंचते पहुंचते थोड़ा लेट हो गए। और यातायात के नियम कायदे कानून का पालन करिएगा, साथ ही साथ पुलिस व्यवस्था को तंदुरुस्त बनाने के लिए हमारा फर्ज बनता है कि हम उनको सहयोग करें, और जब हम एक दूसरे का सहयोग करेंगे तो कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। लेटेस्ट अपडेट के लिए मैं हूं ना आप तक पहुंचाने के लिए, सिर्फ सुनो शारदा 90.8 FM के माध्यम से सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना वही सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM विद मी, मेरे यानी गगन के साथ। ये कह रहे नंबर लिख, मैं कह रहा हूं मेरा नंबर लिखे, यानी कि 120 40 60 205, इसके जरिए आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा 90.8 FM@sharda.ac.in के जरिए आप हमें मेल कर सकते हैं, और शारदा यूनिवर्सिटी के जो दरवाजे वो आप सबके लिए खुले हुए हैं। वक्त एक छोटी से ब्रेक का, सो डोंट गो एनीवेयर, स्टे ट्यून्ड, ऑल योर शारदा 90.8 FM विद मी, मेरे यानी गगन के साथ। आय हाय क्या बात।

0: हेलो कौन? अरे हम बोल रहे हेलो कौन? अरे हम बोल रहे हम बोल रहे हम बोल रहे हम बोल रहे हम बोल रहे।
1: हाय, मैं हूँ विदिता बाग और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।

0: हर सरकारी स्वास्थ्य केंद्र पर टीबी की मुफ्त जांच, मुफ्त इलाज और पोषण सहायता उपलब्ध है। मन में हो टीबी से जुड़ा सवाल तो करें टोल फ्री नंबर पर कॉल 1800 11 66 66। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
1: वेलकम बैक, एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत। आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना वही सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM विद मी, मेरे यानी गगन के साथ। जनाब मंडे टू सैटरडे सुबह 9 से 10 लाइव में रहता हूँ आपके साथ और हमेशा ईश्वर से, खुदा से, पिता परमेश्वर से यही दुआ, यही प्रार्थना करता हूँ कि आपका दिन शुभमय गुजरे, मंगलमय गुजरे, कहीं कोई दिक्कत परेशानी न हो। हंसते मुस्कुराते जब आप आगे बढ़ते हैं तो निश्चित तौर पर यकीन मानिए कि आप अपनी मंजिल को पा ही लेते हैं। इसलिए खुश रखिए अपने आप को, अपनी सेहत का ख्याल रखिए, लापरवाही मत बरतिएगा। बरसात के मौसम में दिक्कतें परेशानियां आपके शरीर को कहीं ना कहीं परेशान करती ही करती हैं, है ना। शुद्ध खान पान रखेंगे तो सब अच्छा होगा, बेहतर होगा। बाकी का भोले बाबा की जो कृपा है वो आपके ऊपर बनी रहे। सावन का पहला सोमवार, तो जाहिर सी बात है कि मंदिरों में चारों तरफ गूंज ही गूंज है, धूम ही धूम है और व्रत अनुष्ठान लोग रख रहे हैं और नियम शुद्धि के साथ आगे बढ़ रहे हैं। शिवलिंग का श्रृंगार कर रहे हैं, गंगा जल, पंचामृत, भांग, धतूरे और सफेद फूलों से मंदिर सजे पड़े हुए हैं। भक्तों की जो कतारें हैं वो देखते ही बन रही हैं। जलाभिषेक, दर्शन, व्रत, आय है, क्या बात है, बहुत ही खूबसूरत दृश्य। मंत्रोच्चार यानी कि ओम नमः शिवाय, महामृत्युंजय मंत्र की गूंज भी देखते ही बन रही है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। खैर कुल मिलाकर यही कि आने वाला समय आप सबके लिए शुभ हो और तन मन धन की शुद्धि रखेंगे तो निश्चित तौर पर सब अच्छा होगा, बेहतर होगा। ये भी सच है कि मॉनसून और सावन का सोमवार, बारिश के साथ साथ कुछ दिक्कतें परेशानियां भी हमारे सामने आती हैं। तो ट्रैफिक की जो एडवाइजरी है घर से निकलते वक्त, उसके बारे में भी आप जान लीजिएगा, समझ लीजिएगा कि ताकि कहीं कोई दिक्कत परेशानी आपको हो ना। ये बेसिक बातें, इनको नज़रअंदाज करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, है ना। और ये जब तक जल चढ़ेगा कहीं कहीं थोड़ी बहुत दिक्कतें परेशानियाँ आपके सामने आ सकती हैं, लेकिन अलर्ट रहेगा, लापरवाही मत बरतेगा। वक्त एक छोटे से ब्रेक, सो डोंट गो एनीवेयर, स्टे ट्यून्ड ऑल योर सोर्स 90.8 FM विद मी, मेरे यानी गगन के साथ।

दो दीवाने शहर में, म्यूजिक प्रोड्यूस्ड एंड अरेंज्ड बाय जैकी वंजारी, सिंगर सोनू निगम एंड ऐश्वर्या भंडारी, लिरिक्स बाय कुमार, म्यूजिक बाय श्रेयस पुराणिक। दो दीवाने शहर में ओनली ऑन सारेगामा, सो लेट्स एंजॉय इट, केवल सुरोशादा 90.8 FM।

वेलकम बैक, एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत। आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना वही कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुरुशाधा 90.8 FM विद मी मेरे यानी गगन के साथ। वक्त का इशारा, मैं होता हूँ 9:11, लेकिन उससे पहले कुछ खास बातों के साथ मैं आपको छोड़कर जा रहा हूँ। ब्रेक पर जाने से पहले मैंने बहुत सारी बातें की कि ट्रैफिक अपडेट के बारे में। शिव सोमवार यानी कि श्रावण महीने का पहला सोमवार, इस दिवस की आप सभी को बहुत बहुत दुआएं, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ऑन रोड दिक्कतें परेशानी आपको हो सकती हैं, लेकिन सामंजस्य से यानी कि समझौते के साथ, एक दूसरे के सहयोग के साथ आप आगे बढ़ेगा, पुलिस का सहयोग करेगा और पुलिस भी हमारे लिए सतर्क है। मैं बात करना चाहता हूँ दिल्ली NCR में रिंग रोड और मुकरबा चौक, ये एक चौक है, मुकरबा चौक से वजीराबाद पुल की ओर भारी वाहनों के जाने पर रोक है और इन्हें चांदनी राम अखाड़ा की तरफ डायवर्ट किया जा रहा है। शाहदरा, कड़कड़डूमा, GT रोड, अप्सरा बॉर्डर से यमुना ब्रिज, विकास मार्ग, पुस्ता रोड और बाहरी रिंग रोड के कुछ हिस्सों पर कांवड़ शिविरों की वजह से यात्रियों की संख्या बढ़ने की वजह से ट्रैफिक काफी धीमा है। चिल्ला बॉर्डर, DND और कालिंदी कुंज पर सघन चेकिंग है। और सच बात तो ये कि कांवड़ का महीना और सावन के महीने के साथ साथ स्वतंत्रता दिवस भी आने वाली है, तो हर बात को ध्यान में रखते हुए चाक चौबंद है इस वक्त दिल्ली। तो ऑन रोड जब आप निकल रहे हैं तो आपके व्हीकल के जो कागज हैं, कागज तो दिखाना पड़ेगा ना, तो कागज मांगे तो जरूर आप उनको शो कर सकते हैं ताकि आपको कोई दिक्कत परेशानी न हो। अगर कहीं कोई दिक्कत परेशानी महसूस होती है तो हेल्पलाइन नंबर यानी कि कुछ अगर डिटेल आप चाहते हैं तो दिल्ली ट्रैफिक पुलिस एक्स पेज पर भी आप विजिट कर सकते हैं और 24/7 कंट्रोल रूम यानी कि 1095 पर आप कॉल कर मालूमात हासिल कर सकते हैं। तो यानी कि कुछ ये छोटी छोटी बातें, इनको नजरअंदाज न करें और अपनी सेहत का ख्याल रखें। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, फिर होगी आपसे मुलाकात। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, नमस्कार।

0: सुनो शारदा 90.8 FM।
1: ये मेरा छोटा भाई है ना, बड़ा शरारती है। कॉलेज में मार्कशीट फोटोशॉप करके पापा को दिखाता था। कल मैंने लाइट बिल पर जीरो अमाउंट देखा तो सोचा इसने पक्का फोटोशॉप किया होगा, वरना जीरो बिजली बिल कैसे पॉसिबल है। पूछा तो बोलता है, भैया सब ऊपर वाले की दया है, सोलर पैनल है ना। मैंने कहा ओ ये सही है बेटा।
2: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
3: हर घर सूर्य घर।
4: हाय प्रिया, तुम इतनी टेंशन में क्यों हो, आखिर हुआ क्या तुम्हें?
5: रोहन अब क्या बताऊँ, इतने सारे कोर्स है, समझ नहीं आ रहा बैचलर्स में एडमिशन कहाँ लूँ।
4: अच्छा प्रिया ये बताओ कि तुम्हें लाइफ में करना क्या है?
5: मुझे मैं चाहती हूँ मेरी आवाज पूरी दुनिया में गूंजे। मैं चाहती हूँ कि कैमरा उठा के निकल जाऊँ और फोटोग्राफी करूँ। मैं चाहती हूँ कि अपने ट्रेवल व्लॉग्स और फिल्में बनाऊँ। मैं चाहती हूँ।
4: मैं समझ गया प्रिया तुम क्या चाहती हो, तुम ऐसा कोर्स चाहती हो जिसमें रेडियो, फिल्म और एंटरटेनमेंट का कॉम्बो हो।
5: लेकिन ऐसा कोई कोर्स है क्या?
4: बिल्कुल प्रिया, शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट एक ऐसा कोर्स ऑफर करता है जिसमें आपको सब कुछ सीखने को मिलेगा।
5: क्या सच में? इसका मतलब मेरे सपने साकार हो सकते हैं, तो चलें।
4: हाँ मैंने तो एडमिशन ले लिया है, अब तुम्हारी बारी है।
6: Come and explore the world of Sharda School of Media, Film and Entertainment, which makes you industry ready.
7: और साथ ही साथ आपको मिलेगा ऑपरेशनल सुरक्षा 90.8 FM कम्युनिटी रेडियो स्टेशन के साथ काम करने का सुनहरा मौका, जहां से आप आर्जिंग सीख सकते हैं, प्रोडक्शन करना सीख सकते हैं, वॉइस ओवर करना सीख सकते हैं। और टीवी इंडस्ट्री का मौका चाहते हैं तो शारदा टीवी भी आपको मौका देता है, जहां नजदीकी से एक्टर, डायरेक्टर और प्रोडक्शन टीम के साथ सीखने को बहुत कुछ मिलता है।
6: So, where are you? The world is here at Sharda University.
4: हाय प्रिया, तुम इतनी टेंशन में क्यों हो, आखिर हुआ क्या तुम्हें?
5: रोहन अब क्या बताऊँ, इतने सारे कोर्स है, समझ नहीं आ रहा बैचलर्स में एडमिशन कहाँ लूँ।
4: अच्छा प्रिया ये बताओ कि तुम्हें लाइफ में करना क्या है?
5: मुझे मैं चाहती हूँ मेरी आवाज पूरी दुनिया में गूंजे। मैं चाहती हूँ कि कैमरा उठा के निकल जाऊँ और फोटोग्राफी करूँ। मैं चाहती हूँ कि अपने ट्रेवल व्लॉग्स और फिल्में बनाऊँ। मैं चाहती हूँ।
4: मैं समझ गया प्रिया तुम क्या चाहती हो, तुम ऐसा कोर्स चाहती हो जिसमें रेडियो, फिल्म और एंटरटेनमेंट का कॉम्बो हो।
5: लेकिन ऐसा कोई कोर्स है क्या?
4: बिल्कुल प्रिया, शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट एक ऐसा कोर्स ऑफर करता है जिसमें आपको सब कुछ सीखने को मिलेगा।
5: क्या सच में? इसका मतलब मेरे सपने साकार हो सकते हैं, तो चलें।
4: हाँ मैंने तो एडमिशन ले लिया है, अब तुम्हारी बारी है।
6: Come and explore the world of Sharda School of Media, Film and Entertainment, which makes you industry ready.
7: और साथ ही साथ आपको मिलेगा ऑपरेशनल सुरक्षा 90.8 FM कम्युनिटी रेडियो स्टेशन के साथ काम करने का सुनहरा मौका, जहां से आप आर्जिंग सीख सकते हैं, प्रोडक्शन करना सीख सकते हैं, वॉइस ओवर करना सीख सकते हैं। और टीवी इंडस्ट्री का मौका चाहते हैं तो शारदा टीवी भी आपको मौका देता है, जहां नजदीकी से एक्टर, डायरेक्टर और प्रोडक्शन टीम के साथ सीखने को बहुत कुछ मिलता है।
6: So, where are you? The world is here at Sharda University.

नमस्कार, आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन। जैसा कि आप जानते हैं, इन दिनों 100 दिवसीय टीबी जागरूकता अभियान चल रहा है, तो इसी क्रम में सुनते हैं सेहत सही लाभ कई के अंतर्गत एक विशेष कार्यक्रम जो आपको टीबी के प्रति जागरूक करेगा और आप इस बीमारी से बच पाएंगे और अपने परिवार को बचाएंगे, साथ ही साथ औरों को भी जागरूक करेंगे। तो आइए सुनते हैं ये विशेष कार्यक्रम जो आधारित है 100 दिवसीय टीबी जागरूकता अभियान पर।

0: नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज के इस खास कार्यक्रम सेहत सही लाभ कई में, जहां हम बात करते हैं आपकी सेहत के बारे में और बताते हैं कि कैसे आप अपने आप को स्वस्थ और जागरूक रख सकते हैं। आज हमारे साथ हैं सेहतिया सिंह जी।
1: आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप हमेशा से ही लोगों को सेहतमंद रहने के लिए प्रेरित करने में हमारी सहायता करते हैं और आज का एपिसोड तो आप जानते ही हैं कि बहुत खास है।
2: श्रेयसी, बिल्कुल जानता हूँ। सबसे पहले आपका शुक्रिया, साथ ही साथ हमारे सहयोगी शशि कपूर का भी बहुत बहुत धन्यवाद। और धन्यवाद करता हूँ भारत सरकार का, जो एक मुहिम चला रही है टीबी हारेगा देश जीतेगा, उसमें हम सब कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ रहे हैं और इसमें हमें सहयोग मिल रहा है एक जो संस्था है जिसका नाम है स्मार्ट। उसी के तहत हमने एक वादा किया है कि कुछ विशेष कार्यक्रम करेंगे, जैसे कि आज हम यहाँ पर रेडियो पर चर्चा परिचर्चा में भाग ले रहे हैं, कुछ पोस्टर मेकिंग के कार्यक्रम हो रहे हैं और भी बहुत कुछ। बड़े बड़े अधिकारी भी हमसे जुड़ रहे हैं जो कि टीबी के विषय में लोगों को जानकारी दे रहे हैं। मैं तो आपका और आपके रेडियो का बहुत खूब ध्यान करता हूँ, क्योंकि आप कितने लोगों को सेहत के विषय में जानकार बना रहे हैं। गांव में निकल जाओ, किधर भी निकल जाओ, तो चहुं ओर यानी कि चारों दिशाओं में सुनो शारदा 90.8 एफएम की चर्चा होती है।
0: बात तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं सेहतिया सिंह जी। आप और भाभी हमारे साथ ना जुड़े तो भला हम कहां से इतनी जानकारी दे सकते हैं।
2: भाई भाभी का आपने जिक्र कर दिया है तो चलो खरी अंदर की बात है भैया। 24 मार्च विश्व टीबी दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिन 1882 में डॉक्टर रॉबर्ट कोच द्वारा टीबी के बैक्टीरिया माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस की खोज हुई थी, इसलिए 24 मार्च को एक वर्षगांठ के रूप में मनाया जाता है।
1: तो ये इतनी पुरानी बीमारी है और हम इससे आज तक जूझ रहे हैं।
2: शेसी, आपने बहुत सही सवाल किया, यही तो दुखद बात है, लेकिन ये सच है। और आज भी हमारे देश में अनेकों प्रयासों के बाद भी लोग इस बीमारी को गंभीरता से नहीं लेते, समय पर टेस्ट नहीं करवाते, समय से दवाई नहीं लेते और सावधानी तो बिल्कुल ही नहीं बरतते।
1: सही कहा आपने। हम भी तो लंबे समय से अपने सामुदायिक रेडियो के माध्यम से बार बार ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि टीबी को जड़ से खत्म करने के लिए टेस्ट और इलाज की जरूरत है। टीबी से डरने की या उसके लक्षण को छिपाने की जरूरत नहीं है।
0: सही कहा तुमने कि टीबी से घबराने की जरूरत तो है ही नहीं।
2: भाई शशि, इसका तो बहुत ही छोटा सा फंडा ये है कि जागरूक रहो और समय रहते बिना किसी बहानेबाजी या लापरवाही के टेस्ट करवाओ। हाँ, रही बात टेस्ट की, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ शारदा अस्पताल का टीबी विभाग इसमें सरकार के साथ कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ रहा है। तो यहाँ पर भी बहुत सारे मरीज आते हैं जब हम लोगों से मिलते हैं, बातचीत करते हैं और हमने लोगों को जागरूक भी किया है। अब मैं आगे बढ़ता हूँ, तो अगर आप किसी भी संक्रामक व्यक्ति के टच में आए हो या आपको कोई भी टीबी का लक्षण दिखाई दे तो टेस्ट जरूर करवाएं, और अगर पॉजिटिव हो तो अपने इलाज के लिए तैयार हमेशा रहें।
0: ये सब तो सही कह रहे हो आप सेहतिया सिंह जी, तो क्यों ना हम एक बार फिर अपने श्रोताओं को टीबी से संबंधित कुछ जरूरी बातें बता दें।
2: क्या बात है, ये तो आपने हमारे मन की बात ही छीन ली, क्यों नहीं। सो दोस्तों, आपने टीबी या क्षय रोग या फिर तपेदिक के बारे में तो आप सब जान ही गए होंगे, लेकिन आप शायद ये नहीं जानते होंगे कि क्षय रोग भारत के लिए गंभीर समस्या बन गई है, जो ये एक संक्रामक और हवा से फैलने वाला रोग है, जो संक्रमित व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति तक हवा के माध्यम से पहुंचता है। टीबी के चलते प्रतिदिन लगभग 4,000 लोग अपनी जान गंवाते हैं। इस बात को ध्यान रखे, अंडरलाइन कर रहा हूँ, दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ कि हर रोज 4,000 लोग अपनी जान गंवाते हैं। सोचिए, उसमें से एक डॉक्टर हो सकता था, इंजीनियर हो सकता था, एक क्रिकेटर हो सकता था, और किसी की जान टीबी की वजह से चली जाए, जबकि हमारे पास इसका इलाज संभव है, तो ये सोचने की बात है। और करीब 28,000 लोग, श्रेयसी और शशि, मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस बीमारी के शिकार होते हैं।
1: तो सेहतिया भैया, इसके लक्षण क्या क्या है, उस पर भी थोड़ा प्रकाश डालिए।
2: भाई श्रेयसी, आप बहुत समझदारी वाली बात कर रही हैं। अच्छा लग रहा है कि हम एक दूसरे से कनेक्ट होते हुए इस प्रोग्राम को आगे लेकर जा रहे हैं। लक्षण की बात ये सामने आती है कि लगातार 2 हफ्ते से ज्यादा खांसी रहना। श्रोताओं ध्यान से सुनना, खांसी में खून आना, तेज बुखार और रात को पसीना आना, बिना किसी कारण अचानक वजन कम होना, थकान और कमजोरी महसूस होना, भूख कम लगना और शरीर में सुस्ती रहना, छाती में दर्द या सांस लेने में तकलीफ होना, शरीर के किसी भी हिस्से में गांठ होना या फिर किसी संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आना।
0: बिल्कुल, कल ही आयुष्मान आरोग्य मंदिर के डॉक्टर साहब ने मुझे बताया कि कई शोधों से ये साबित हुआ है कि लगभग हम सभी टीबी बैक्टीरिया के संपर्क में आते हैं। केवल गरीब या आर्थिक रूप से कमजोर लोग ही नहीं, बल्कि किसी भी वर्ग के व्यक्ति इस बैक्टीरिया से प्रभावित हो सकते हैं। इसका मुख्य कारण ये है कि टीबी का बैक्टीरिया कैसे और कब सक्रिय होता है। हम रोजाना भीड़ भाड़ वाली जगहों पर जाते हैं, सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करते हैं और कई लोगों के संपर्क में आते हैं। टीबी का बैक्टीरिया किसी के भी शरीर में मौजूद हो सकता है, लेकिन ये असिम्प्टोमेटिक भी रह सकता है, यानी इसके लक्षण तुरंत दिखाई नहीं देते। हालांकि जब तक आप युवा और स्वस्थ हैं और आपकी प्रतिरक्षा प्रणाली ठीक से काम कर रही है, तब तक आपका शरीर इस बैक्टीरिया को नियंत्रित रखता है, उसे एक तरह से कैप्सूल में बंद कर देता है। लेकिन जैसे ही आपकी प्रतिरक्षा प्रणाली कमजोर होती है, टीबी सक्रिय हो जाता है और रोग फैलने लगता है।
1: मतलब है कि जब आप मजबूत रक्षा और मजबूत प्रतिरक्षा प्रणाली के साथ स्वस्थ हैं, तो कैप्सूल के अंदर रोगाणु जीवित रहेंगे और कोई नुकसान नहीं करेंगे।
2: भाई आप दोनों बड़ी अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं, और जब इतनी अच्छी अच्छी बातें हो रही हैं, तो सेहतिया सिंह अच्छी बातों के साथ कुछ और अच्छी बातें कर ही लेता है। भाई बिल्कुल सही कह रहे हैं आप दोनों। बैक्टीरिया कैप्सूल के अंदर लंबे समय तक, यहाँ तक कि कई सालों तक रह सकते हैं। जब ये बैक्टीरिया कैप्सूल के अंदर होता है तो आप संक्रामक नहीं होते हैं और टीबी के कीटाणु को नहीं फैला सकते हैं और आपका स्वास्थ्य भी बिल्कुल ठीक रहता है। लेकिन अगर किसी भी कारण से आपका बचाव सही तरीके से काम नहीं कर रहा है, तो आपको जीवन शैली से जुड़ी बीमारियां या मधुमेह या HIV जैसी पुरानी बीमारियां हो सकती हैं, या आप ऐसी दवाएं ले रहे हैं जो आपकी प्रतिरक्षा प्रणाली को उतना मजबूत नहीं बनाती है, जैसे कि कैंसर के लिए कीमोथेरेपी या स्टेरॉयड, या यदि आप धूम्रपान करते हैं, या आप बहुत अधिक शराब पी रहे हैं, या अच्छी तरह से नहीं खा रहे हैं और अपना ख्याल नहीं रख रहे हैं, तो आपका ये कैप्सूल कमजोर हो जाता है, बैक्टीरिया बाहर निकल सकता है और आप संक्रमित हो सकते हैं।
0: वाह सेहतिया जी, आप तो वाकई ज्ञानी भी हैं और इतने कॉम्प्लेक्स चीजों को इतनी सरल भाषा में समझा भी देते हैं। आपने सही कहा, यदि आप अस्वस्थ हैं या लंबे समय तक किसी बीमारी से पीड़ित व्यक्ति के संपर्क में रहते हैं, तो बैक्टीरिया आपके फेफड़ों या शरीर के किसी अन्य हिस्सों को नुकसान पहुंचाना शुरू कर देते हैं।
1: और जब आप संक्रमित होते हैं, तब आपके लक्षण दिखाई देने लगते हैं, लेकिन आप उन्हें अगर नजरअंदाज कर देते हैं तो आपकी समस्या गंभीर हो सकती है। इसीलिए कोई भी लापरवाही ना करें और अपनी जांच तुरंत करवाएं।
2: सो लिसनर्स, कहने का मतलब यही है जो श्रेयसी और हमारे शशि भैया बातें आपको बता रहे हैं, इन बातों को गांठ बांध लीजिए। और हाँ, एक अन्य महत्वपूर्ण पहलू ये है कि टीबी की दवा केवल उचित जाँच और परीक्षण के बाद ही ली जानी चाहिए और केवल प्रशिक्षित स्वास्थ्य कार्यकर्ता के माध्यम से ली जानी चाहिए। और दवा की ये खास बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ, समय का बड़ा महत्व है। देखिए डॉक्टर कहते हैं कि दवा की प्रत्येक खुराक समय पर लेनी चाहिए। जब आप समय पर लेंगे तो निश्चित तौर पर उसका लाभ आपको मिलेगा और एक महीने के अंदर कीटाणु कमजोर हो जाएंगे और आप किसी और को संक्रमित नहीं कर पाएंगे।
1: लेकिन अगर आप दवाओं का पूरा कोर्स नहीं लेते हैं तो टीबी वापस आ सकता है और टीबी का एक मजबूत रोगाणु बन सकता है। जब ऐसा होता है तो एक से बढ़कर एक एंटीबायोटिक्स भी कीटाणुओं पर काम नहीं करते हैं।
0: बिल्कुल श्रेयसी, लेकिन इस अवस्था को प्रतिरोधी टीबी कहते हैं। दवा प्रतिरोधी टीबी अधिक जटिल होती है और इसका इलाज करना भी कठिन होता है।
2: ये तो आपको हमने पहले भी बता दिया है कि देश भर के सभी आयुष्मान आरोग्य मंदिर, स्वास्थ्य केंद्रों और सुविधाओं में जांच, परीक्षण और उपचार पूरी तरह से निशुल्क है। यदि आपको कोई संदेह है तो कृपया राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 800-11-4x6 यानी कि 4 बार 6 पर कॉल करने में संकोच ना करें। एक बार पुनः बता देता हूं हिंदी में, 1800-11-66-66 पर कॉल करने में बिल्कुल भी आप संकोच ना करें। और पता करें कि आपके लिए सबसे निकटतम केंद्र कहां पर है।
1: और सेहतिया भैया, मैं यहाँ ये भी जोड़ दूं कि आप अपने फोन पर टीबी आरोग्य साथी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं और अपने जिले में सरकारी और निजी क्षेत्र के टीबी स्वास्थ्य केंद्रों को खोजने के लिए स्वास्थ्य सुविधाएं पर जा सकते हैं। आप उन स्वास्थ्य सुविधाओं पर बिंदु व्यक्तियों के नाम और संपर्क नंबर भी प्राप्त कर सकते हैं।
2: तो आप तो जानते ही हैं कि हर जिले में एक्टिव केस फाइंडिंग का काम चल रहा है। सरकार टीबी मुक्त भारत के मिशन को हासिल करने के लिए प्रतिबद्ध है और घर घर जाकर स्क्रीनिंग कर रही है। अगर आपको टीबी बीमारी के लक्षण हैं, तो जल्द से जल्द जांच करवाएं। जितनी जल्दी टीबी का पता लगाया जाता है और उसका इलाज किया जाता है, उतना ही इसका आपके दोस्तों और परिवार के सदस्यों में फैल सकने की संभावना कम हो जाती है और आपके लिए भी पूरी तरह से ठीक होने की और स्वस्थ जीवन व्यतीत करने का मौका होता है।
0: बिल्कुल सियतिया जी, लेकिन मैं आपकी बात में कुछ बातें भी जोड़ना चाहूंगा कि अपने स्वास्थ्य की जिम्मेदारी हमें खुद लेनी चाहिए। तो प्रत्येक व्यक्ति को अपनी जांच स्वयं करानी होगी। ऐसा ही नहीं है कि अगर एक व्यक्ति का इलाज हो रहा है तो आप वही दवा ले सकते हैं और अपने टेस्ट करवाने से या खुद का इलाज करवाने से बच सकते हैं, क्योंकि अलग अलग रोगियों पर कई अलग अलग एंटीबायोटिक दवाओं का उपयोग किया जाता है जो उनकी अपनी प्रतिरक्षा प्रणाली पर निर्भर करता है। टीबी के कुछ रूप कुछ एंटीबायोटिक दवाओं के प्रतिरोधी हैं और ये आपको केवल डॉक्टर ही बता सकते हैं।
2: भाई शशि कपूर साहब, आपने बात अच्छी कही, मैं इस बात को आगे लेकर जाना चाहूंगा। तो बात यही समझ में आती है कि यदि आप टीबी पॉजिटिव हैं लेकिन दवाई ले रहे हैं तो आपको आमतौर पर इस दौरान अलग रहने की आवश्यकता नहीं होती है। हालांकि संक्रमण को अपने परिवार और दोस्तों में फैलने से रोकने के लिए कुछ बुनियादी सावधानियां बरतना हमेशा अच्छा होता है।
0: तो सेहतिया जी, आप हमारे श्रोताओं को एहतियात के बारे में भी बताएं।
2: भाई आप कहें और हम ना बताएं, ऐसा हो नहीं सकता। तो दोस्तों, अगर आपको टीबी है तो सबसे पहले अपने अपने परिवार और अपने दोस्तों के बेहतर स्वास्थ्य के लिए काम, स्कूल या कॉलेज से तब तक दूर रहें जब तक कि आपकी टीबी उपचार टीम आपको ये सलाह न दे दे। खांसते छींकते या हंसते समय अपना मुंह ढक लें। खांसने या छींकने के बाद हाथ धोने की आदत सुनिश्चित करें। किसी भी इस्तेमाल किए गए टिश्यू को सावधानी पूर्वक एक सील बंद प्लास्टिक बैग में फेंक दें। जहां आप रहते हैं वहां ताजी हवा की अच्छी आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए खिड़कियां खोलें। यदि भीड़ भाड़ वाली जगह में रहते हैं तो हवा का संचार सुनिश्चित करने के लिए पंखे का प्रयोग करें। दूसरे लोगों के साथ एक ही कमरे में सोने से बचें। साथ ही नियमित रूप से दवाई लें।
0: बिल्कुल, लेकिन मैं उन श्रोताओं के लिए जो अपने परिवार के किसी टीबी संक्रमित व्यक्ति के साथ रह रहे हैं एक सलाह देना चाहूंगा कि वे भी अपनी जांच करवाएं, क्योंकि हो सकता है कि आप भी संक्रमित हों। ये सिंपल टेस्ट होते हैं। इन परीक्षणों में छाती का एक्सरे या कुछ रक्त परीक्षण, त्वचा परीक्षण या फिर थूक परीक्षण शामिल हो सकते हैं।
1: और कृपया लक्षणों को हल्के में ना लें, क्योंकि याद रखें कि केवल इलाज से ही टीबी की रोकथाम की जा सकती है और टीबी के रोगियों को ठीक किया जा सकता है। अनुपचारित टीबी घातक बन सकती है, हालांकि मौत कम होती है और यहां तक कि अस्पताल में भर्ती होने की भी आवश्यकता नहीं पड़ती है। लेकिन उपचार एक ऐसी प्रक्रिया है जिसका सावधानी पूर्वक और नियमित रूप से पालन किया जाना चाहिए।
2: भाई श्रीसी, आपने बहुत अच्छी तरीके से सीधे सच्चे शब्दों में हमारे श्रोताओं को आपने समझा दिया। मैं यूँ कहना चाहता हूँ दोस्तों कि ये बात बहुत महत्वपूर्ण है। लोगों में ऐसी सोच बनी हुई है कि टीबी हो गई है तो अब कुछ नहीं हो सकता, लेकिन वो ये नहीं जानते कि टीबी की सही समय पर अगर जांच और इलाज हो तो इसके फैलाव को रोका जा सकता है। और यदि नियमित रूप से दवाई ली जाए तो इसका इलाज भी हो सकता है। ये बात बहुत महत्वपूर्ण है। लोगों में ऐसी सोच बनी हुई है कि टीबी हो गई है तो अब कुछ नहीं हो सकता, लेकिन वे ये नहीं जानते कि टीबी की सही समय पर अगर जांच और इलाज हो तो इसके फैलाव को रोका जा सकता है, और यदि नियमित रूप से दवाई ली जाए तो इसका इलाज भी हो सकता है।
0: बिल्कुल, लेकिन सेहतिया जी, इलाज के लिए जरूरी है जांच। टीबी से निपटने के वैश्विक प्रयासों के कारण वर्ष 2019 से अनुमानित 6.3 करोड़ लोगों की जान बचाई जा सकी है। 2022 में कुल 20.77 लाख टीबी के मामले सामने आए और वर्ष 2022 में 100 करोड़ से ज्यादा कमजोर आबादी की टीबी की जांच की गई।
2: मैं एक बात तो कहनी पड़ेगी शशि कपूर साहब, आपने जो पढ़ाई की है बहुत अच्छी की। जो मैंने सुना कि 20.77 लाख, बड़े अच्छी तरीके से आपने इसको उच्चारित किया। तो बात टीबी पर आते हैं, और मैं यही कहना चाहता हूँ कि सबसे अच्छी बात यह है कि अगर कोई भी टीबी पॉजिटिव या बैक्टीरिया से संक्रमित रोगी है तो उसको दवाओं सहित निशुल्क निदान और उपचार की सुविधा भी प्रदान की जाती है। आपको पता है कि सरकार टीबी को खत्म करने के लिए प्रतिबद्ध है, इसलिए जो टेस्ट ट्रीट एंड ट्रैक का मुहिम कोविड से लड़ाई लड़ने में अपनाया गया था, उसी मॉडल को टीबी के लिए भी इस्तेमाल किया जा रहा है।
0: बिल्कुल सेहतिया जी, आपकी बातों से हमें ऐसा भरोसा प्रतीत हो रहा है कि हम टीबी मुक्त भारत बनाने में जरूर सफल होंगे। भागीदारी से तो कुछ भी संभव हो सकता है। याद है, बिल्कुल वैसे ही जैसे हमने कोविड वैक्सीनेशन पर सबसे बड़ा कार्यक्रम चलाया था और उसमें सफलता भी पाई थी, उसी प्रकार इस बार हम टीबी पर वार करने में सफल होंगे।
2: मैं अपने श्रोताओं को बताना चाहता हूं कि टीबी मुक्त भारत के लिए घर घर स्क्रीनिंग और मुफ्त सीबी नेट ट्रू नेट की जा रही है, यानी कि ये एक जांच का नाम है जिससे सुधार साफ नजर आ रहा है। सबसे अच्छी बात यह है कि सरकार निश्चय मित्रों के जरिए समुदाय की भागीदारी बढ़ा रही है, जहां व्यक्ति या संगठन टीबी मरीजों को गोद लेकर उन्हें सही पोषण, दवाइयां और मानसिक समर्थन देते हैं।
0: बिल्कुल, तो दोस्तों टीबी से लड़ने के लिए दवा ही नहीं बल्कि सही पोषण की भी आवश्यकता होती है, इसीलिए सरकार द्वारा चलाई जा रही निक्षय पोषण योजना के तहत टीबी मरीजों को 1,000 रुपए प्रतिमाह पोषण सहायता प्रदान की जाती है। यदि हमारे

0: श्रोता चाहें तो वे भी निक्षय मित्र बन सकते हैं और किसी भी टीबी रोगी को गोद ले सकते हैं और इस मुहिम में अपना योगदान दे सकते हैं।
1: भाई मैं इतना उतावला हो रहा था कि तुम्हारी बात रुके, लेकिन मैं ऐसा लगा मैं कह गया कुछ। लेकिन मैं ये कहना चाह रहा था भाई, शशि कपूर साहब इस मुहिम में लोग आगे आ रहे हैं, बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। और देखिए, हम सोशल मीडिया पर देखते हैं कि लोग अच्छे अच्छे काम की पोस्ट डालते हैं, लोगों की मदद करना चाहते हैं। तो यहाँ पर भी लोगों से मैं आग्रह करता हूँ कि यहाँ पर भी आप आइए, इस सरकार की मुहिम से जुड़िए, लोगों की मदद करिए, उनको दोस्त बनाइए। और टीबी मरीज हम में से आप में से ही है, डरने घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। बस मैं यही कहना चाहता हूँ कपूर साहब कि भारत को टीबी से निदान दिलाने के लिए टेक्नोलॉजी भी कमाल का साथ दे रही है। निश्चय पोर्टल का उपयोग रियल टाइम मरीज ट्रैकिंग, उपचार निगरानी और चिकित्सा उपचार के पालन को सुनिश्चित करने के लिए किया जा रहा है, जिससे मरीजों तक समय रहते बेहतर मदद पहुंचाई जाती है।
0: बिल्कुल सही कहा सीतिया जी आपने। तो दोस्तों याद रखिए, टीबी का इलाज होगा अधूरा तो टीबी मुक्त भारत का सपना नहीं होगा पूरा।
2: टीबी हारेगा, देश जीतेगा।
0: तो सीहतिया जी, आज आपने बहुत ही अच्छी जानकारी हमारे श्रोताओं, हमारे जो सुनने वाले हैं उनके साथ साझा की, और जरूर हमारे सुनने वाले लिसनर आपकी बातों का बखूबी ध्यान रखेंगे। तो चलते चलते अब शपथ भी ले लें।
1: जी बिल्कुल,
3: हम सब मिलकर आज ये शपथ लेते हैं कि हम सब अपने और अपने परिवार की जिम्मेदारी लेंगे, अपने और अपने परिवार के स्वास्थ्य को प्राथमिकता देंगे, क्योंकि सेहत ही असली धन है। सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं और योजनाओं का पूरा लाभ उठाएंगे और दूसरों को भी जागरूक करेंगे। साफ सफाई और स्वच्छता का पालन करेंगे ताकि बीमारियों से बचा जा सके। नियमित जांच और टीकाकरण करवाएंगे और अपने परिवार को भी इसके लिए प्रेरित करेंगे। संतुलित आहार और व्यायाम अपनाएंगे ताकि शरीर और मन दोनों स्वस्थ रहें। महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों की सेहत का विशेष ध्यान रखेंगे। जब पूरा समाज स्वस्थ और सशक्त बनेगा तभी भारत समृद्ध बनेगा। सेहत सही तो लाभ कई, टीबी हारेगा देश जीतेगा।
0: बिल्कुल, अब मुझे समझ आया कि सेहत ही सबसे बड़ा धन है, इसे बनाए रखें, सही जानकारी लें और दूसरों तक भी पहुंचाएं। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और जुड़े रहिए सेहत सही लाभ कई के साथ।
4: मैं डॉक्टर देवेंद्र कुमार सिंह। सो जैसा कि आप जानते हैं, स्मार्ट संस्था के साथ मिलकर सुनो शारदा 90.8 FM पर एक खास कार्यक्रम चल रहा है, सेहत सही लाभ कई। इसका उद्देश्य यही है कि टीबी को हराना और देश को जिताना है। इसमें हम लोगों ने भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, सुनो शारदा की टीम को मरीजों से मिलवाया, उनके इंटरव्यू दिलवाए, निक्षय मित्र के बारे में बताया और समय समय पर FM के साथ मिलकर टीबी के विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की और श्रोताओं तक पहुंचाया। देखिए, मेरा टीबी के मामले में फिर से यही संदेश है कि अगर टीबी को हम हराना चाहते हैं तो अर्ली डायग्नोसिस एंड अर्ली ट्रीटमेंट इज द की फॉर दैट। तो मैं ये कहूँगा कि आप लक्षण हैं अगर आप, तो आप उसको छुपाएं नहीं, और अगर आपको लगता है कि आपके परिवार में किसी को, आपके पड़ोस में, आपके रिलेटिव्स में किसी को हैं, तो ये हम सब लोगों का भी फर्ज बनता है, इसमें कम्युनिटी का भी इन्वॉल्वमेंट जरूरी है कि उसको लेकर किसी क्वालिफाइड डॉक्टर के पास में जाएं। अब जैसे मैंने कहा कि अभी अर्ली डायग्नोसिस, मतलब शुरुआती जब लक्षण कम हैं और जब हम अल्ट्रासाउंड या एक्सरे या सीटी स्कैन कराते हैं तो हम देखते हैं कि लीजन बहुत छोटे छोटे हैं, ऐसे में कई बार चीज़ें पकड़ में नहीं आती हैं स्पुटम वगैरह की जांच में, तो उसके लिए कुछ आधुनिक यू कैन की फैसिलिटीज़ जैसे कि ब्रोंकोस्कोपी, कोई छोटा सा लीजन है तो वहीं, जिसको दूरबीन वाली जांच भी बोलते हैं, वहीं से धुल के बलगम को निकालना और उसमें जांच कराना, या फिर कई बार फेफड़ों के बाहर में झिल्लियों में पानी भर जाता है तो उसमें थोरेकोस्कोपी अल्ट्रासाउंड से निकालना, उसकी जांच करना। तो एक तो ये सभी सुविधाएं जैसे ब्रोंकोस्कोपी, थोरेकोस्कोपी, यहाँ तक कि डायग्नोसिस बनाना सिंपल टीबी की, एमडीआर टीबी की, और इन सभी का ट्रीटमेंट चाहे वो सिंपल टीबी हो या एमडीआर टीबी हो, सरदा हॉस्पिटल में उपलब्ध है, निःशुल्क है उसकी जांच भी, और किसी भी तरह की टीबी का इलाज भी, चाहे वो सिंपल टीबी है जिसको हम सेंसिटिव टीबी बोलते हैं, या एमडीआर टीबी है या एक्सडीआर टीबी है। इन सभी का डायग्नोसिस और इसका ट्रीटमेंट एक ही छत के नीचे आपको उपलब्ध है शारदा हॉस्पिटल के अंदर में। थैंक यू।
0: अभी आप सुन रहे थे 100 दिवसीय टीबी जागरूकता अभियान पर विशेष कार्यक्रम सेहत सही लाभ कई, और अब समय हो चला है आपसे अनुमति लेने का। अगले एपिसोड में फिर से आपसे करेंगे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।

0: हाय नमस्कार, मैं हूँ आरजे रौनक और आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 एफएम पर।
1: नमस्कार, आप सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 एफएम। मेरे यानी गगन के साथ बात हेल्थ की। में आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जो एक गंभीर विषय है। जी हाँ, पेशाब, जिसे हम कहते हैं मूत्र। अगर इसमें खून आ रहा है तो आप एक परेशानी से जूझ रहे हैं। एक्सपर्ट क्या कहते हैं, क्या समस्या है, इसके बारे में बात करते हैं। तो बात सामने आती है कि पेशाब में खून आने की ज्यादातर वजह जैसे कुछ दवाएं, छोटी मोटी चोटें या गुर्दे की पथरी, ये सारी चीजें अस्थाई होती हैं, जिनका लंबे समय तक प्रभाव नहीं पड़ता। ज्यादातर लोगों के लिए मूत्र पथ का संक्रमण इलाज योग्य होता है। अगर जल्दी पता लगा लिया जाए तो मूत्र पथ के कैंसर का भी अच्छा पूर्वानुमान लगाया जा सकता है। मूत्र में रक्त दिखाई देने के अधिकांश मामले आपातकालीन स्थिति नहीं होते हैं। हालांकि यदि आप चक्कर आना, पेशाब करने में असमर्थता या अत्यधिक दर्द जैसे लक्षणों का अनुभव कर रहे हैं तो तुरंत डॉक्टर से मिलें। लेकिन जिन लोगों के पेशाब में खून की अधिक मात्रा आ रही है, पेशाब करते समय अधिक दर्द हो रहा है, पेशाब करने में कठिनाई या अक्षमता महसूस हो रही है, तो उन्हें उसी समय डॉक्टर के पास जाना चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं तो बात सामने आती है कि धैर्य रखना क्यों जरूरी है। अगर आप जिंदगी में धैर्य रखते हैं तो निश्चित तौर पर तमाम बीमारियों से आप अपने आप को बचा कर रख पाएंगे। एक्सपर्ट कहते हैं कि धैर्य मन का वो गुण है जिसके होने से मनुष्य विपत्ति के समय भी विचलित नहीं होता है। धैर्य कठिन परिस्थितियों में भी व्यक्ति की सहन शक्ति की अवस्था है। ऐसी अवस्था जो व्यक्ति के मन को क्रोध अथवा खीज जैसी अवगुणों के प्रभाव से बचाती है। धैर्य के तीन गुण क्या हैं? एक्सपर्ट कहते हैं कि आत्मनियंत्रण, स्थिति के प्रति अपनी प्रतिक्रियाओं को नियंत्रित करने और बिना किसी शिकायत के इसे सहन करने में सक्षम होना, विनम्रता, ये स्वीकार करना कि आप किसी और से अधिक महत्वपूर्ण नहीं है और ऐसा कोई विशेष कारण नहीं है कि आपको इंतजार न करना पड़े, और उदारता, दुनिया को देखकर मुस्कुराना तब भी जब ऐसा लगे ये आपके खिलाफ साजिश रच रही है। तो ये खास जानकारी आपको कैसे लगी बताइएगा जरूर। ऐसी खास अपडेट्स के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM।

0: Hi, this is Sharmali Kholgare and you're listening to me on 90.8 FM Suno Sharda. Suno Sharda.
1: हमारा शरीर जब अग्नि के संपर्क में आता है तो शरीर को बड़ी पीड़ा होती है। कल्पना करिए, जब किसी इंसान के चारों तरफ आग ही आग हो और जब वो वहां फंस जाए जहां से निकलना मुश्किल हो, तो हम कल्पना कर सकते हैं कि कितनी बड़ी घटना दुर्घटना घट सकती है। आग से अपने आप को हम कैसे बचा कर रखें, वो कौन कौन सी सावधानियां हैं जो आपको हमें बरतने की बहुत जरूरत है। राम राम, दो असलाम, सत श्री अकाल, आदाब, मैं हूं गगन आपके साथ और आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि कहीं कभी जनधन हानि ना हो, लेकिन अगर हम लापरवाही बरत रहे हैं तो ये हमारे लिए सही नहीं है। इस गर्मी के मौसम में हमें सिर्फ कुछ सावधानियों को ध्यान में रखने की जरूरत है, क्योंकि दिल्ली NCR में बढ़ती आग की घटनाओं की वजह से जनधन हानि हमें देखने को मिल रही है। और इन घटनाओं से सबक लेते हुए गौतम बुद्ध नगर जिला क्या कर रहा है उसके बारे में बात करते हैं। और हमें क्या करना है, क्लब, होटल, मॉल, स्कूल और अस्पतालों के प्रबंधकों के साथ एक हमें मीटिंग करनी चाहिए, जो कि सरकारी अमला ये करता रहता है समय दर समय। हमारा फर्ज बनता है कि इस तरीके की मीटिंग में हमें सहयोग करना चाहिए। जी हाँ, आपदा प्रबंधन योजना, इसके तहत अग्नि सुरक्षा उपकरण, हर मंजिल पर वर्किंग कंडीशन में स्मोक डिटेक्टर, फायर अलार्म और सही श्रेणी के अग्निशमक यंत्र लगाए, निकास मार्ग यानी कि आपातकालीन सीढ़ियों और बाहर निकलने के रास्तों को हमेशा साफ रखें, वहां कोई सामान जमा ना करें, विद्युत सुरक्षा यानी कि बिजली के आउटलेट को ओवरलोड ना करें और शॉर्ट सर्किट से बचने के लिए सालाना वायरिंग की जांच करवाएं, इमरजेंसी प्लान यानी अपने संस्थान या घर का एक फ्लोर प्लान यानी निकासी नक्शा बनाएं और समय समय पर फायर मॉक ड्रिल का अभ्यास करें। आग लगने की स्थिति में तुरंत क्या करें, ध्यान दीजिए, अलार्म बजाएं। आग दिखने पर तुरंत फायर अलार्म का बटन दबाएं और आग आग चिल्लाकर दूसरों को सतर्क करें। तुरंत कॉल करें अग्निशमन सेवा को, सूचित करने के लिए तुरंत 101 नंबर पर कॉल करें। सीढ़ियों का प्रयोग यानी बाहर निकलने के लिए हमेशा केवल सीढ़ियों का उपयोग करें, लिफ्ट का उपयोग बिल्कुल ना करें। धुएं से बचाव अर्थात यदि कमरे में धुआं भरा हो तो नाक मुंह को गीले कपड़े से ढकें और फर्श पर झुककर या रेंगकर बाहर निकलें। दरवाजा जांचें, इसके अंतर्गत बात सामने आती है कि किसी भी बंद दरवाजे को खोलने से पहले उसे हाथ के पिछले हिस्से से छूकर देखें, यदि वो गर्म है तो उसे न खोलें। कहने का आशय यही है कि आपकी जान बेशकीमती है। कहते हैं कि सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी, हमें दुर्घटना घटने से बचाना है तो सावधानी को ध्यान में रखना है। अपना ख्याल रखिए और ऐसी जनहित में जारी जानकारी को सुनने के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM।

0: Hi, this is Sharmili Kholgare and you're listening to me on 90.8 FM Suno Sharda.
1: सबको हाथ बटाना है, टीबी को मिटाना है. हेलो दोस्तों, मैं हूं दीपाली. आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM. हम लोग स्मार्ट के सहयोग से एक अवेयरनेस कार्यक्रम चला रहे हैं, टीबी हारेगा देश जीतेगा. स्मार्ट अपनी मुहिम में ये सुनिश्चित करने के लिए लगातार प्रयास कर रहा है कि प्रत्येक टीबी रोगी का उपचार हो. अगर आपको टीबी है तो बिल्कुल घबराएं नहीं, बस अपने नजदीकी अस्पताल जाएं और छाती का एक्सरे और बलगम की जांच कराएं और स्मार्ट की इस मुहिम में हमारा साथ दें.
2: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, जहां सपने सच होते हैं. यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया भर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी. यकीन के साथ कहता हूँ, आप यही के होकर रह जाएंगे. अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in.

0: समझ में नहीं आ रहा क्या करूं, किसे दिखाऊं, पता नहीं कितना पैसा खर्च हुआ।
1: अरे मैं तो कहूँ कि तुम इसे लेकर बाबा जी के पास जाओ, बच्चों को अक्सर नजर लग जाती है, अरे नजर झड़वाते ही सब कुछ ठीक हो जाएगा।
2: अरे कहीं ले जाने में जाने की जरूरत नहीं है, जाके मेडिकल स्टोर से दवा ले लो या गांव के बंगाली डॉक्टर को दिखा लो, दोनों ही बहुत जानकार हैं। बड़े अस्पताल में बस बड़ा पैसा खर्च होता है और कुछ नहीं।
3: चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, हम बच्चे को जिला में स्थित बीमार नवजात शिशुओं के लिए अलग से बने अस्पताल जिसको कि SNCO बोलते हैं, वहाँ लेके चल सकते हैं। वहाँ के डॉक्टर साहब और नर्स बहन जी बीमार नवजात शिशुओं की देखभाल में विशेष रूप से प्रशिक्षित हैं। शहर के बड़े अस्पतालों जैसी सब मशीनें इस अस्पताल में हैं। अगर बच्चे की कोई जांच करानी हो तो अस्पताल द्वारा खुद ही करा ली जाती है। नवजात को लेकर इधर उधर भागना नहीं पड़ता है और इन जांचों और दवाइयों पर परिवार को कोई भी खर्च भी नहीं करना पड़ता। इसके साथ बीमार शिशुओं को घर से अस्पताल और अस्पताल से घर वापस छोड़ने के लिए सरकार ने निशुल्क एम्बुलेंस की सुविधा दी हुई है। तो सोचिए कि सरकार ने अगर इतनी व्यवस्था की है तो हम क्यों अपने नन्हे मुन्ने की जान को जोखिम में डालें और क्यों फालतू पैसा खर्च करें।
0: मैंने सोच लिया है, अब अपने बच्चे को 102 एम्बुलेंस में ले जाकर SNCO में ही दिखाऊंगा।
3: तो आपको क्या समझ में आया, फर्क पड़ता है अगर आप अपने बीमार नन्हे मुन्ने को झाड़ फूंक, मेडिकल स्टोर, झोला छाप डॉक्टर या फिर महंगे प्राइवेट डॉक्टर की बजाय जिला अस्पताल में स्थित SNCO में दिखाते हैं, क्योंकि फर्क पड़ता है।
4: सुरक्षा गुणवत्ता के साथ पालन पोषण एवं विकास सभी नवजात शिशु का जन्म सिद्ध अधिकार है। यूनिसेफ द्वारा जनहित में प्रसारित

0: हाय, मैं हूँ विदिता बाग और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM, ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।
1: नमस्कार, आप सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM। भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी मन की बात के माध्यम से जन जन को प्रेरित करते हैं और कहते हैं कि जब आप 18 वर्ष के हो जाएं तो अपना वोटर कार्ड जरूर बनवाएं। वो कहते हैं कि इस उत्सव को अपने जन्मदिन के उत्सव की तरह ही मनाएं। आइए सुनते हैं भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को।
2: मेरे प्यारे देशवासियों, नमस्कार। साथियों, मतदाता ही लोकतंत्र की आत्मा होता है। साथियों, आम तौर पर जब कोई 18 साल का हो जाता है, मतदाता बन जाता है, तो उसे जीवन का एक सामान्य पड़ाव समझा जाता है। लेकिन दरअसल ये अवसर किसी भी भारतीय के जीवन का बहुत बड़ा माइलस्टोन होता है। इसलिए बहुत जरूरी है कि हम देश में वोटर बनने का, मतदाता बनने का उत्सव मनाएं। जैसे हम जन्मदिन पर शुभकामनाएं देते हैं और उसे सेलिब्रेट करते हैं, ठीक वैसे ही जब भी कोई युवा पहली बार मतदाता बने तो पूरा मोहल्ला, गांव या फिर शहर एकजुट होकर उसका अभिनंदन करें और मिठाइयां बांटी जाए। इससे लोगों में वोटिंग के प्रति जागरूकता बढ़ेगी। इसके साथ ही यह भावना और सशक्त होगी कि एक वोटर होना कितना मायने रखता है। साथियों, देश में जो भी लोग चुनावी प्रक्रिया से जुड़े रहते हैं, जो हमारे लोकतंत्र को जीवंत बनाए रखने के लिए जमीनी स्तर पर काम करते हैं, मैं उन सभी की बहुत सराहना करना चाहूंगा। आज मैं अपने युवा साथियों से फिर आग्रह करूंगा कि वे 18 साल का होने पर वोटर के रूप में खुद को जरूर रजिस्टर करें। संविधान ने हर नागरिक से जिस कर्तव्य भावना के पालन की अपेक्षा रखी है, इससे वो अपेक्षा भी पूरी होगी और भारत का लोकतंत्र भी मजबूत होगा। एक बार फिर आप सभी को मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।
1: अभी आप सुन रहे थे भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को। वो कह रहे थे कि वोटर कार्ड जरूर बनवाएं और वोट जरूर डालें। और जैसे ही आप अपना पहला वोटर कार्ड बनवाएं तो उसे अपने जन्मदिन की ही तरह उत्सव के रूप में मनाएं। ऐसी अधिक जानकारी के लिए सुनते रहिए।

0: फिल्म मेकिंग एक क्रिएटिव फील्ड है और यदि आप क्रिएटिव सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है। तो आज ही विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
1: The world is here.

हमारा शरीर जब अग्नि के संपर्क में आता है तो शरीर को बड़ी पीड़ा होती है। कल्पना करिए, जब किसी इंसान के चारों तरफ आग ही आग हो और जब वो वहां फंस जाए जहां से निकलना मुश्किल हो, तो हम कल्पना कर सकते हैं कि कितनी बड़ी घटना दुर्घटना घट सकती है। आग से अपने आप को हम कैसे बचा कर रखें, वो कौन कौन सी सावधानियां हैं जो आपको हमें बरतने की बहुत जरूरत है। राम राम, दो असलाम, सत श्री अकाल, आदाब, मैं हूं गगन आपके साथ और आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि कहीं कभी जनधन हानि ना हो, लेकिन अगर हम लापरवाही बरत रहे हैं तो ये हमारे लिए सही नहीं है। इस गर्मी के मौसम में हमें सिर्फ कुछ सावधानियों को ध्यान में रखने की जरूरत है, क्योंकि दिल्ली NCR में बढ़ती आग की घटनाओं की वजह से जनधन हानि हमें देखने को मिल रही है। और इन घटनाओं से सबक लेते हुए गौतम बुद्ध नगर जिला क्या कर रहा है उसके बारे में बात करते हैं और हमें क्या करना है। क्लब, होटल, मॉल, स्कूल और अस्पतालों के प्रबंधकों के साथ एक हमें मीटिंग करनी चाहिए, जो कि सरकारी अमला ये करता रहता है समय दर समय। हमारा फर्ज बनता है कि इस तरीके की मीटिंग में हमें सहयोग करना चाहिए। जी हाँ, आपदा प्रबंधन योजना, इसके तहत अग्नि सुरक्षा उपकरण, हर मंजिल पर वर्किंग कंडीशन में स्मोक डिटेक्टर, फायर अलार्म और सही श्रेणी के अग्निशमक यंत्र लगाए, निकास मार्ग यानी कि आपातकालीन सीढ़ियों और बाहर निकलने के रास्तों को हमेशा साफ रखें, वहां कोई सामान जमा ना करें, विद्युत सुरक्षा यानी कि बिजली के आउटलेट को ओवरलोड ना करें और शॉर्ट सर्किट से बचने के लिए सालाना वायरिंग की जांच करवाएं, इमरजेंसी प्लान यानी अपने संस्थान या घर का एक फ्लोर प्लान यानी निकासी नक्शा बनाएं और समय समय पर फायर मॉक ड्रिल का अभ्यास करें। आग लगने की स्थिति में तुरंत क्या करें, ध्यान दीजिए, अलार्म बजाएं। आग दिखने पर तुरंत फायर अलार्म का बटन दबाएं और आग आग चिल्लाकर दूसरों को सतर्क करें। तुरंत कॉल करें अग्निशमन सेवा को, सूचित करने के लिए तुरंत 101 नंबर पर कॉल करें। सीढ़ियों का प्रयोग यानी बाहर निकलने के लिए हमेशा केवल सीढ़ियों का उपयोग करें, लिफ्ट का उपयोग बिल्कुल ना करें। धुएं से बचाव अर्थात यदि कमरे में धुआं भरा हो तो नाक मुंह को गीले कपड़े से ढकें और फर्श पर झुककर या रेंगकर बाहर निकलें। दरवाजा जांचें, इसके अंतर्गत बात सामने आती है कि किसी भी बंद दरवाजे को खोलने से पहले उसे हाथ के पिछले हिस्से से छूकर देखें, यदि वो गर्म है तो उसे न खोलें। कहने का आशय यही है कि आपकी जान बेशकीमती है। कहते हैं कि सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी, हमें दुर्घटना घटने से बचाना है तो सावधानी को ध्यान में रखना है। अपना ख्याल रखिए और ऐसी जनहित में जारी जानकारी को सुनने के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM।

0: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट इज अ टेम्पल ऑफ क्रिएटिविटी। यदि आप मीडिया में करियर बनाना चाहते हैं तो ज्वाइन कीजिए शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट। ये कोर्स ऑफर करता है बैचलर्स एंड मास्टर्स डिग्री इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, स्पेशली डिजाइन फॉर फिल्म, टेलीविजन, OTT प्रोडक्शन, एनिमेशन, VFX, गेमिंग डिजाइन, पब्लिक रिलेशन एंड एडवर्टाइजिंग।
1: और हाँ, एक खास बात, SSMFE का अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM, ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन। आरजिंग, एडिटिंग, प्रोडक्शन और स्क्रिप्ट राइटिंग सिखाने के साथ इंटर्नशिप का भी गोल्डन चांस देता है। तो फिर कहीं देर ना हो जाए, कॉल करिए 01204060210 पर और विजिट करिए www.sharda.ac.in। शारदा यूनिवर्सिटी, नॉलेज पार्क, ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश। शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, जहां सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया भर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ, आप यही के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in।

किसान मित्रों नमस्कार, आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM और मैं हूं आपके साथ शशि कपूर, लेकर हाजिर हूं आपका मन पसंद कार्यक्रम खेत खलियान। किसान मित्रों, इस कार्यक्रम का उद्देश्य यही रहता है कि आप तक सही सही जानकारी पहुंचे और उस जानकारी का इस्तेमाल करके आप अपनी खेती को उन्नत बनाएं और जो आपकी आमदनी है वो दुगनी चौगनी हो। इसीलिए सरकार आपके लिए कल्याणकारी योजनाएं लेके आती है, बहुत सी योजनाओं का आप लाभ भी ले रहे होंगे। लेकिन किसान मित्रों, आप अधिक आमदनी चाहते हैं तो आपको खेती के अलावा कुछ और भी करना पड़ेगा। जी हाँ, किसान भाइयों की आय बढ़ाने के लिए सरकार की ओर से किसानों को खेती के साथ साथ पशुपालन, मछली पालन और मधुमक्खी पालन के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। किसान भाई खेती के साथ ये काम आसानी से कर सकते हैं। इसी क्रम में सरकार की ओर से किसान भाइयों को मधुमक्खी पालन के लिए अनुदान दिया जा रहा है। इसके साथ ही किसानों को मधुमक्खी पालन का प्रशिक्षण भी दिया जाता है ताकि आप मधुमक्खी पालन का व्यवसाय ठीक से कर सकें और फिर आपकी अच्छी खासी

पालन ऋण योजना के तहत आवेदन करने के लिए कर सकते हैं। आप मधुमक्खी पालन ऋण योजना के जरिए अपने व्यवसाय को अधिक बढ़ा सकते हैं और इसे ऊंचे स्तर तक ले जा सकते हैं। अब बात आती है कि मधुमक्खी पालन की शुरुआत कैसे की जाए, तो ये भी हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपको सुनवा देते हैं एक रागनी। कलाकार हैं प्रियंका चौधरी और किस्सा रहेगा कृष्ण सुदामा का। तो आइए सुनते हैं ये रागनी।

0: तो किसान मित्रों, अभी आप सुन रहे थे प्रियंका चौधरी से कृष्ण सुदामा के किस्से से ये रागनी। और आज हम बात कर रहे हैं खेत खलियान कार्यक्रम में मधुमक्खी पालन की। बहुत सी बातें आपने मधुमक्खी पालन के बारे में सुनी, अब बात निकल के ये आती है कि इस काम की शुरुआत खेती के साथ साथ हम कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले यही दिमाग में बात आती है कि काम की शुरुआत तो करें, लेकिन इसमें कितना खर्चा होगा, कितना पैसा लगेगा। तो इसके लिए सरकार की जो ऋण योजना चल रही है उसके बारे में तो हम आपको बता ही चुके हैं। यदि बात की जाए मधुमक्खी पालन पर आने वाले खर्चे की, यदि आप शुरू में 10 पेटी से मधुमक्खी पालन शुरू करना चाहते हैं तो इसमें करीब 35,000 से 40,000 रुपए तक का खर्चा आ सकता है। लेकिन जैसे जैसे मधुमक्खियों की संख्या बढ़ने लगेगी आपका मुनाफा भी बढ़ने लगेगा। आगे आपको सिर्फ मधुमक्खियों के लिए पेटियों की संख्या बढ़ानी होगी। इस तरह आप शुरुआती कुछ पैसा खर्च करके इससे काफी अच्छा पैसा कमा सकते हैं। तो अब आपको ये पता चल ही गया कि मधुमक्खी पालन की शुरुआत हम कैसे कर सकते हैं। 10-15 पेटी से इसकी शुरुआत की जा सकती है और जो खर्चा होता है शुरुआत में वो 35,000 से 40,000 के बीच में होता है। अब आपको बता दें कि सरकार की ऋण योजना भी चल रही है, तो उस योजना का लाभ उठा करके भी आप इस काम की शुरुआत कर सकते हैं। लेकिन काम की शुरुआत कैसे करें? कोई भी काम जब हम शुरू करते हैं तो उसकी जानकारी हमारे पास होना बहुत जरूरी है। अब ये जानकारी, प्रशिक्षण, ट्रेनिंग कहाँ से ली जाए? तो इसका सीधा रास्ता ये है कि आप अपने नजदीकी, जैसा कि हम हर कार्यक्रम में आपको बताते हैं, जो कृषि विज्ञान केंद्र हैं, कृषि केंद्र हैं, वहां जाकर के जो भी वैज्ञानिक हैं उनसे बात करिएगा कि मधुमक्खी पालन का प्रशिक्षण आपके यहाँ पर कब कब दिया जाता है और कैसे हम इसमें भाग ले सकते हैं, तो वो आपको बता देंगे। और भी बहुत सारी जानकारी इस व्यवसाय से जुड़ी आपको वहां पर मिल जाएगी। तो किसान मित्रों, ये तो बात रही मधुमक्खी पालन व्यवसाय की, और आइए अब आपको सुनवाते हैं एक रागनी। कलाकार हैं ऋषिपाल खदाना और कोशिंदर खदाना। किस्सा रहेगा हरिश्चंद्र तारामती का। तो आइए सुनते हैं ये रागनी।
1: मेरा घड़ा तो ठवा दे प्यारी। अच्छा? सारे

किसान मित्रों, अभी आप सुन रहे थे हरिश्चंद्र तारामती के किस्से से ये रागनी। कलाकार थे ऋषिपाल खदाना और कोशिंदर खदाना। किसान मित्रों, खेती में पानी की खपत को कम करना आज के समय की सबसे बड़ी जरूरत बन गई है। आपको पता ही है कि जल का जो स्तर है वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है, यानी कि जल का संकट बढ़ रहा है और किसानों के लिए कम पानी में अधिक खेती करना एक चुनौती बन चुका है। सही तकनीक और उपकरणों के इस्तेमाल से, जैसे एग्रीकल्चर स्प्रेयर मशीन, इससे हमारे किसान भाई अपनी खेती में पानी की बचत कर सकते हैं और अधिक उत्पादन भी ले सकते हैं। लेकिन आजकल आधुनिक तकनीकों के उपयोग से हमारे किसान मित्र कम पानी में ज्यादा फसल उगा सकते हैं। पानी बचाने के लिए भी किसानों को आधुनिक तकनीकों का उपयोग करना चाहिए। हमें समय के साथ कदम से कदम मिला के आगे बढ़ना ही होगा। तो किसान मित्रों, आज के समय में जो सिंचाई की आधुनिक तकनीकी हैं, उनमें ड्रिप इरिगेशन और स्प्रिंकलर सिस्टम से पानी की बर्बादी रोकी जा सकती है और खेतों की सिंचाई की जा सकती है। इसके अलावा बारिश के पानी का संचयन करके सिंचाई के लिए पानी का उपयोग किया जा सकता है। मल्चिंग तकनीक अपनाने से मिट्टी में नमी बनी रहती है, जिससे सिंचाई की जरूरत कम हो जाती है। तो किसान मित्रों, ये तो बात रही आधुनिक तकनीकों की, जिनका इस्तेमाल करके आप अपनी फसलों की सिंचाई कर सकते हैं, साथ ही साथ पानी की बचत कर सकते हैं और अपना पैसा भी बचा सकते हैं। और अब किसान मित्रों, कार्यक्रम के आखिर में आपको सुनवाते हैं एक रागनी। कलाकार है बलराम बैसला और खस्सा रहेगा द्रौपदी चीर हरण का।

बलराम बैसला द्वारा गाई गई इसी रागनी के साथ आज का खेत खलियान कार्यक्रम यहीं पर संपन्न होता है। सभी किसान मित्रों को नमस्कार।

0: भाई मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम नए अंदाज में। सुनो शारदा 90.8 एफएम सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम। भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक
1: समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर। तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 एफएम।

0: हाय, मैं अरुण विजय, आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा एट 90.8 FM।
1: ओले ओले ओले ओ शोना। हेलो, कौन?
2: नमस्कार, हम दस्त बोल रहे हैं और हम आ रहे हैं आपके घर। आपके बच्चे की तबीयत जो खराब करनी है
3: तो लंबा प्रोग्राम बना के आ रहे हैं,
2: जल्द मिलते हैं।
1: हेलो हेलो हेलो,
4: आ रहे हैं दस्त, दस्त देंगे बड़ा हम कष्ट कष्ट।
5: दस्त ऐसे बताकर नहीं आते, तो दस्त के लिए तैयार रहना। घर में ORS और जिंक है ना। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
6: हाय, मैं हूँ विदिता बाग और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM, ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।

साथियों, काया में चक्कर से आने लगे और यम के दूत सत्यवान के प्राण लेने के लिए सामने खड़े हो गए। मेरे मेहरबानों, सावित्री के तप से जो सावित्री के मुखमंडल पर तेज था, उस दहकती ही ज्वाला से यम के दूत वापिस चले गए। मेहरबानों, सत्यवान को क्षण क्षण दर्द ज्यादा होने लगा। मेरे मेहरबानों, सत्यवान सावित्री की तरफ देखकर और ये कहने लगा, सावित्री आज मैं विधवा करके तुझे जा रहा हूं। एक दिन वो था सावित्री कि मैंने मना किया था, तेरे पिता ने और तेरी मां ने तुझे समझाया था और यहां तक कि मुनि नारद जी ने भी बताया था, लेकिन तैने मानी नहीं। मेहरबानों, किस तरह से सत्यवान फिर कहने लगा,

0: शुरुआती दो साल है बच्चे की जीवन में खास, इसी दौरान होता है दिमाग का अधिकतम विकास। देखे सुने जाने समझे और बढ़ाएं हाथ, बचपन में मिली सीख रहे जीवन भर उसके साथ। माँ की सेहत से जुड़े हैं बच्चे के तार, अच्छी शुरुआत का यही है आधार। गर्भावस्था में पौष्टिक आहार अपनाएं, आयरन युक्त भोजन थाली में लाएं। जन्म के बाद 6 माह तक केवल स्तनपान, इसके बाद पूरक आहार का भी रखें ध्यान।
1: जब शरीर रहेगा स्वस्थ तो सुंदर होगा जीवन, क्योंकि सही पोषण तो देश रोशन। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
2: नमस्कार, मैं हूँ अभिनव चतुर्वेदी और आप सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।

0: भाई?
1: भाई मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम नए अंदाज में।
2: सुनो शारदा 90.8 एफएम सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम।
3: भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक
4: समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर।
2: तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 एफएम।

0: सुनो शारदा 90.8 FM।
1: हाय प्रिया, तुम इतनी टेंशन में क्यों हो? आखिर हुआ क्या तुम्हें?
2: रोहन, अब क्या बताऊँ, इतने सारे कोर्स है, समझ नहीं आ रहा बैचलर्स में एडमिशन कहाँ लूँ।
1: अच्छा प्रिया, ये बताओ कि तुम्हें लाइफ में करना क्या है?
2: मुझे मैं चाहती हूँ मेरी आवाज पूरी दुनिया में गूंजे। मैं चाहती हूँ कि कैमरा उठा के निकल जाऊँ और फोटोग्राफी करूँ। मैं चाहती हूँ कि अपने ट्रेवल व्लॉग्स और फिल्में बनाऊँ। मैं चाहती हूँ।
1: मैं समझ गया प्रिया, तुम क्या चाहती हो। तुम ऐसा कोर्स चाहती हो जिसमें रेडियो, फिल्म और एंटरटेनमेंट का कॉम्बो हो।
2: लेकिन ऐसा कोई कोर्स है क्या?
1: बिल्कुल प्रिया, शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट एक ऐसा कोर्स ऑफर करता है जिसमें आपको सब कुछ सीखने को मिलेगा।
2: क्या सच में? इसका मतलब मेरे सपने साकार हो सकते हैं, तो चलें।
1: हाँ, मैंने तो एडमिशन ले लिया है, अब तुम्हारी बारी है।
3: Come and explore the world of Sharda School of Media, Film and Entertainment, which makes you industry ready.
4: और साथ ही साथ आपको मिलेगा ऑपरेशनल सुरुशाद 90.8 FM कम्युनिटी रेडियो स्टेशन के साथ काम करने का सुनहरा मौका, जहां से आप आरजिंग सीख सकते हैं, प्रोडक्शन करना सीख सकते हैं, वॉइस ओवर करना सीख सकते हैं। और टीवी इंडस्ट्री का मौका चाहते हैं तो शारदा टीवी भी आपको मौका देता है, जहां नजदीकी से एक्टर, डायरेक्टर और प्रोडक्शन टीम के साथ सीखने को बहुत कुछ मिलता है।
3: So, where are you? The world is here at Sharda University.
5: नमस्कार, आप सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM, मेरे यानी गगन के साथ। सुनो शारदा 90.8 FM एक खास विषय पर काम कर रहा है जिसका नाम है हिंसा को नो, और इसी संबंध में कई श्रृंखलाएं हम आप तक पहुंचाने वाले हैं। और पहले दो भाग हमने आप तक पहुंचाए हैं, जैसे कि बेटियां हैं तो वंश है, प्रजनन अधिकार, इस संबंध में बात की गई, भ्रूण हत्या, लिंगानुपात, बेटे होने पर उत्सव और रिवाज। दूसरा एपिसोड था बालिका या वधु, इसके अंतर्गत बात हुई बचपन का हनन, शारीरिक और मानसिक प्रताड़ना। आज एक ऐसा ही खास विषय है जिसके बारे में हम बात करना चाहते हैं और जिसके बारे में समाज के लोग बात भी नहीं करना चाहते, सुनना या समझना नहीं चाहते। एक ऐसा विषय जो कि कहीं ना कहीं हमारी प्रथाओं से जुड़ा हुआ है, परंपराओं से जुड़ा हुआ है, लेकिन डॉक्टर इसको सही नहीं मानते, विशेषज्ञ और कानून इसको गलत मानते हैं। आज का विषय है खतना, धर्म नहीं दर्द। इसी संबंध में आज हम बात करेंगे बाल उम्र में शारीरिक दर्द, रिवाज और कानूनी सलाह के बारे में। बिना समय गवाए हुए आगे बढ़ते हैं। आज हम धर्म के नाम पर चल रही प्रथाओं के दूसरे पहलू के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। एक ऐसा पहलू जो कि अनदेखा अनसुना पहलू, जिसे हम देखते हुए भी नजरअंदाज कर देते हैं। भारत की सुंदरता इसकी संस्कृति और रीति रिवाजों में है, पर जब इन रिवाजों का पालन समुदायों द्वारा बिना किसी पूछताछ के किया जाता है तो वो एक सामाजिक बुराई का रूप ले लेती हैं। हालांकि ये कुप्रथा विश्व के मुकाबले में भारत में कम प्रचलित है, लेकिन भारत के अलावा भी कई ऐसे देश हैं जहां फीमेल जेनाइटल म्यूटिलेशन यानी कि महिला जननांग विकृति की प्रक्रिया होती है, जैसे कि अफ्रीका के कई देशों में इस प्रथा को अवैध करार दिया गया है। एक खबर पर अगर हम गौर फरमाएं तो एक सुपर मॉडल ने साहस देते हुए अपनी बात समाज को बताई और कहा कि इस प्रथा के अनुरूप उनके जननांग को काटकर सिल दिए जाने का उन पर जीवन भर प्रभाव रहा। वो इसे बाल उत्पीड़न और लैंगिकवादी प्रथा करार देती हैं। महिला जननांग विकृति यानी FGM से गुजरने वाली लड़कियां भयानक मनोवैज्ञानिक दर्द से गुजरती हैं, और ये जो प्रक्रिया है मैं आपको बताना चाहता हूं, इतनी खतरनाक होती है, इतनी दर्द भरी होती है, या यूं कहें कि इतनी दर्दनाक है कि वो अक्सर आने वाले वर्षों के लिए अत्यधिक भय और चिंता से ग्रसित हो जाती है। कई विशेषज्ञों ने अतीत में माना है कि जननांग विकृति से गुजरने वाली महिलाओं को सामान्य आबादी में महिलाओं की तुलना में मनोरोगों के विकास की अधिक संभावना होगी, लेकिन इस विश्वास की पुष्टि करने के लिए बहुत कम शोध हुए हैं। लड़कियों पर फीमेल जेनाइटल म्यूटिलेशन के कई शारीरिक दुष्प्रभाव होते हैं, कुछ तो समय के साथ नजर आते हैं और कुछ तत्काल नजर आते हैं। जिनमें मानसिक रोग की समस्या सबसे बड़ी समस्या है, रक्तस्राव, जीवन संक्रमण और यूरिन से संबंधित समस्याएं। ये दौर इतना खतरनाक होता है, इतना भयभीत होता है कि यहां तक कि एक लड़की की मौत भी हो सकती है। और इसके दुष्परिणामों का जब हम यहाँ जिक्र कर ही रहे हैं, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, लंबे समय तक के दुष्प्रभावों में मूत्राशय में संक्रमण, अल्सर, बांझपन, जन्म देते समय कठिनाइयां, प्रसव के दौरान शिशु की मृत्यु का जोखिम भी इत्यादि शामिल है। फीमेल जेनाइटल म्यूटिलेशन यानी महिला जननांग विकृति के बारे में जिस तरीके से मैं बात करता आ रहा हूं कि जब भी हम इस विषय पर बात करते हैं तो बड़ा अजीब लगता है, बहुत बुरा महसूस होता है। और जब यही विचार अगर हम किसी महिला से जाने या किसी के साथ आप बीती हो या किसी के देश में इस तरीके की घटनाएं उसने नजदीकी से देखी हो तो क्या माहौल होता है, यही सारी बातें करने के लिए शारदा विश्वविद्यालय की एक स्टूडेंट हमारे साथ जुड़ रही हैं, जिनका नाम है एस्थर, जो कि नाइजीरिया से हैं। आइए सुनते हैं कि इस संबंध में उनका क्या कहना है।
6: गुड डे, मेरा नाम लेडी एस्थर है और मैं जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की छात्रा हूँ। मैं नाइजीरिया की निवासी हूँ और आज मैं FGM यानी फीमेल जेनाइटल म्यूटिलेशन के बारे में चर्चा करूंगी। अगर हम अफ्रीका, मिडिल ईस्ट और एशिया की बात करें तो FGM का आचरण 31 देशों में है। ये सबसे अधिक जिबूती, इजिप्ट, गिनी और माली में प्रचलित है, जहाँ 90% से अधिक महिलाओं को FGM से गुजरना पड़ता है। मेरे हिसाब से FGM का होना ही गलत है और मैंने इससे जुड़ी बहुत सी कहानियां सुनी हैं जो कि मेरे खुद के देश की ही हैं। वैसे तो ये प्रक्रिया नाइजीरिया में गैर कानूनी है, पर फिर भी छोटे गांव में ये अभी भी देखने को मिलती है और इसे वहां के लोग एक धार्मिक कर्म मानते हैं। मेरे हिसाब से ऐसा करना बहुत ही गलत है, क्योंकि महिलाओं के साथ जो हो रहा है उन्हें उसके बारे में पता भी नहीं होता है। मेरे हिसाब से महिलाओं को अपने शरीर पर होने वाली हर एक चीज के बारे में सचेत होना चाहिए, इससे पहले कि उनके साथ कुछ बुरा हो जाए।
7: थैंक यू।
5: ये थी लेडी एस्थर, जो कि नाइजीरिया से हैं और इस वक्त शारदा विश्वविद्यालय में मास कॉम की स्टूडेंट हैं। फीमेल जेनाइटल म्यूटिलेशन यानी FGM, जिसको हम हिंदी में कह रहे हैं, महिला जननांग विकृति के विषय में इन्होंने खुलकर बात की। मैं अब आपको विश्व के आंकड़े सामने लेकर आ रहा हूं।

0: आवाज उठाकर लोगों के बीच जागरूकता फैलाने की जिम्मेदारी उठाई, या यूं कहें कि एक बीड़ा उठाया। आइए जानते हैं एक ऐसी ही पीड़ित महिला की कहानी जो कि गुजरात की रहने वाली है।
1: मेरा नाम सलमा है, मैं गुजरात की रहने वाली हूँ। आज भी जब वो दिन याद करती हूँ तो अपने सामने रखा ब्लेड, खून से लिपटा गंदा कपड़ा और अपने ओर बढ़ते हुए दो हाथ याद आते हैं। सिर्फ 8 साल की ही तो थी मैं जब उस दर्दनाक प्रक्रिया से गुजरना पड़ा मुझे। आज भी वो चीख मेरे कानों में गूंजती है। मुझे ये भी नहीं पता था कि मेरे साथ क्या हो रहा है और मेरे घर वाले ही मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं। पूरे 1 महीने तक सिर्फ एक कमरे में बंद होकर बिस्तर पे पड़ी रही मैं और सिर दर्द से कर्राती रही। आज 20 साल बाद जब पीछे देखती हूँ तो मुझे खुद पे गुस्सा आता है कि क्यों उस समय ही मैंने आवाज़ नहीं उठाई। लेकिन उठाती भी तो कैसे, सिर्फ 8 साल की ही तो थी मैं। ये सोच के भी बड़ा दुख होता है कि कैसे मेरी खुद की माँ और दादी ने मेरे साथ ये सब कर दिया। एक औरत होने के बावजूद भी कोई ऐसा अपनी खुद की बच्ची के साथ कैसे कर सकता है। लेकिन अब इन सब से बहुत दूर आ चुकी हूँ मैं, और जो मेरे साथ हुआ है वो मैं अपनी बच्चियों के साथ कभी भी नहीं होने दूंगी।
0: ये तो रही सिर्फ बात एक महिला की, और अगर मैं पूरे भारतवर्ष की बात करूं या पूरे विश्व की बात करूं तो न जाने ऐसी तमाम महिलाएं इस दर्द से कराह रही हैं, पीड़ित हैं। और ये सारी चीजें महिलाओं के अधिकारों का हनन है। वो जिंदगी सामान्य तरीके से जीना चाहती हैं, आगे बढ़ना चाहती हैं, अपने सपनों को साकार करना चाहती हैं। हमारा, आपका, हमारे रेडियो स्टेशन का फर्ज बनता है कि वो सारी बातें जो उनके अधिकारों से जुड़ी हुई हैं हम आप तक पहुंचाएं, और इसी संबंध में ये खास कार्यक्रम हम आप तक पहुंचा रहे हैं। इस संबंध में कानून के जानकार या डॉक्टर विशेष तौर पर बता सकते हैं कि ये प्रथा कितनी गलत है, और डॉक्टर क्या कहते हैं इस संबंध में कि एक महिला पर उसके शरीर पर कितना दुष्प्रभाव पड़ता है जब वो इस दर्द से गुजरती है। आइए सुनते हैं डॉक्टर शैला जमाल को।
2: मेरा नाम डॉक्टर शैला जमाल है, मैं शारदा हॉस्पिटल में असिस्टेंट प्रोफेसर की तरह काम करती हूँ। आज हम आपके साथ बात करेंगे FGM के बारे में। FGM यानी फीमेल जेनिटल म्यूटिलेशन। किसी के भी बॉडी पार्ट्स को बिना उसकी परमिशन, बिना उसकी इजाजत के निकालना, सिर्फ अपनी जो एक धारणा है उसके लिए उस पर काम करना, जिस चीज का कोई मेडिकल बेनिफिट या कोई साइंटिफिक एविडेंस या बेसिस नहीं है उसको परफॉर्म करना, मैं समझती हूँ ये ह्यूमैनिटी के खिलाफ ही एक काम है जिसके लिए आपको, मुझको, हम सबको आवाज उठानी है। फीमेल जेनिटल म्यूटिलेशन बिल्कुल भी हेल्दी नहीं है। अभी तक जितनी भी जानकारी हमें इसके बारे में है, ऑल ओवर द वर्ल्ड, ये ईस्टर्न, मिडिल ईस्ट और अफ्रीकन कंट्रीज में ज्यादा परफॉर्म किया जाता है। एशिया में भी इसका काफी प्रचलन है, लेकिन कुछ जगहों पर कॉन्सेंट्रेशन है। पूरी दुनिया में इसके खिलाफ मोर्चा खोला गया है, बहुत मुहिम जारी की गई है, और आप सबसे अपील है कि आप भी इस सब में हमारा साथ दें। लड़कियों के प्राइवेट पार्ट्स को काट दिया जाता है, कभी कभी बिना एनेस्थीसिया यानी कि बिना बेहोशी के भी। ये एक बर्बरता है जो वो लड़कियां झेल रही हैं। वो लड़कियां, मैं समझ सकती हूँ और मेरे ख्याल से अभी तक आप सब भी समझ गए होंगे कि उसके जो मानसिक स्थिति है, उसकी जो मेंटल हेल्थ है, वो तो किसी भी तरह से स्वस्थ नहीं रह पाएगी। फिजिकली तो हमने उसको इतना बड़ा ट्रॉमा दे दिया है, और सिर्फ उसके चरित्र को या उसके कैरेक्टर को बचाने के लिए हम ये करते हैं, ये कहकर उसके चरित्र को शरीर के उस भाग से जोड़ दिया है। तो ये कहीं से भी ह्यूमैनिटी के तरफ किया जाने वाला काम नहीं है, उसके अगेंस्ट है, राइट्स के अगेंस्ट है, मेंटल हेल्थ के अगेंस्ट है, फिजिकल हेल्थ के अगेंस्ट है। कुछ लोग जो इसको एक्सपीरियंस कर चुके हैं और शायद सुनो शारदा की माध्यम से हम उन तक पहुंच भी पाए, तो मैं उन लोगों से ये कहना चाहती हूँ कि अगर इस तरह का कोई भी फीमेल जेनिटल म्यूटिलेशन का किसी भी टाइप का एपिसोड किसी के साथ हुआ है, आप उसे जागरूकता प्रदान करें, उसको बताएं कि वो भी नॉर्मल सेक्सुअल लाइफ लीड कर सकती है। थोड़ा सा मेडिकल चेकअप होने के बाद और साइकोलॉजिकल इमोशनल काउंसलिंग के बाद वो लोग भी अपनी लाइफ अच्छी तरह से गुजार सकते हैं, और इसके लिए उनको डेफिनेटली बहुत ज्यादा काउंसलिंग, बहुत ज्यादा ज्यादा समझाने की जरूरत पड़ेगी और हम सबको भी आगे आके उनकी मदद करनी चाहिए और उनके लिए जितने भी हेल्थ सेंटर्स हैं, जितने सोशल मीडियाज हैं, टीवी है और मैं समझती हूँ रेडियो एक बहुत अच्छा माध्यम है, उससे हम बता सकते हैं कि हम उनकी हेल्प के लिए हमेशा हैं। वो कभी भी किसी भी डॉक्टर स्पेशली गायनेकोलॉजिस्ट को कंसल्ट कर सकते हैं। वी आर देयर फॉर यू एंड वी प्लेज।

0: Against female genital mutilation.
1: भारत में फीमेल जेनाइटल म्यूटिलेशन यानी महिला जननांग विकृति के अंतर्गत दो फंडामेंटल राइट का वायोलेशन होता है। पहला आर्टिकल 15 जो धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर किसी नागरिक के साथ भेदभाव करने से रोकता है, और दूसरा आर्टिकल 21 जो कहता है कि किसी भी व्यक्ति को विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अतिरिक्त उसके जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता है। UNFPA के डेटा के हिसाब से करीब 59 देशों ने खतना प्रथा के खिलाफ कानून निकाले हैं, जिनमें यूनाइटेड किंगडम, कनाडा, डेनमार्क, स्पेन और विश्व के कई देश इसमें शामिल हैं। मई 2017 को जनहित याचिका दर्ज की गई थी एक दिल्ली आधारित महिला वकील सुनीता तिवारी के द्वारा, जिन्होंने भारत में स्त्री खतना को प्रतिबंधित करने की याचिका डाली थी, लेकिन इसके खिलाफ कोई भी अभी तक कानून नहीं बनाया गया है। और आर्टिकल 26 जो किसी भी प्रकार के वैधानिक रूप से धार्मिक संस्थाओं की स्थापना करने या उसे चलाने की स्वतंत्रता देता है। वहीं समाज में कुछ ऐसे लोग हैं जो इन कानूनों का गलत तरीके से सहारा लेकर ऐसी बेरहम प्रक्रिया यानी जिसे हम कह रहे हैं महिला जननांग विकृति को यानी खतना को बढ़ावा दे रहे होते हैं, जो कि एक गलत तरीका है। सिर्फ एक कल्पना मात्र से ही मैं डर रहा हूं, भयभीत हो रहा हूं। सोचिए, कल्पना करिए कि जिस बच्ची के साथ ये सब हो रहा होता है तो उसकी हालत क्या होती है। ये सब सोच कर ही कहीं ना कहीं हम सब की रूह कांप रही होगी। 5 से 6 साल की लड़की को एक अंधेरे कमरे में बहाने से ले जाकर उसे फर्श पर लेटा दिया जाता है और फिर गर्म ब्लेड या किसी धार वाली वस्तु का इस्तेमाल करके उसके बाहरी जननांग को काट दिया जाता है। वो लड़की चीख रही होती है, दर्द से कांप रही होती है, पर सिर्फ एक प्रथा को बनाए रखने के लिए उसके घर वाले उसे नरक का सामना करा देते हैं। सुनो शारदा 90.8 FM ने आज एक खास विषय पर बात की, बाल उम्र में शारीरिक दर्द और झूठे रिवाजों के खातिर आखिर हमारी बहन बेटियां खतना का दर्द कब तक सहती रहेंगी। आपका, हमारा, हम सब का फर्ज बनता है कि इस कुप्रथा को आइए हम सब मिलकर रोकें, उनके अधिकारों का हनन न होने दें। वो भी जिंदगी को जीना चाहती हैं, अपने सपनों को साकार करना चाहती हैं और इस दर्द से वो छुटकारा चाहती हैं। सुनो शारदा 90.8 FM आप सबसे अपील करता है कि इस दर्द से उनको छुटकारा दिलाए। ये खास कार्यक्रम आपको कैसा लगा, आप अपनी प्रतिक्रिया हम तक जरूर पहुंचाएगा। आप हमें कॉल कर सकते हैं 0120-4060-205 पर। सुनते रहें ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM। नमस्कार। फिल्म मेकिंग एक क्रिएटिव फील्ड है और यदि आप क्रिएटिव सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है। तो आज ही विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
2: The world is here.
3: हाय, नमस्कार, मैं हूँ आरजे रौनक और आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM पर।

0: बीवी न छोड़े जान।
1: अगर आपने डॉट्स का कोर्स बीच में छोड़ दिया है तो शीघ्र जांच कराएं। कहीं आपको बिगड़ी हुई टीवी यानी MDR टीवी ना हो चुकी हो। इसका इलाज 24 से 27 महीने तक चलता है। ऐसी स्थिति में इलाज पूरा कराएं। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन का एक अभियान।
2: हमारा शरीर जब अग्नि के संपर्क में आता है तो शरीर को बड़ी पीड़ा होती है। कल्पना करिए, जब किसी इंसान के चारों तरफ आग ही आग हो और जब वो वहां फंस जाए जहां से निकलना मुश्किल हो, तो हम कल्पना कर सकते हैं कि कितनी बड़ी घटना दुर्घटना घट सकती है। आग से अपने आप को हम कैसे बचा कर रखें, वो कौन कौन सी सावधानियां हैं जो आपको हमें बरतने की बहुत जरूरत है। राम राम, दो असलाम, सत श्री अकाल, आदाब। मैं हूं गगन आपके साथ और आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि कहीं कभी जनधन हानि ना हो, लेकिन अगर हम लापरवाही बरत रहे हैं तो ये हमारे लिए सही नहीं है। इस गर्मी के मौसम में हमें सिर्फ कुछ सावधानियों को ध्यान में रखने की जरूरत है, क्योंकि दिल्ली NCR में बढ़ती आग की घटनाओं की वजह से जनधन हानि हमें देखने को मिल रही है। और इन घटनाओं से सबक लेते हुए गौतम बुद्ध नगर जिला क्या कर रहा है उसके बारे में बात करते हैं। और हमें क्या करना है, क्लब, होटल, मॉल, स्कूल और अस्पतालों के प्रबंधकों के साथ एक हमें मीटिंग करनी चाहिए, जो कि सरकारी अमला ये करता रहता है समय दर समय। हमारा फर्ज बनता है कि इस तरीके की मीटिंग में हमें सहयोग करना चाहिए। जी हाँ, आपदा प्रबंधन योजना, इसके तहत अग्नि सुरक्षा उपकरण, हर मंजिल पर वर्किंग कंडीशन में स्मोक डिटेक्टर, फायर अलार्म और सही श्रेणी के अग्निशमक यंत्र लगाए, निकास मार्ग यानी कि आपातकालीन सीढ़ियों और बाहर निकलने के रास्तों को हमेशा साफ रखें, वहां कोई सामान जमा ना करें, विद्युत सुरक्षा यानी कि बिजली के आउटलेट को ओवरलोड ना करें और शॉर्ट सर्किट से बचने के लिए सालाना वायरिंग की जांच करवाएं, इमरजेंसी प्लान यानी अपने संस्थान या घर का एक फ्लोर प्लान यानी निकासी नक्शा बनाएं और समय समय पर फायर मॉक ड्रिल का अभ्यास करें। आग लगने की स्थिति में तुरंत क्या करें, ध्यान दीजिए, अलार्म बजाएं। आग दिखने पर तुरंत फायर अलार्म का बटन दबाएं और आग आग चिल्लाकर दूसरों को सतर्क करें। तुरंत कॉल करें अग्निशमन सेवा को सूचित करने के लिए, तुरंत 101 नंबर पर कॉल करें। सीढ़ियों का प्रयोग यानी बाहर निकलने के लिए हमेशा केवल सीढ़ियों का उपयोग करें, लिफ्ट का उपयोग बिल्कुल ना करें। धुएं से बचाव अर्थात यदि कमरे में धुआं भरा हो तो नाक मुंह को गीले कपड़े से ढकें और फर्श पर झुककर या रेंगकर बाहर निकलें। दरवाजा जांचें, इसके अंतर्गत बात सामने आती है कि किसी भी बंद दरवाजे को खोलने से पहले उसे हाथ के पिछले हिस्से से छूकर देखें, यदि वो गर्म है तो उसे न खोलें। कहने का आशय यही है कि आपकी जान बेशकीमती है। कहते हैं कि सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी, हमें दुर्घटना घटने से बचाना है तो सावधानी को ध्यान में रखना है। अपना ख्याल रखें और ऐसी जनहित में जारी जानकारी को सुनने के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM।

0: Hi, this is Shalmali Kholgare and you're listening to me on 90.8 FM Suno Sharda.
1: अच्छा सोचिए, जरा सी चोट लगे तो आप क्या करेंगे?
2: दवाई की दराज में से पट्टी निकाल के लगा लूंगी।
1: अच्छा, हल्का सा बुखार हो तो?
2: दवाई की दराज में से गोली निकाल के खा लूंगी।
1: और बच्चे को दस्त लगे तो? क्या हुआ, दवाई की दराज में जगह खत्म हो गई क्या?
3: दस्त के इलाज में देर हुई तो बच्चों के शरीर में पानी और पोषण की कमी जानलेवा हो सकती है, इसलिए दवाई की दराज में ORS और जिंक भी रखिए और दस्त शुरू होते ही इलाज शुरू कीजिए। दस्त के लिए तैयार रहना, घर में ORS और जिंक है ना। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
4: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, जहां सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया भर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ, आप यही के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in।

भाई, भाई मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम नए अंदाज में। सुनो शारदा 90.8 एफएम सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम। भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर। तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 एफएम।

0: हाय, मैं हूं रणविजय। आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा एट 90.8 FM।
1: इस तरह सुपर हीरो जलरक्षक ने पानी बचा के पूरी दुनिया को बचाया।
2: वाओ, जलरक्षक की कहानी तो कमाल है अप्पा।
1: जलरक्षक है नाम हमारा, पानी बचाना काम हमारा, खुद का पानी खुद निगरानी। तारा, अब तुम सो जाओ, कल सुबह चमन तुम्हारे साथ खेलने आने वाला है।
3: मैं बस साबुन से हाथ धोकर आता
2: हूँ। अरे, चमन पानी वेस्ट कर रहा है। लगता है सुपर हीरो जल रक्षक को फिर से पानी बचाना पड़ेगा।
3: अरे तारा, ये क्या?
2: तारा नहीं, जल रक्षक तारा।
4: जल रक्षक है नाम हमारा, पानी बचाना काम हमारा, खुद का पानी
5: जल रक्षक
4: खुद निगरानी।
2: हर दिन हर व्यक्ति को जितना पानी पीने और खाना बनाने में लगता है, लगभग उतना ही पानी एक व्यक्ति साबुन को हाथ पर या बर्तन पर मलते समय, ब्रश करते समय या दाढ़ी बनाते समय नल को खुला रखने से बर्बाद कर देता है।
3: अच्छा, मैंने तो ये सोचा नहीं था तारा। ओ, मेरा मतलब जल रक्षक तारा।
2: और नल या पाइप में केवल एक लीकेज से ही हर दिन लगभग उतना पानी बर्बाद हो जाता है जितना एक व्यक्ति एक दिन में घर के सारे काम करने के लिए उपयोग करता है।
3: अरे बाबा रे,
2: आज भी हमारे देश में बहुत सारे लोग हैं जिन्हें शुद्ध पानी नहीं मिलता। जरा सोचो चमन, ये समस्या है कि नहीं? मुझे लगता है ये बहुत बड़ी समस्या है।
3: हाँ तारा, सच्ची ये बहुत बड़ी समस्या है।

0: चलो चमन, अब हम खेलें।
1: ओके।
0: चलो चमन, अब हम खेलें।
1: ओके।
2: What?

0: तारा मैं थक गया हूँ, मैं थोड़ा सा पानी पी कर आता हूँ, ठीक है?
1: पीने का पानी? चमन रुको, हाथ को खरी में डुबोने से ये पानी दूषित हो गया है।
2: हैं? लेकिन पानी दिखने में तो बिल्कुल साफ है।
1: पानी दिखने में साफ हो सकता है, पर जरूरी नहीं कि ये पीने लायक भी हो। पता है, कुछ जल स्रोतों जैसे कम गहरे हैंडपंप का पानी भी दिखने में साफ होता है, पर पीने के लिए सुरक्षित नहीं होता।
2: हैं?
1: पानी में जीवाणु, विषाणु या कई प्रदूषक तत्व हो सकते हैं जो आंखों से नहीं दिखाई देते, और दिखने में पानी साफ लगता है। इसीलिए बिना पानी की जांच किए हम नहीं जान सकते कि पानी पीने के लिए सुरक्षित है या नहीं।
0: अरे बाबा रे, तो फिर

0: बात तो ठीक है जल रक्षक तारा, पर पानी की जांच होगी कैसे?
1: चलो चलो अप्पा से पूछते हैं।
2: ओके
1: अप्पा।
3: अब सरकार की ओर से हर ग्राम पंचायत को जल जांच किट दी जा रही है और हर एक ग्राम पंचायत से 5 महिलाओं को ट्रेनिंग भी दी जा रही है, जिससे हर महीने अपने पंचायत के सभी जल स्रोतों की जल गुणवत्ता जांच और स्वच्छता निरीक्षण सुनिश्चित हो।
2: वाह अंकल, आप भी जल रक्षक?
3: हमारी पूरी फैमिली ही जल रक्षक है।
4: जल रक्षक है नाम हमारा, पानी बचाना काम हमारा, खुद का पानी खुद निगरानी।
2: मैं भी बनूंगा जल रक्षक।

0: पानी में गंदे हाथ या गंदे बर्तन?
1: नो नो नो नो,
2: समझ गया। अब मैं भी जल रक्षक बन गया।
3: जल रक्षक है नाम हमारा, पानी बचाना काम हमारा, खुद का पानी खुद निगरानी।
4: कहीं पानी बर्बाद हो रहा है,
2: लगता है वहाँ जल रक्षकों की जरूरत है।
4: चलो।
0: तुम सब भी जल रक्षक बन सकते हो, आज से अभी से शुरू करो, खुद का पानी खुद निगरानी।
5: हाय, मैं हूँ विदिता बाग और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM, ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन। सुनो।

नमस्कार, आप सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना काम यूनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शादा 90.8 एफएम, मेरे यानी गगन के साथ बात हेल्थ की। मैं आज हम बात करने जा रहे हैं कि सर्दियों में ठंडे पानी से नहाने के आश्चर्यजनक फायदे। तो एक्सपर्ट कहते हैं कि ठंडे पानी से नहाने से रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है, परिसंचरण में सुधार होता है, मांसपेशियों की रिकवरी में मदद मिलती है, चयापचय में वृद्धि होती है, मूड में सुधार होता है और नींद की गुणवत्ता में सुधार होता है। ये त्वचा और बालों के स्वास्थ्य के लिए भी फायदेमंद हो सकते हैं। विषय है ये रक्त परिसंचरण को बढ़ाता है। किस तरीके से? तो बात सामने आती है कि कोल्ड शावर आपको गर्म रखने के लिए रक्त को आपके अंगों में जाने देता है। गर्म स्नान की बात करें तो ये ठंडे स्नान के प्रभाव को उलटते हुए रक्त को त्वचा की सतह की ओर ले जाने का कारण बनता है। ठंडे पानी से नहाने से धमनियों को मजबूत बनाने और रक्तचाप को कम करने में मदद मिल सकती है। इस प्रकार आप जीवन भर फिट और फाइन रह पाएंगे। ये आपकी त्वचा और बालों के लिए बहुत अच्छा है। ठंडे पानी से नहाने से क्यूटिकल्स और पोर्स टाइट हो जाते हैं, जिससे वो बंद होने से बच जाते हैं। ये त्वचा और स्कैल्प में छिद्रों को भी सील कर सकता है, जिससे बाहरी गंदगी शरीर के अंदर नहीं जा पाती। विषय है, अब इसी के अंतर्गत बात सामने आती है कि ठंडा पानी इम्यूनिटी बढ़ाने में मदद करता है। कैसे? तो बात समझते हैं। यदि आप ठंडे पानी से स्नान करते हैं तो सफेद रक्त कोशिकाओं का प्रतिशत अधिक होगा और उच्च चयापचय दर होगी। ऐसा इसलिए क्योंकि ठंडे स्नान के दौरान शरीर खुद को गर्म करने की कोशिश करता है। इस प्रक्रिया में सफेद रक्त कोशिकाओं को छोड़ने और प्रतिरक्षा प्रणाली को सक्रिय करने की प्रवृत्ति होती है। ये तेजी से मांसपेशियों को ठीक करने में सहायता करता है। तो एक्सपर्ट कहते हैं कि ठंडा पानी मांसपेशियों की अकड़न को दूर करने में मदद करता है। ये कोल्ड कंप्रेशन जैसा है। तो बात ये भी सामने आती है कि ठंडा पानी डिप्रेशन से निपटने में मदद करता है। इसके अंतर्गत एक्सपर्ट कहते हैं कि ठंडे पानी का हमारे शरीर और मन पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है और ये मूड को बेहतर बनाता है। इस प्रकार स्नान से बाहर निकलने के बाद आप अधिक तरोताजा महसूस करते हैं। अब इसी से हटकर थोड़ा एक विषय हम जानना चाहते हैं कि अक्सर हम सुबह सुबह गुनगुना पानी पीते हैं, क्या ये पानी पीना चाहिए या नहीं? एक अच्छा विषय। तो इसके अंतर्गत सामने आती है बात कि गुनगुना पानी पीने से शरीर डिटॉक्सिफाई होता है, जो कोलेजन के उत्पादन को बढ़ावा देने के साथ साथ ये त्वचा को स्वस्थ रखने में मदद करता है। सर्दियों के मौसम में मोटापे की समस्या से निजात पाने के लिए आप रोजाना गुनगुने पानी का सेवन करें। गुनगुना पानी पीने से मेटाबॉलिज्म तेज होता है, जिससे फैट को तोड़ने में मदद मिल सकती है। ऐसी खास जानकारी के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुरोशादा 90.8 एफएम, मेरे यानी गगन के साथ।

0: उमंग
1: CIET प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: विमलेश का नमस्कार आप सभी श्रोताओं को और बहुत बहुत स्वागत भी आज के उमंग कार्यक्रम में।
1: और अजीत का भी नमस्कार। आइए करते हैं शुरुआत आज के विचार से। भेजा है इसे बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से रोशन देवांगन, कौशल्या देवांगन, हेमलता देवांगन और डिंपल देवांगन ने। और आपने लिखा है,
2: संबंधों को निभाने और उसे बनाए रखने के लिए थोड़ा सा समय अवश्य निकालें।
1: बहुत अच्छा विचार है,
2: धन्यवाद इस संदेश के लिए। मोबाइल के इस युग में ऐसे संदेश का महत्व तो और अधिक बढ़ जाता है।
1: जी हाँ। और आइए सुनते हैं श्रोताओं के नाम जिन्होंने हमें भेजा है संदेश।
2: गांव जाखौद राजस्थान से शंभूदयाल खटक, विमला देवी, योगेश कुमार खटक, दीपक कुमार खटक और कुमारी पूजा खटक।
1: दतरेंगी भाटापारा छत्तीसगढ़ से हीरामणि वर्मा।
2: गांव उगाला जिला अम्बाला हरियाणा से राजेंद्र कुमार, मलकीत कौर, आरती रानी, राघव, हरमन और परिवार के अन्य सभी सदस्यगण।
1: और महाराष्ट्र से मिस्टर पटेल।
2: और ठियोग जिला शिमला हिमाचल प्रदेश से सूरज कुमार चौहान जी। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद संदेश भेजने के लिए। और अब एक बार फिर से हम आपके लिए लेकर आए हैं आपकी हमारी प्यारी श्रृंखला ये भी जानिए।
1: श्रोताओं ये भी जानिए श्रृंखला में आज एक बार फिर से प्रस्तुत है हमारी विज्ञान वार्ता। क्यों विमलेश जी?
2: जी अजीत जी, आशा है कि श्रोताओं को हमारी कल की विज्ञान की वार्ता जरूर पसंद आई होगी।
1: जी
2: श्रोताओं, हम सब जानते हैं कि पेड़ पौधों से हमें ऑक्सीजन मिलता है।
1: जी
2: ऑक्सीजन को हम प्राणवायु भी कहते हैं, क्योंकि ये जीवन के लिए आवश्यक नहीं बहुत आवश्यक है।
1: जी और आइए श्रोताओं अब आते हैं आज के बहुत ही रोचक प्रश्न पर। अभी वसंत ऋतु चल रही है, चारों ओर हरियाली है, फूल ही फूल नजर आते हैं, है ना? ऐसा लगता है मानो प्रकृति ने श्रृंगार कर लिया है।
2: जी।
1: लेकिन वसंत से पहले पतझड़ का मौसम था, है ना? तो प्रश्न है कि क्या पतझड़ के मौसम में ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है, क्योंकि पत्ते लगभग नहीं के बराबर होते हैं। ऑक्सीजन तो पेड़ पौधों के पत्तों से ही हमें प्राप्त होती है ना?
2: जी अजीत जी, बहुत अच्छा प्रश्न है। इसका उत्तर हमारे सभी श्रोता भी जरूर जानना चाहेंगे। तो इसका जवाब है जी हाँ। पतझड़ की ऋतु में पत्तियों के झड़ने से उन स्थानों पर फोटोसिंथेसिस की

0: प्रक्रिया कम हो जाती है, इसलिए ऑक्सीजन का उत्पादन भी कम मात्रा में ही हो पाता है।
1: ऑक्सीजन का कम होना, विमलेश जी, ये तो बड़ी समस्या है
0: जी।
1: लेकिन हमें इसका पता क्यों नहीं चलता? हमारे श्रोता मित्रों, विशेषकर विद्यार्थी मित्रों के मन में भी जरूर ये जानने की जिज्ञासा होगी।
0: जी जरूर। देखिए, बात ऐसी है कि पूरी पृथ्वी पर एक साथ पतझड़ नहीं आता, और अनेक स्थानों पर सदा हरे रहने वाले वृक्ष भी हैं, जिन्हें हम सदाबहार वृक्ष भी कहते हैं।
1: अशोताओं, एक बात और है कि वृक्षों में मात्र पत्ते ही प्रकाश संश्लेषण या फोटोसिंथेसिस नहीं करते
0: जी।
1: उनके तनों में भी कुछ मात्रा में यह प्रक्रिया होती है। हरे तने वाली वनस्पतियों के तनों के माध्यम से भी यह प्रक्रिया होती है।
0: जी बिल्कुल सही। एक और जरूरी बात ये हमें याद रखना चाहिए कि पृथ्वी की अधिकांश ऑक्सीजन हमें समुद्री वनस्पतियों से ही प्राप्त होती है। लगभग 50-80% ऑक्सीजन महासागरों से मिलती है।
1: वाह। और साथ ही साथ श्रोताओं, दुनिया के बड़े बड़े वर्षा वन या रेन फॉरेस्ट भी ऑक्सीजन की कमी को पूरा कर देते हैं
0: जी।
1: तो सारांश ये निकला कि पतझड़ एक स्थानीय घटना है
0: जी,
1: ये वैश्विक घटना नहीं है, इसलिए हमें इसका पता नहीं चलता
0: जी। आपको पता है श्रोताओं, दुनिया के सबसे बड़े वर्षा वन है अमेज़न और सुंदरवन।
1: इन्हें लंग्स ऑफ द अर्थ या पृथ्वी का फेफड़ा भी कहा जाता है। तो इसीलिए पतझड़ के मौसम में भी हमें ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में मिलती रहती है।
0: इसलिए आज की उमंग कार्यक्रम का नारा है, पेड़ लगाएं जीवन बचाएं, इस धरती को स्वर्ग बनाएं।
1: पेड़ लगाएं जीवन बचाएं, इस धरती को स्वर्ग बनाएं। पेड़ और पौधे हैं इस धरती की शान,
0: आओ मिलकर चलाएं सभी पेड़ लगाने का अभियान।
1: वाह। तो श्रोताओं, आशा है कि आपको हमारी ये विज्ञान वार्ता जरूर पसंद आई होगी। तो अब आज का प्रश्न, आज की ही जानकारी से,
0: पृथ्वी को अधिकांश ऑक्सीजन कहाँ से मिलती है और पृथ्वी का फेफड़ा किसे कहते हैं?
1: प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए, पृथ्वी को अधिकांश ऑक्सीजन कहाँ से मिलती है और पृथ्वी का फेफड़ा किसे कहते हैं? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए, पृथ्वी को अधिकांश ऑक्सीजन कहाँ से मिलती है और पृथ्वी का फेफड़ा किसे कहते हैं?
0: 8800440559 है हमारा IVRS का नंबर, जिस पर आप अपना उत्तर भेज सकते हैं।
1: और audio@ciet.nic.in है हमारा ईमेल, आप अपना संवाद, प्रतिक्रियाएं और उत्तर यहाँ भी भेज सकते हैं।
0: और अब सुनते हैं आज का पहला चटपटा, मजेदार और मनभावन कार्यक्रम, न से नटखट ननकू। श्रोताओं, ये कार्यक्रम अक्षर की कहानी श्रृंखला के ढेर सारे कार्यक्रमों की कड़ियों में से एक है
1: जी।
0: आशा है इस कार्यक्रम के साथ आपको याद आएगा आपका चुलबुला बचपन। तो आइए सुनते हैं
1: न से नटखट ननकू।
2: अरे भैया, तो भी आए ही नहीं,
3: पता नहीं आज कौन से गाने चलाएंगे, कब आएंगे भैया?
2: अरे याद आया, भैया ने कहा था कि अगर हम 10 तक गिनेंगे तो भैया हमारे सामने आ जाएंगे,
3: जादू से आ जाएंगे।
4: तो चलो गिने।
5: हाँ हाँ, ये ठीक रहेगा।
6: तो चलो गिनते हैं।

0: मैं प्रकट हो गया।
1: मैंने आपको पर्दे के पीछे से आते हुए देखा।
0: अच्छा बाबा, मैं मान गया, मैं अपनी गलती मान गया। तुमने बिल्कुल ठीक पहचाना, मैं छुपा हुआ था। हाँ तो बच्चों, अब बताओ कौन सी कहानी सुनना पसंद करोगे तुम आज?
1: परी और राजा रानी की,
2: कुत्ते की, जादूगरनी की,
3: बंदर।
0: बहुत प्यारा बच्चा है हमारा चुन्नू। हाँ तो बच्चों, आज मैं तुम्हें सुनाऊंगा ना से नटखट ननकू की कहानी।
1: ननकू? ये ननकू कौन है?
0: अरे भाई, ननकू था एक नन्ना सा प्यारा सा बंदर, बड़ा ही नटखट था। नटखट यानी
1: शरारती।
0: शाबाश, ना से नटखट, जैसे तुम हो मेरे प्यारे प्यारे से बच्चे। तो बच्चों, ना से नन्हा, ना से नटखट,
1: ना से नल,
0: ना से नल, ना से नाचना,
2: ना से ना, ना से ना,
0: ना से नमस्ते, वाह,
1: ना से नागिन,
0: नागिन और नाग भी तो होगा, ना से नागिन, ना से नाग, और
2: ना से नाम,
0: ना से नाम, नाम, बिल्कुल ठीक, शाबाश, बहुत सही का, इसी बात पर हो जाए ताली जोर से।
1: ना से नानी,
0: अरे वाह, ना से नाना,
3: ना से नाना जी,
0: ना से नाना जी, ना से नानी जी, बस बहुत अच्छा होता है। हाँ तो बच्चों, ननकू बहुत नटखट था, वो बहुत नाचता कूदता था, उछल कूद करता था, पर साथ ही साथ वो एक गलत काम करता था। वो जंगल के सारे जानवरों को परेशान भी करता था। बिल्कुल, और क्या, अरे स्कूल के अपने साथियों को भी परेशान करता था। वो पढ़ता बिल्कुल भी नहीं था।
2: क्या ननकू स्कूल भी जाता था?
0: हाँ, जाता था स्कूल। पता है उसके स्कूल का नाम क्या था?
1: क्या था?
0: मैं बताऊँ? उसके स्कूल का नाम था नंदनवन प्राथमिक विद्यालय।
1: भैया, ना से नंदन।
0: हाँ शाबाश, ना से नंदन, बहुत सही,
3: ना से निक्का,
0: ना से नमन, इसी बात पर हो जाए ताली जोर से। तो बच्चों आगे सुनो, ननकू की नानी, ना से नानी है ना, ननकू की नानी कहती,
4: ननकू बेटा, अरे तुम दिन भर नाचते कूदते रहते हो, ऐसी नादानी क्यों करते हो बच्चा, अरे थोड़ा पढ़ लिख भी लिया करो।
0: एक दिन, जानते हो एक दिन ननकू की नानी ने क्या कहा ननकू से? उसने कहा,
4: अरे बेटा ननकू, अरे सुन, अरे जरा भालू फल वाले से 9 नाशपाती तो खरीद ला बच्चे, ले ले।
0: ना से नाशपाती, ना से 9, ना से नानी। हाँ बिल्कुल सही, बिल्कुल सही कहा तुमने
1: भैया। ना से पेंसिल की नोक,
0: ना से नोक,
1: ना
0: से
1: नाना,
0: भाई वाह क्या बात है,
1: ना से निकालना,
0: ना से निकालना। तो इसी बात पर हो जाए ताली जोरदार, बजाओ ताली, शाबाश, बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत बढ़िया। हाँ तो बच्चों, ननकू पैसे लेकर भालू फल वाले के पास गया। वो मन ही मन सोच रहा था,
4: ओहो कैसे लाऊंगा 9 नाशपाती, ओह मुझे तो गिनती आती ही नहीं, गिनती आती ही नहीं, 9 नाशपाती कैसे गिनूंगा, 3, 5, 7, 6, 4, 8।
1: उसको 9 तक भी गिनना
0: नहीं आता। नहीं आता था भाई, नहीं आता था। अरे वो बिल्कुल पढ़ता लिखता नहीं था, इसीलिए उसे 9 तक गिनती भी नहीं आती थी। हाँ तो भाई, ननकू बंदर भालू फल वाले के पास गया और बोला,
4: दादा दादा आप गिन दो ना नाशपाती, गिन दो ना दादा, गिन दो ना।
0: बच्चों ये सुनकर भालू दादा ने ननकू को डांटा। वो बोला,
4: क्या कहा, मैं गिन दूं? हैं? क्या तुम्हें 9 तक गिनना भी नहीं आता?
5: सही कहा तूने।
4: भालू बोला, अरे ननकू, तुमसे छोटे बच्चे भी 100 तक गिन करके ले जाते हैं, तुम्हें 9 तक गिनती नहीं आती? हैं? 9 तक गिनती नहीं आती?
0: अब ननकू को बहुत शर्म आई। उसे समझ में आ गया कि नानी उसे पढ़ने लिखने के लिए क्यों कहती है।
5: ना से नमक।
0: शाबाश।
5: ना से नाक।
0: ना से नोट। अरे वाह, क्या बात है।
5: ना से नाली।
0: और इसी बात पर बजाओ जोरदार ताली। बहुत बढ़िया, शाबाश।
1: क्या ननकू पढ़ने लग गया?
4: हाँ, अब वो पढ़ने लगा, स्कूल भी जाने लगा, अपने वही नंदनवन प्राथमिक विद्यालय।
0: अब वो सबका अच्छा दोस्त बन गया था और अपने दोस्तों को कभी भी परेशान नहीं किया करता था।
1: कौन?
0: ननकू और कौन? तो अब नन्हे ननकू ने सबकी बात मानी और खत्म हो गई ननकू की कहानी। बजाओ ताली।

0: सोचे
1: कैसे लाऊं कैसे लाऊं, गिनती नहीं है आती। तीन छः दो नौ नहीं।
0: ना से नानी ने और ननकू ना से नाशपाती।
2: ननकू बोला।
3: क्या बोला?

0: न से नटखट ननकू, अभी आपने सुना ये कार्यक्रम। आशा है श्रोताओं की शब्दों के खेल का यह कार्यक्रम आपको जरूर बहुत अच्छा लगा होगा।
1: इसी क्रम में अब सुनते हैं अगला कार्यक्रम, सामू और कोलाए। श्रोताओं, इस कार्यक्रम के माध्यम से हम जान पाएंगे कि भारत के जनजातीय समाज में पर्यावरण के प्रति जागरूकता की जड़ें कितनी गहरी हैं। सुनते हैं कार्यक्रम सामू और कोलाई।

0: क्या हुआ भाई सामुरे? सामुहो, अरे बड़े घबरा हुआ लग रहे हो।
1: सब बर्बाद भैया। कल दिन भर बीज डाला खेत में भैया, रात भर बारिश में सब बह गए। हाय, इस बेमौसम की बारिश में बोंगा देव का कोप है भैया, और का।
0: अरे ये तो बहुत बुरा हुआ, अब क्या होगा भाई?
1: साल भर उपवास होगा भाई, उपवास। मेरे ही नहीं, 10-12 और लोगों के खेतों के बीज भी बह गए, सब कपाल पकड़ के बैठे हैं। अरे हाँ, तुमने भी तो कल बीज डाले थे।
0: हाँ।
1: चलो देखें उनका क्या हुआ। अरे इतनी बड़ी विपदा में हंस रहा है।
0: अरे मेरे बीजों का कुछ नहीं बिगड़ा होगा।
1: क्यों, क्या तुमने कोई मंत्र फूंका था उसमें?
0: मंत्र? अरे हाँ, मंत्र ही तो है वो।
1: अच्छा, एक कोलाई मुझे भी सिखा देना अपना मंत्र। सिखाएगा?
0: क्यों नहीं। अरे तुम तो बड़े भाई हो मेरे, बल्कि मैं तो पूरे गांव को सिखा दूंगा ये मंत्र, अगर वो लोग चाहें तो।
1: अरे हाँ कोलाई, सभी को सिखा दे, बड़े परेशान हैं बेचारे। मंत्र सीख लेंगे तो सबके बीच बच जाया करेंगे आगे से।
0: तो चलो सबके साथ मेरे खेत में चलो मेरे साथ।
1: अरे हाँ चलो, मैं बाकी सबको भी बुला लेता हूँ, ठीक है?
0: हाँ।
1: अरे

0: थे सब कोलाई के खेत में।
1: अरे कहाँ है?
0: हाँ भैया मंत्र सीखने,
1: मंत्र
0: बीजों को पानी में बहने से बचाने का मंत्र। हाँ भैया हाँ, रात की बारिश में बस इसी के खेत के बीज बचे हैं बहने से। अरे चलो चलो सब चलो रे।
2: ये देखो मेरे खेत की मिट्टी ना बही और ना बीज बहे, सब ठीक ठाक है।
3: कुछ सब जस का तस।
4: अरे कमाल है, सब कर्मा की कृपा है भैया।
2: देखो भैया, मेरा मंत्र सीख लोगे तो कर्मा की कृपा तुम सब पर हो जाएगी भाइयों।
4: कोलई, अरे तू हमें भी मंत्र सिखा देना, हम तुझे जो मांगेगा देंगे।
1: अरे हाँ भैया, अब तुम ही हमें इस मुसीबत से बचा सकते हो।
0: अरे हंसते क्यों हो कोलई? दूसरों की विपत्ति पर हंसना हम छोटा नागपुर वालों का तरीका नहीं है।
2: अरे नहीं नहीं सामू भाई, मैं तुम्हारी विपदा पर नहीं हंस रहा था। हा? मैं तो मंत्र पर हंस रहा हूँ।
0: मंत्र पर काहे भैया?
2: अरे इसलिए भैया कि मंत्र कोई है ही नहीं।
0: तो तुमने हमसे झूठ बोला, ये तो और भी बुरी बात है भैया।
2: अरे रे रे रे रे, झूठ नहीं भैया, छोटा सा मजाक किया था बस।
0: अरे ये बेबखत का मजाक, ये तो और भी बुरी बात है।
2: अरे अरे भाइयों सुनो सुनो, गुस्साओ मत। देखो मेरे बीज नहीं बहे तो जानते हो क्यों?
1: क्यों?
2: इन छोटी छोटी झाड़ियों के कारण।
0: कौन सी झाड़ियाँ?
2: ये देख रहा हूँ ना, मैंने अपने खेत के चारों तरफ की मेड़ों पर सनई की झाड़ियाँ लगा रखी हैं।
1: तो क्या इससे?
2: हाँ बिल्कुल ठीक समझे, सारा कमाल इन्हीं का है।
1: अच्छा,
2: बहुत से लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं कि मैंने खेत की इतनी जमीन झाड़ियों में बर्बाद कर रखी है कि मैं पेड़ पौधों के पीछे इतना पागल हूँ कि खेत में ही नहीं घर के चारों तरफ भी नए नए पेड़ लगाता रहता हूँ और हमेशा उनमें मगन रहता हूँ। मगर देखो ना, इन नन्नी नन्नी झाड़ियों ने ही मेरे बीजों को बचा लिया। इनकी जड़ें दीवार बनकर खड़ी हो गई।
1: कोलाई, इसी की पत्तियां तुमने मुझे दी थी ना जब मेरी बच्ची पीली पड़ गई थी।
2: हाँ बिल्कुल, इसकी पत्तियों को पीसकर पिलाने से पीली बीमारी ठीक हो जाती है।
1: अरे हाय, इतने काम किए ये झाड़ी भैया, पर तो मैं भी लगाऊंगा इसे अपने खेतों की मेड़ पर। अरे वाह, दवाई की दवाई और साग का साग
5: और दीवार की दीवार।
4: अरे मैं भी लगाऊंगा अब तो।
1: अरे तू तो बड़ा सियाना है रे कोलाई।
4: ओ, मैं भी तेरा मजाक उड़ाता था रे, मुझे माफ कर देना कोलाई।
2: अरे भैया, अरे भैया तुमने गलती मानी, मैंने बात भुला दी। अरे यही तो जंगल में रहने वालों में अच्छी बात है। अच्छा भाइयों सुनो, देखो मेरे पास थोड़ा बहुत बीज रखा हुआ है, मैं सबको दूंगा थोड़ा थोड़ा, जब तुम्हारे पास होगा तो लौटा देना। करम देव ने चाहा तो इस बार बेमौसम की बारिश नहीं होगी।

0: हुआ।
1: ए, सुनो भाई, ये चुब्बा गांव यही है ना?
2: अरे हाँ हाँ, चुब्बा ही है। किसके यहाँ जाना है?
1: मुखिया के।
2: चलो पहुँचाए देता हूँ। अरे काम का है हमारे मुखिया से तुमको?
1: हमारे मुखिया का काम है तुम्हारे मुखिया से।
2: अच्छा,
1: कहा है कि अगर तुम्हारे गांव में दो अच्छे वर हो तो हमारे साथ भेज दे।
2: अच्छा,
1: हमारे मुखिया की दो बेटियां हैं शादी लायक, दोनों सुंदर सुगढ़ और स्वस्थ, घर और खेत के कामों में होशियार।
2: अच्छा,
1: वर भी वैसे ही होने चाहिए दोनों के, खासकर छोटी वाली का। वो तो इतनी होशियार है कि उसे कोई पसंद ही नहीं आता। अरे उम्र निकली जा रही है, इस बरस 24 की हो जाएगी। हाँ, बहुत अच्छी घरवाली बनेगी और माँ भी। इतने अच्छे अच्छे साग पात लगा रखे हैं, इतनी मेहनत करती है, ऐसी सुंदर माला बनाती है, गाती है। देखो तुम्हारे मुखिया कैसे अच्छे वर भेजता है। बस शादी करनी है

0: दैया, अरे दैया, इतनी बातें तो पहली बार की।
1: हाय,
0: कितनी बढ़िया बातें करते हैं ये दोनों भाई, खासकर कोलाई, है ना?
1: हाँ, है तो सही, पर ये कोलाई होशियार उतना नहीं है।
0: हाय राम, तो क्या ये भी तुझे पसंद नहीं आया?
1: थोड़ा थोड़ा आया, दूसरों से समझदार है पर मुझसे ज्यादा नहीं है।
0: तो ये बात है।
1: अच्छा दीदी, हा? मैं बगिया से फूल लाने जा रही हूँ, तेरे लिए लाऊं?
0: हाँ ले आना, और सुन, थोड़ा साग भी तोड़ लाना, मेहमानों को भात के साथ परोसना है।
1: ले आऊंगी ले आऊंगी। बड़ी चिंता हो रही है तुझे तो पाहुनों की, क्या चुन लिया है किसी को?
0: हाँ, सामू मुझे बहुत अच्छा लगा, बड़ा हंसमुख और भोला भाला है, हमेशा मेरी माने का। हाँ,
1: बधाई हो बहना, बधाई हो, तुझे तेरा बुद्धू मुबारक।
0: अरे अरे, ठहर दोस्त, ठहर।

0: वारी जमुनी,
1: क्या देख रहे हो कोलाई?
0: बहुत सुंदर बगीचा है, तुमने लगाया है ना?
1: हाँ, खाली समय में यही करती हूँ।
0: अरे खाली समय में तो बहुत कुछ कर सकते हैं, यही क्यों?
1: मुझे पेड़ पौधे अच्छे लगते हैं, लेकिन तुम्हें समझ में नहीं आएगा।
0: अरे कोई फायदा तो है नहीं इनमें समय गंवाने से।
1: है क्यों नहीं? इतने सुंदर सुंदर फूल देखकर मन कितना खुश होता है, और ये तरह तरह की साग भाजी। मगर मेहनत करनी पड़ती है कोलाई जी, मेहनत, बहुत मेहनत।
0: अच्छा
1: जी। मगर मेहनत करनी पड़ती है कोलाई जी, मेहनत, बहुत मेहनत।
0: अच्छा।
1: सरा ध्यान ना दो तो सब सड़ जाए। सेवा करे तो मेवा मिलता है, समझे कुछ?
0: इतनी सारी सेवा और थोड़ी सी मेवा। हम तो पेड़ों के दोस्त हैं, एक बार लगा दिया, थोड़ी सी सेवा की और फिर जिंदगी भर मेवा ही मेवा, ढेर सारा। अपने काम आए, दूसरों का भी काम चलाए, समझी कुछ?
1: क्या मतलब?
0: मतलब ये कि बहुत साल पहले मैंने कटहल, महुआ, आम जैसे पेड़ लगाए थे, खूब डटकर सेवा की शुरू शुरू में, आंधी तूफान जानवर शीत से बचाया। अब मेरे दोस्त पेड़ मुझे फल देते हैं, मैं लेता हूँ, खाता हूँ, खिलाता हूँ, मेहनत करता हूँ, मगर जानवर की तरह नहीं, बैल की तरह नहीं, आदमी की तरह सोच विचार कर। मगर तुम्हारे गांव वालों की तरह अपना ही राग नहीं गाता रहता मैं।
1: तुम सारा फल बांट देते हो?
0: हाँ, जो जितना चाहे खाए, मना नहीं करता हूँ मैं, बाकी ढेर सा हाट में बिक जाता है, आगे अपने बाल बच्चों के लिए भी तो बचाना है ना।

0: तामो और कोदाई अभी आप सुन रहे थे भारत की ये जनजातीय लोक कथा। और अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग प्रसारण यहीं पर समाप्त होता है। तो अपने मित्र अजीत
1: और विमलेश को तकनीकी टीम के साथ आज्ञा दीजिए। नमस्कार।

0: फिल्म मेकिंग एक क्रिएटिव फील्ड है और यदि आप क्रिएटिव सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है। तो आज विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
1: The world is here.
2: इस अभियान का आह्वान, यदि है आपको टीबी के लक्षण तो जल्द जांच से ही होगा सबसे तेज समाधान। टीबी होने पर जल्द जांच से उपचार में आती है तेजी और गंभीर बीमारी का खतरा होता है कम। सुरक्षित होता है आपका परिवार और अन्य करीबी जन। कुछ समूहों में टीबी का खतरा अधिक होता है, जैसे वे लोग जिन्हें पिछले 5 वर्ष में टीबी हुआ हो, 60 वर्ष या उससे अधिक आयु, धूम्रपान और शराब का सेवन करने वाले, कुपोषित, टीबी रोगी के साथ रहते हों, मधुमेह रोगी, एचआईवी से पीड़ित लोग। तो टीबी के लक्षण होने पर अपने नजदीकी सरकारी या निजी अस्पताल या आयुष्मान आरोग्य मंदिर में निःशुल्क जाँच और उपचार पाएं। आइए हम सब साथ मिलकर देश को टीबी मुक्त बनाएं।
3: टीबी फ्री इंडिया बनाने में सक्रिय भूमिका निभाएं।
2: डाउनलोड करें टीबी आरोग्य साथी ऐप, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
4: हाय नमस्कार, मैं हूं आरजे रौनक और आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM पर।

0: हमारा शरीर जब अग्नि के संपर्क में आता है तो शरीर को बड़ी पीड़ा होती है। कल्पना करिए, जब किसी इंसान के चारों तरफ आग ही आग हो और जब वो वहां फंस जाए जहां से निकलना मुश्किल हो, तो हम कल्पना कर सकते हैं कि कितनी बड़ी घटना दुर्घटना घट सकती है। आग से अपने आप को हम कैसे बचाकर रखें, वो कौन कौन सी सावधानियां हैं जो आपको हमें बरतने की बहुत जरूरत है। राम राम दो असलाम सत श्री अकाल आदाब, मैं हूं गगन आपके साथ और आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि कहीं कभी जनधन हानि न हो, लेकिन अगर हम लापरवाही बरत रहे हैं तो ये हमारे लिए सही नहीं है। इस गर्मी के मौसम में हमें सिर्फ कुछ सावधानियों को ध्यान में रखने की जरूरत है, क्योंकि दिल्ली NCR में बढ़ती आग की घटनाओं की वजह से जनधन हानि हमें देखने को मिल रही है। और इन घटनाओं से सबक लेते हुए गौतम बुद्ध नगर जिला क्या कर रहा है उसके बारे में बात करते हैं और हमें क्या करना है। क्लब, होटल, मॉल, स्कूल और अस्पतालों के प्रबंधकों के साथ एक हमें मीटिंग करनी चाहिए, जो कि सरकारी अमला ये करता रहता है समय दर समय। हमारा फर्ज बनता है कि इस तरीके की मीटिंग में हमें सहयोग करना चाहिए। जी हाँ, आपदा प्रबंधन योजना, इसके तहत अग्नि सुरक्षा उपकरण, हर मंजिल पर वर्किंग कंडीशन में स्मोक डिटेक्टर, फायर अलार्म और सही श्रेणी के अग्निशमक यंत्र लगाए। निकास मार्ग यानी कि आपातकालीन सीढ़ियों और बाहर निकलने के रास्तों को हमेशा साफ रखें, वहां कोई सामान जमा ना करें। विद्युत सुरक्षा यानी कि बिजली के आउटलेट को ओवरलोड ना करें और शॉर्ट सर्किट से बचने के लिए सालाना वायरिंग की जांच करवाएं। इमरजेंसी प्लान यानी अपने संस्थान या घर का एक फ्लोर प्लान यानी निकासी नक्शा बनाएं और समय समय पर फायर मॉक ड्रिल का अभ्यास करें। आग लगने की स्थिति में तुरंत क्या करें, ध्यान दीजिए, अलार्म बजाएं। आग दिखने पर तुरंत फायर अलार्म का बटन दबाएं और आग आग चिल्लाकर दूसरों को सतर्क करें। तुरंत कॉल करें अग्निशमन सेवा को सूचित करने के लिए, तुरंत 101 नंबर पर कॉल करें। सीढ़ियों का प्रयोग यानी बाहर निकलने के लिए हमेशा केवल सीढ़ियों का उपयोग करें, लिफ्ट का उपयोग बिल्कुल ना करें। धुएं से बचाव अर्थात यदि कमरे में धुआं भरा हो तो नाक मुंह को गीले कपड़े से ढकें और फर्श पर झुककर या रेंगकर बाहर निकलें। दरवाजा जांचें, इसके अंतर्गत बात सामने आती है कि किसी भी बंद दरवाजे को खोलने से पहले उसे हाथ के पिछले हिस्से से छू कर देखें, यदि वो गर्म है तो उसे न खोलें। कहने का आशय यही है कि आपकी जान बेशकीमती है। कहते हैं कि सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी, हमें दुर्घटना घटने से बचाना है तो सावधानी को ध्यान में रखना है। अपना ख्याल रखिए और ऐसी जनहित में जारी जानकारी को सुनने के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM। नमस्कार, आप सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना काम यूनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM, मेरे यानी गगन के साथ बात हेल्थ की। में आज हम बात करते हैं कि डाइजेशन बढ़ाने के लिए अगर आप चाय पी रहे हैं तो हम सजेस्ट करेंगे कि 4 हर्बल चाय पीजिए। वो कौन कौन सी है इसके विषय में बात करेंगे, लेकिन अगर आपका पेट फूला हुआ है तो वो कम हो जाएगा या यूं कहें कि पिचक जाएगा या यूं कहें कि वेट लॉस होगा। जानते हैं कि गर्मियों में किन नेचुरल इंग्रेडिएंट्स से बनी चाय पीने से आपको ब्लोटिंग की समस्या से आराम मिल सकता है, ये एक समस्या है। अब बात करते हैं इसी विषय में, पेट फूलने पर आराम के लिए आप पीजिए हर्बल टी। पेट फूलने की समस्या गर्मियों में बढ़ सकती है और मौसम बदलने के साथ ही लोगों को डाइजेस्टिव सिस्टम से जुड़ी समस्याएं होने लगती हैं और इसकी वजह से पेट में गैस बनने लगती है और पेट फूलने लगता है। गर्मियों में बार बार ठंडा पानी पीने, हैवी मील खाने, ज्यादा कोल्ड ड्रिंक पीने से डाइजेशन स्लो हो जाता है। इसी वजह से लोगों को डाइजेस्टिव सिस्टम से जुड़ी समस्याएं भी बढ़ जाती हैं। पेट फूलने की समस्या से आराम पाने के लिए हर्बल टी आप पी सकते हैं। आइए जानते हैं कि गर्मियों में किन नेचुरल इंग्रेडिएंट्स से बनी चाय पीने से आपको ब्लोटिंग की समस्या से आराम मिल सकता है। तो बात सामने आती है कैमोमाइल टी के विषय में बात करते हैं। एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर कैमोमाइल के फूलों से तैयार होने वाली हर्बल टी इन्फ्लेमेशन कम करती है और स्ट्रेस से भी राहत दिलाती है। कैमोमाइल टी पीने से पेट की गैस कम होती है। इसी तरह पीरियड्स के दौरान होने वाले मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स की समस्या और जोड़ों के दर्द से राहत पाने के लिए भी कैमोमाइल की चाय लाभकारी मानी जाती है। सौंफ की चाय, गर्मियों में सौंफ का शरबत पीने से शरीर को ठंडक मिलती है। ये शरीर के तापमान को संतुलित रखता है। इसी तरह सौंफ के दानों को उबालकर बनाई जाने वाली चाय भी गर्मियों में डाइजेशन बूस्ट करने का काम करती है। ये चाय पीने से पेट में भारीपन, गैस और ब्लोटिंग की समस्या कम होती है। अब बात करते हैं अजवाइन की चाय के विषय में। ये देसी मसाला गैस और अपच जैसी समस्याओं से आराम दिलाने का खास नुस्खा है। अजवाइन के बीजों को फाकने से अर्थात लेने से कॉन्स्टिपेशन की समस्या कम होती है और ये खाने का फ्लेवर भी बढ़ाता है। अजवाइन के बीजों को रात भर पानी में भिगोकर रखें और अगले दिन इस पानी को अच्छी तरह से उबालें, थोड़ा सा काला नमक मिलाएं और इस चाय को छानकर पिएं। इस तरह आप स्वादानुसार शहद भी इस चाय में मिला सकते हैं। अदरक और शहद की चाय। जी हाँ, पेट की समस्याओं से आराम पाने के लिए अदरक यानी कि जिंजर का इस्तेमाल बहुत असरदार माना जाता है। ये पेट की समस्याओं को कम करने के लिए अदरक के साथ नींबू, शहद और हल्दी जैसी चीजों को मिलाकर हर्बल टी बनाई जाती है। अदरक की चाय पीने से डाइजेशन बेहतर बनता है और इससे पेट की गैस और ब्लोटिंग की समस्या कम होती है। ऐसी खास जानकारी के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन, सुनो शारदा 90.8 FM।
1: हाय, दिस इज शालमली खोलगड़े एंड यू आर लिसनिंग टू मी ऑन 90.8 FM, सुनो शारदा।

0: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, जहां सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया भर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ, आप यहीं के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in।
1: मेरा नाम गोलू है, मुन्नी का बड़ा भाई। एक दिन स्कूल से आया तो देखा मुन्नी रो रही थी, सोचा प्यास लगी होगी। मैं भाग के दादी के पास गया, बोला मुन्नी को पानी पिला दो ना। दादी ने एकदम मना कर दिया, बोली 6 महीने तक मुन्नी सिर्फ मम्मी का दूध पिएगी, और कुछ खिलाया पिलाया तो 10 हो सकते हैं। अगली बार मुन्नी रोई ना, मैंने उसके कान पे जाके कह दिया 6 महीने तक सिर्फ मम्मी का दूध पीना है।
2: स्तनपान विकल्प नहीं संकल्प है, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
0: स्मार्ट के सहयोग से अभी आप सुन रहे थे ये खास जानकारी। स्वास्थ्य बाण कार्यक्रम के अंतर्गत ऐसी अधिक जानकारी के लिए सुनते रहिए।
3: हाय, मैं हूं नवाजुद्दीन सिद्दीकी और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM ग्रेटर नोएडा का अपना

0: बता दूं? वो यहीं पर
1: नहीं है।
0: ऐसे नहीं बताऊंगा, तुम लोग एक दायरे में खड़े हो जाओ, जिसके कंधे पे रुमाल रख दो बच्चे मर जाओ।

धरती मेरी धरती, लीजिए प्रस्तुत है सौर मंडल कैसे बना। श्रोताओ, ब्रह्मांड के रहस्यों से शुरू हुआ हमारा सफर आज हमें सौर मंडल के उद्भव पर ले आया है। आज की इस कड़ी में हम जानेंगे सौर मंडल कैसे बना और बिग बैंग के आगे की कहानी। तो प्रस्तुत है सौर मंडल कैसे बना।

0: गया ये लड़का।
1: मानव, क्या है दीदी?
0: मानव जरा अपने नए कलर तो देना।
1: वो 12 रंगों वाले?
0: हाँ हाँ वही, चल जल्दी से ले आ।
1: पर दीदी वो तो नए हैं।
0: अरे तो क्या हुआ, और वैसे भी किसी को अगर कुछ दो तो अपनी सबसे प्यारी चीज दो, जो खुद को पसंद नहीं वो देने से क्या फायदा।
2: सृष्टि, अरे सृष्टि क्या हुआ भाई, क्या बात चल रही है?
0: विवेक भैया, मानव अपने नए कलर नहीं दे रहा, मुझे जरूरत है।
1: दीदी वो पुराने वाले कलर ले लो ना।
3: सुनो सुनो सुनो बच्चों, तुम्हारे पापा नवनीत अंकल को लेकर आ रहे हैं यहाँ। चलो चलो चलो जल्दी से अपना कमरा ठीक कर लो।
0: कमरा क्यों ठीक कर ले?
2: अरे सृष्टि, नवनीत अंकल 2 दिन हमारे यहीं रहेंगे इसलिए।
1: ओह अच्छा, वो टेलीस्कोप वाले नवनीत अंकल?
0: हाँ हाँ वही। पता है वो खगोल विज्ञानी है।
2: हाँ, रोज वो ग्रहों तारों और अंतरिक्ष की सैर करते हैं।
1: क्या अंतरिक्ष की सैर?
2: हाँ।
1: क्या वो अंतरिक्ष यात्री है?
0: अरे नहीं मानव, विवेक भैया का मतलब है कि नवनीत अंकल रोज अपने टेलीस्कोप से अंतरिक्ष को निहारते हैं, समझे?
1: अच्छा।
3: लगता है आ गए। नमस्ते भाई साहब।
4: नमस्ते भाभी जी। नमस्ते।
3: कैसे हैं?
0: नमस्ते अंकल। ठीक है पापा।
4: और विवेक, सृष्टि, मानव कैसे हो तुम लोग?
0: बिल्कुल ठीक अंकल,
2: बिंदास।
4: और बताओ क्या चल रहा है?
3: लीजिए भाई साहब, आने लीजिए।
4: शुक्रिया भाभी जी। हाँ तो भाई, मानव का क्या हाल है?
0: अरे अंकल, मानव ने तो आपको अंतरिक्ष यात्री बना डाला।
4: सृष्टि, पिछली बार मिले थे तो मानव काफी छोटा था, सृष्टि से कुछ सामान या खिलौने को लेकर लड़ रहा था।
2: अरे अंकल, आज भी मानव एक छोटी सी लड़ाई लड़ रहा था।
5: लड़ाई लड़ाई? अच्छा, किस बात पे?
0: अरे पापा, अपने नए कलर मुझे देने में इसको परेशानी हो रही है।
5: अच्छा।
4: अरे सृष्टि, मानव कभी धरती ने हमें देते हुए कुछ नहीं सोचा तो हम सोचने वाले कौन होते? हम तो इस धरती के सामने बहुत छोटे हैं, फिर भी ये अपना प्यार देखो हम पर लुटाती चली जाती है।
3: बिल्कुल ठीक कहा भाई साहब आपने, धरती ने तो बस देना ही सिखा है हमें।
4: बिल्कुल भाभी जी, भाई इस देने में ही तो पूरा ब्रह्मांड बन गया। ब्रह्मांड का जन्म कैसे हुआ ये पता है? सब कुछ बस दिया ही दिया है।
0: हाँ अंकल, डॉक्टर अंजुम ने ब्रह्मांड के बारे में बताया था कि एक महाविस्फोट बिग बैंग के साथ पूरा ब्रह्मांड बना और फैलना शुरू हुआ।
1: हाँ अंकल, और ये भी बताया कि सारी मंदाकिनियां एक दूसरे से दूर भाग रही है, पर हमारे सौरमंडल का तो नंबर ही नहीं आया।
4: अरे आता कैसे भाई, बिग बैंग को हुए तो 15 अरब साल हो गए और हमारा सौरमंडल तो 4.5 अरब साल पहले ही बना है।
0: अच्छा अंकल, इस बीच में क्या हुआ?
4: देखो सृष्टि, इस बीच में मूल कण यानी फंडामेंटल पार्टिकल्स बने, नए परमाणु बने जैसे हाइड्रोजन और फिर हीलियम। वैसे इस सब में बस कुछ मिनट ही लगे।
0: शुरुआत में तो तापमान बहुत ज्यादा था ना अंकल?
4: पर धीरे धीरे ब्रह्मांड ठंडा हो रहा था, इसी कारण से तो प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन मिलकर हीलियम या हाइड्रोजन बनाने लगे। करीब 1,00,000 साल में तापमान 10,000 डिग्री सेल्सियस के आसपास गिर गया।
1: अंकल फिर तो सबसे पहले मंदाकिनी ही बनी होगी।
4: देखो मंदाकिनी सबसे पहले ही बनी क्योंकि ठंडी हो रही गैस एक साथ हो गई। हाँ, इससे वो गुरुत्वाकर्षण के द्वारा अन्य पदार्थ को भी आकर्षित करने लगी। बाद में मंदाकिनियों के ये आरंभिक रूप अपने ही वजन से सिकुड़ने लगे।
0: और कोई अंतर नहीं आया अंकल?
4: सृष्टि, उनके और टुकड़े हो गए। ये टुकड़े इतने भारी थे जितने तारे होते हैं।
1: अच्छा, फिर क्या हुआ?
4: फिर ये गैस के गोले जो मंदाकिनी के ही टुकड़े थे सिकुड़ते गए, पर इस प्रक्रिया के दौरान उनका तापमान बढ़ गया।
0: कितना तापमान बढ़ गया अंकल?
4: लगभग 10,00,000 डिग्री सेल्सियस।
0: इतना तापमान तो तारे के केंद्र में होता है ना?
4: अरे बिल्कुल सही सृष्टि, बिल्कुल सही।
0: थैंक यू अंकल।
4: फिर ये गोले इस तरह तारे बन गए क्योंकि 10,00,000 डिग्री सेल्सियस तापमान का मतलब है कि इनके केंद्र में नाभिकीय अभिक्रिया होने लगी।
1: अच्छा।
4: पर केंद्र में गर्मी पैदा होने का मतलब हुआ कि इनका सिकुड़ना रुकने लगा और इन गोलों के आसपास की गैस और उसमें गैस के संघनन होने से धूल कण भी बने थे।
0: ये तो वैसा ही है जैसे बादल में वाष्प और धूल के कण होते हैं।
4: हाँ भाई वैसे ही, बस बादलों के केंद्र में ये नाभिकीय भट्टी यानी तारे नहीं होते।
1: और फिर क्या हुआ?
4: बस ये बादल थे नेब्यूले जिन्हें निहारिकाएं कहते हैं। इनमें तारों के चारों ओर के धूल के कण गुरुत्वाकर्षण के कारण एक चपटी तश्तरी की आकृति में थे। हाँ, ये कण एक दूसरे से जुड़ने लगे क्योंकि वो लगातार एक दूसरे के संपर्क में आ रहे थे, और जब ये धूल के कण तश्तरी के मध्य तल की ओर गिरते थे तो कभी चिपक जाते थे, कभी कभार टूट भी जाते थे। हाँ, पर कुल मिलाकर तो इनका आकार बढ़ता रहा ना।
0: अंकल, ये सब कितनी देर चला?
4: सृष्टि, शायद बादल वाली परिस्थितियां कुछ लाख साल चली होंगी, पर तुम्हें याद रखना है कि ब्रह्मांड को बने करीब 10 अरब साल हो चुके हैं, यानी सौर मंडल का जन्म करीब 4.5 अरब साल पहले हुआ।
0: ये कैसे पता चला?
4: भाई, बड़ा टेढ़ा सवाल है क्योंकि तब कोई घड़ी तो छोड़ी नहीं गई थी।
0: ये जवाब तो गोलमोल है अंकल। अरे दीदी, शर्माती क्यों हो? ये क्यों नहीं कहती कि ये तो कोई जवाब ही नहीं हुआ?
5: लिया भाई।
4: बिल्कुल नहीं हुआ। अच्छा देखो, कभी तुमने टूटते तारे देखे?
0: हाँ हाँ अंकल, मैंने देखे हैं।
4: शायद तुम्हें पता नहीं होगा सृष्टि कि ये तारे नहीं होते बल्कि ठोस कण होते हैं। ये धूमकेतु से आए भी हो सकते हैं, मंगल या चंद्रमा से आए टुकड़े भी हो सकते हैं, और मंगल तथा बृहस्पति के बीच के लघु ग्रहों के टुकड़े भी।
1: अरे, ये तो मुझे पता ही नहीं था।
4: पर ये सच है। और देखो, जब ऐसा कोई बड़ा टुकड़ा पृथ्वी पर गिरता है तो उसे उल्कापिंड या मेटियोराइट कहते हैं।
0: पर अंकल, ये भी मेरे सवाल का जवाब नहीं हुआ ना।
4: बिल्कुल नहीं हुआ।
0: तो
4: इस तरह के उल्का पिंडों का जब रेडियो एक्टिविटी के सिद्धांतों से आयु निर्धारण किया गया तो पता चला कि ये 4.5 अरब साल पुराने तक थे।
0: पर ये तो उल्का पिंडों की आयु हुई।
4: हाँ सृष्टि, मगर इन उल्का पिंडों के कुछ खनिज के सालों में सूर्य से निकले ऊर्जावान कणों के प्रभाव देखने को मिले। इसका मतलब सृष्टि, ये सूरज के बनने के बाद बने।
0: पर हो सकता है कि ये अरबों साल बाद बने हो?
4: नहीं, क्योंकि कुछ उल्काओं में ऐसे समस्थानिक यानी आइसोटोप मिले जो इन खनिजों में समाये तो आयोडीन की तरह रेडियो सक्रियता के कारण बदल गए ज़ीनॉन में।
0: इसका मतलब
4: ये सृष्टि कि आयोडीन का समस्थानिक आयोडीन 129 जिस प्रक्रिया में बना था उसके बाद अगर काफी ज्यादा यानी कुछ करोड़ साल भी बीत गए होते तो इस आयोडीन का क्षय ज़ीनॉन में हो गया होता, और ज़ीनॉन तो निष्क्रिय गैस है, वो उस खनिज में कैसे आती?
1: तो इसका मतलब सौर मंडल में बादल में पहले सूरज बना, फिर ग्रह और दूसरे ठोस पिंड।
3: मुझे तो बस इतना समझ में आया है कि करीब 15 अरब साल पहले ब्रह्मांड, करीब 4.5 अरब साल पहले सूरज, और लगभग तुरंत बाद ग्रह बने। अब मेरे ख्याल से मुझे चाय की जरूरत है, आपको भी क्या?
5: अब नेकी और इतनी लंबी पूछ है।
3: लीजिए
4: भाई। भाई साहब, भाभी को तो मानना पड़ेगा।
5: हाँ,
4: एक बार में ही बात का निचोड़ निकाल लिया।
5: अरे हाँ, इसीलिए तो हम परेशान रहते हैं, कोई बात छिपा ही नहीं पाते।

0: सृष्टि। अरे भाई सृष्टि, तुम तो वाकई कमाल की चीज हो।
1: मैं कह लूं,
2: बोल दो बोल
1: बोल दूं,
2: कोई नहीं, बोल दूं, बोल दूं।
1: जैसा पिता वैसी पुत्री है।
3: कमाल तो मैं हूँ अंकल, पर अगर सब ग्रह एक ही तरह बने तो उनमें इतना अंतर क्यों है
0: भाई? ये तो सूर्य प्रकाश बताएंगे।
1: हाँ भाई, ये तो मेरे भी गले नहीं उतरी। अब बृहस्पति गैस का गोला, पृथ्वी चट्टान और पानी के साथ साथ वातावरण से भी ढकी है। उधर बुध बिल्कुल पत्थर, तो शुक्र ग्रह अम्लीय गैसों से ढका।
3: यही नहीं, दूर वाले बर्फीले ग्रह भी हैं, शनि, यूरेनस और नेपच्यून भी।
0: देखो सृष्टि, दरअसल इनकी सूरज से दूरी में बहुत अंतर है। अब शुक्र सूर्य से इतना पास है कि इसकी सतह का तापमान 400 से 500 डिग्री सेल्सियस रहता है। यहाँ पानी द्रव रूप में नहीं रह सकता, उबलकर भाप बन जाता है। अब भला बारिश क्या होगी, और फिर उसके वातावरण में अम्ल और अमोनिया।
3: पर बुध पर तो अम्लीय वातावरण नहीं है, यह तो सूर्य के सबसे पास है।
0: अरे बुध पर तो वातावरण ही नहीं है सृष्टि। हाँ, इतना छोटा है, करीब करीब चांद के बराबर, और उसका कमजोर गुरुत्वाकर्षण गैसों को बांध कर नहीं रख सका। सूर्य से निकलने वाली तेज कणों की आंधी ने जो हवा रही भी होगी उसको उड़ा दिया।
3: हवा नहीं, पानी नहीं, तो अंकल वहाँ रहेंगे कैसे?
1: अरे बेटा, पृथ्वी के अलावा कहीं जीवन नहीं मिला है आज तक।
3: ये सच है अंकल?
0: हाँ बिल्कुल, 16 आने सच है सृष्टि। और शायद इसीलिए हमें अपने आप को धन्य समझना चाहिए।
3: हाँ अंकल, वैसे बनने में तो पृथ्वी की प्रक्रिया कोई खास नहीं थी, पर सूर्य की दूरी के कारण इतना अंतर।
0: हाँ, दूर होती तो शनि, यूरेनस, नेपच्यून जैसी ठंडी और बर्फीली होती, पास होती तो बुध जैसी पत्थर या शुक्र जैसी जहरीली हवा से ढकी होती।
3: और मंगल पर?
0: अरे मंगल ग्रह का तापमान 0 से 50 डिग्री सेल्सियस कम रहता है।
3: अच्छा,
1: अब पर नवनीत, वहाँ पहले तो पानी था।
0: हाँ, ऐसे प्रमाण मिले हैं सूर्य प्रकाश कि वहाँ पहले पानी बहता था।
1: हाँ।
0: लेकिन आज तो नहीं है।
3: और अंकल चांद पर?
0: वहाँ भी ना द्रव्य रूप में पानी है ना हवा। कुल मिलाकर ये जो हमारी धरती है ना, अद्भुत है।
1: ये बिल्कुल सही बात।
3: धरती मेरी माता पिता आसमान।
1: अरे क्या बात है भाई, बड़े म्यूजिकल मूड में हो माना। अरे वाह वसुधा,
4: किसी खुशी में चाय हो जाए।
1: भाई ये काम तुमने बहुत बढ़िया किया वसुधा। लाव लाव चाय। और नवनीत तुम भी चाय लो ना।
4: पर भाई मैंने देवर जी की क्लास मिस कर दी।
0: अरे भाभी, आपके लिए स्पेशल क्लास लगा देगा आपके देवर। पर आज तो काफी देर हो गई है, क्यों सूर्य प्रकाश?
3: अरे अभी देर का हुई है।
4: बस बस, कल सुबह उठते समय 10 बहाने बनाओगे।
3: नहीं माना, मैं कोई बहाने नहीं बनाऊंगा।
0: अरे
2: बिस्कुट भी लीजिए ना।
0: हाँ। अच्छा सृष्टि मानव, अब ये बताओ कि कुछ समझ आया तुम लोगों को कि ये हमारा सौर मंडल कैसे बना और पृथ्वी?
3: हाँ हाँ अंकल, वो तो ठीक है, पर पृथ्वी जब इतने कणों के मिलन से बनी है तो आज इसमें कोर क्यों है? सतह पर क्रस्ट या परपटी क्यों है?
0: अरे वाह,
3: बीच में मेंटल क्यों है?
0: अभी आपके बच्चों को तो काफी कुछ पता है।
1: मेरे बच्चों को बहुत पता है।
4: ये तो ये बात है कि जो भी इन्हें बता दो याद रहता है।
0: कुछ भी कहें भाभी आप, लेकिन सृष्टि का जो सवाल है बहुत अच्छा। देखो सृष्टि, पृथ्वी का उद्भव तो हमने समझा, पर 4.5 अरब साल पहले बनने के बाद इसका विकास कैसे हुआ, ये एक अलग कहानी।
1: भाई नवनीत
0: जी,
1: और तो सब ठीक है, ये बताओ कि ये भौतिकी है, खगोल विज्ञान है या भू विज्ञान है?
0: देखो सूर्य प्रकाश, प्रकृति ऐसा कोई भेद नहीं करती। अब देखिए, पृथ्वी की आयु का पता नहीं चलता अगर उल्काओं का अध्ययन नहीं होता।
1: हाँ,
3: तो पृथ्वी के विकास को समझने के लिए हमें ये सब विषय पढ़ने पड़ेंगे?
0: अरे नहीं सृष्टि, उसमें तो वनस्पति की भी बहुत बड़ी भूमिका है। देखो, अगर पेड़ पौधे नहीं होते तो शायद हमारे वातावरण में ऑक्सीजन नहीं होती। तो क्या वनस्पति विज्ञान भी पढ़ोगे?
3: अरे अंकल, पढ़ने को तो हम जीव विज्ञान भी पढ़ लेंगे।
0: नहीं माना, कुछ नया पढ़ने की जरूरत नहीं है। मैं तो बस ये कहना चाह रहा था कि सभी विषयों की थोड़ी बहुत जानकारी होना पृथ्वी के विकास को समझने में हमारी मदद करती है।
3: तो अंकल, पृथ्वी के विकास के बारे में भी तो कुछ बताओ।
0: बोलो भाई, तुम लोगों को जानना है पृथ्वी के विकास।

0: उसके बाद
1: बिल्कुल
2: मैं तो बिल्कुल तैयार हूँ।
1: हाँ चलिए अच्छा है, तो फिर आज टीवी बंद रहेगा क्यों? मानव सृष्टि बंद रहेगा ना?
0: पता है ग्रुको मार्क्स ने कहा था कि टेलीविजन ज्ञान पाने के लिए सबसे अच्छी चीज है, इसलिए जैसे ही कोई उसे ऑन करता है मैं दूसरे कमरे में जाकर किताब पढ़ने लगता हूँ। अरे भाई चलो भाई, अगर सब चाहते हैं तो फिर पृथ्वी की ही कुछ बात कर लें।
3: हाँ
0: कर लो। देखो ध्यान से सुनना बच्चों, पृथ्वी बनी करीब 4.5 अरब वर्षों पहले। उस समय तो इसका तापमान बहुत ज्यादा था।
2: अच्छा?
0: हाँ, 1.5 से 2000 डिग्री सेल्सियस के बीच।
2: इतनी गर्मी कहाँ से आई अंकल?
0: कई स्रोत थे सृष्टि, एक तो पृथ्वी के बनने की प्रक्रिया ही कुछ ऐसी थी। भाई पृथ्वी अलग अलग पिंडों के टकरा कर जुड़ने से बनी थी, इसलिए वहां गुरुत्व ऊर्जा इकट्ठी थी। फिर आरंभिक वर्षों में पृथ्वी पर लगातार ठोस पिंडों की कणों की बौछार हो रही थी, इनकी गतिज ऊर्जा भी पृथ्वी ही सोख रही थी।
2: अच्छा, पर अंकल आज ऐसा क्यों नहीं हो रहा?
0: मानव आज ऐसा हो तो रहा है पर बहुत कम।
2: अच्छा,
0: अब देखो कभी कभी ही उल्का पिंड गिरते हैं। खैर, पृथ्वी पर ऊष्मा का एक और स्रोत था। पृथ्वी के पिघले रूप में होने के कारण भारी तत्व पृथ्वी के केंद्र की ओर इकट्ठे होने लगे थे।
2: वैसे ही जैसे पानी में तेजी से चीनी घोलने पर वो गिलास के बीचों बीच आ जाती है।
0: बिल्कुल।
3: अगर मुझे ठीक से याद है नवनीत, तो यूरेनियम थोरियम वगैरह भी भारी तत्वों में आते हैं।
0: बिल्कुल सूर्य प्रकाश, यूरेनियम ही नहीं दूसरे बहुत सारे रेडियोधर्मी तत्व भी भारी होते हैं। भाई सच तो ये है कि भारी तत्वों के कुछ समस्थानिक रेडियो सक्रिय होते हैं।
2: तो ये भी पृथ्वी के गर्म होने का कारण था, है ना?
0: हाँ बिल्कुल सृष्टि। और जब ठोस कण बनने लगे, क्योंकि भारी को ठंडी होने लगी थी, तो इस क्रिया में वो ऊष्मा निकली जो उन्हें गलाने में खर्च हुई थी।
2: पर आज के दिनों में तो केवल रेडियो विघटन वाली ऊष्मा ही महत्वपूर्ण है।
0: बिल्कुल,
3: यानी पृथ्वी से ऊष्मा खो रही है पर अंदर ऊष्मा उपज रही है।
0: हाँ कह सकते हैं। वैसे सूर्य प्रकाश, ऊर्जा को ना तो पैदा किया जा सकता है और ना नष्ट। वो कहते हैं ना, ना जायते ना म्रियते।
3: एक्सक्यूज मी, एक मिनट, वो तो आत्मा के लिए है।
0: हाँ, तो ऊर्जा भी वैसी ही है भाई। देखो पदार्थ से ऊर्जा बन सकती है, ऊर्जा से पदार्थ, ऊर्जा एक रूप से दूसरे में बदल सकती है, लेकिन ये नष्ट नहीं हो सकती।
3: ये बात तो खैर है।
2: अंकल आप रेडियोधर्मी विघटन के बारे में बात कर रहे थे ना?
3: हाँ, आ गई भाई।
0: अरे सृष्टि, उसके बारे में भी एक बड़ा ही रोचक किस्सा है।
2: किस्सा? फिर तो मैं भी सुनूंगा। हाँ हाँ, किस्सा तो बड़े ध्यान से सुनेगा ये मानव।
1: चलो चलो चलो, मानव को क्रिकेट और टीवी के अलावा भी किसी और चीज में मजा तो आ रहा है ना? कीप इट अप मानव।
0: तो सुनो बच्चों ध्यान से, इंग्लैंड की रॉयल सोसाइटी के अध्यक्ष थे लॉर्ड केल्विन। अरे वही केल्विन जिनके नाम पर तापमान का यानी टेम्परेचर का स्केल है।
1: लॉर्ड केल्विन तो भौतिक विद थे ना?
0: हाँ भाभी, और उन्होंने गणना कर बताया कि पृथ्वी की आयु 4 करोड़ साल से अधिक नहीं हो सकती।
2: पर अंकल आपने बताया था कि पृथ्वी की आयु 4.5 अरब वर्ष है।
0: अरे सृष्टि, ये तो बाद में पता चला।
2: अच्छा, लेकिन अंकल लॉर्ड केल्विन की गणना क्या थी?
0: देखो मानव, ये गणना पृथ्वी को आरंभिक उच्च तापमान से वर्तमान तापमान तक ठंडा होने में लगे समय पर आधारित थी।
3: भाई ये तो आसान और सीधी सादी बात लगती है।
0: अरे भाई सूर्य प्रकाश, सीधी बात तब होती जब आरंभ से अब तक पृथ्वी केवल ठंडी ही होती, पर पृथ्वी की कोर में रेडियोधर्मिता के कारण ऊष्मा भी पैदा हो रही है।
2: तो क्या इतने बड़े विद्वान को ये बात नहीं पता थी?
0: हाँ, नई सृष्टि, उस समय तक किसी ने रेडियो धर्मिता का नाम भी नहीं सुना था। ये बात और है कि आज तो हाई स्कूल का बच्चा भी रेडियो धर्मिता के बारे में बड़ी अच्छी तरह से जानता है।
3: है ना सृष्टि, जानती हो ना?
2: बिल्कुल जानती हूँ। तो अंकल रेडियो धर्मिता की खोज कब हुई थी?
0: मानव, रेडियो धर्मिता की खोज हेनरी बेकुरल और रोंजन ने संयुक्त रूप से 1895 और 96 के आसपास की।
1: अगर रेडियो धर्मिता की खोज लॉर्ड केल्विन के समय हो जाती तो उसकी पृथ्वी की आयु संबंधी गणना गलत नहीं होती।
2: लेकिन अंकल आप तो कोई किस्सा सुनाने वाले थे ना। अरे बुद्धू यही तो किस्सा था। मेरा मजाक उड़ाते हो।
3: अरे नहीं नहीं नहीं बेटा नहीं।
0: अरे नहीं मानव भाई, कोई किसी का मजाक कैसे उड़ा सकता है। देखो बेटा होता यह है कि हम छोटी छोटी बातें अपने दिल से लगा लेते हैं।
1: और इतनी विशाल पृथ्वी की कहानी सुनकर हमें अब अपना मन भी इस धरती की तरह विशाल रखना चाहिए।
0: बिल्कुल
2: बेटा। हाँ अब मैं बिल्कुल समझ गया दीदी। अब आप मेरे सारे कलर ले सकती हो।
4: अरे वाह मानव तो सच में विशाल दिल का हो गया।
2: अरे दीदी जब धरती ने इतने रंग बिखेरे हैं तो इन कलरों की क्या कीमत।
0: सौरमंडल कैसे बना, अभी आप विज्ञान प्रसार के प्रयास से तैयार और प्रसारित किए जाने वाले विज्ञान धारावाहिक धरती मेरी धरती। आलेख एवं अनुसंधान चंद्रमोहन नौटियाल का था। निर्देशक थे सुदर्शन कुमार। प्रस्तुतकर्ता राजीव दुबे और प्रस्तुति सहायक संदीप छिकारा। इस कड़ी में भाग लेने वाले कलाकार थे योगेंद्र टिक्कू, रजनीश शर्मा, लालिमा अनेजा, रिधिमा बग्गा, मेघा शर्मा और समीर ठुकराल।

0: लेकिन दोस्त, अगर ऐसे ही जिंदगी का साथ निभाते चले तो जिंदगी तुम्हारा साथ निभाना छोड़ देगी और अस्पतालों के चक्कर लगेंगे सो अलग।
1: जी हाँ, आप भी सचेत रहें और रहें धूम्रपान से दूर, क्योंकि हम सबका है यही सपना, नशा मुक्त हो भारत अपना। सुनो शारदा 90.8 FM द्वारा जनहित में जारी।

जिसे देखो दिल की धुनी रमाता। अरे ये मंदिर नहीं है, शिवाला नहीं है, हसीनों से कह दो कहीं और जाएं, मेरा दिल है दिल, धर्मशाला नहीं है।

फूल खिलते हैं, बहारों का समा होता है, ऐसे मौसम में ही तो प्यार जवां होता है। दिल की बातों को होंठों से नहीं कहते, ये फसाना तो निगाहों से बयां होता है।

0: महावारी के दौरान क्या करें और क्या ना करें। महावारी के दौरान एक ही पैड का लंबे समय तक बिल्कुल प्रयोग नहीं करना चाहिए।
1: आप किसी भी ब्रांड के सैनिटरी पैड का उपयोग कर सकते हैं। महावारी के समय दिन भर में कम से कम 2 से 3 बार सैनिटरी पैड को बदलना चाहिए। पैड को ज्यादा गीले होने पर वो फट सकता है, जिससे सैनिटरी पैड में मौजूद हानिकारक रसायन आपके शरीर को नुकसान पहुंचा सकते हैं।
0: याद रखें, महावारी के दौरान स्वच्छता का महत्व और बढ़ जाता है। गंदे, मलिन, अस्वच्छ हाथों से सैनिटरी पैड बदलने से हेपेटाइटिस बी जैसे वायरस और संक्रमण का खतरा बढ़ सकता है।
1: कभी कभी योनि पर पानी का अत्यधिक छिड़काव उसे बैक्टीरिया के संपर्क में ला सकता है। योनि एक ऐसा अंग है जो खुद को स्वयं साफ कर सकता है, इसलिए उसे ऐसे ही छोड़ दें।
0: असुरक्षित यौन संबंध अपने आप में बहुत जोखिम भरा है और ऐसे में रक्त स्राव का मिलना और जोखिम भरा हो जाता है। महावारी के दौरान यदि महिलाएं असुरक्षित यौन संबंध बनाती हैं, तो यौन जनित रोग हेपेटाइटिस बी और HIV का खतरा कई गुना बढ़ जाता है।
1: महावारी संबंधी अधिक जानकारी के लिए नजदीकी ANM या आशा से संपर्क करें।
0: ये खास जानकारी आप सुन रहे थे सुनो शारदा 90.8 FM पर यूनिसेफ के सहयोग से।
2: फिल्म मेकिंग एक क्रिएटिव फील्ड है और यदि आप क्रिएटिव सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है। तो आज विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और TV प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
3: The world is here.
4: I'm sorry, Nami. मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे प्लीज माफ कर दो।
5: It's over. अब सब कुछ खत्म हो चुका है शेर। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन अब तुमसे शादी नहीं कर सकती।

0: मैं 3 घंटे से तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ।
1: सो व्हाट, मैं काम में बिजी था यार, तुम मुझसे मिलना चाहती थी, मैंने तो नहीं बोला मेरी वेट करो।
0: यू नो शेफ, इट रियली हर्ट्स।

0: पीएम फसल बीमा योजना से करीब 2 लाख करोड़ रुपए क्लेम के रूप में किसानों को मिले हैं।
1: मैं 15-20 वर्षों से खेती कर रहा हूँ, मेरे पास 3 हेक्टेयर लगभग जमीन है। प्रधानमंत्री फसल बीमा हमें आर्थिक मदद करती है। समय 23-24 में खरीफ की फसल में 48,900 रुपए मिला। हमारे जो संपर्की किसान है मैं उनको समझाऊंगा बताऊंगा, जैसे मुझे सहायता प्राप्त हुई है ऐसे अन्य लोगों को भी हो।
2: खरीफ फसल बीमा के लिए शीघ्र पंजीकरण कराएं।
3: बैंक शाखा, बीमा कंपनी, कृषि ऋण समिति, जन सेवा केंद्र से संपर्क करें।
2: फसल बीमा से संबंधित जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर 1-4447 पर कॉल करें।
4: फसल बीमा कराओ, सुरक्षा कवच पाओ।
5: पापा कहते हैं बेटा बड़ा नाम करेगा, पता नहीं मेरा देवांश क्या करेगा। 12th पास हो गया देवांश, फ्यूचर के बारे में कुछ सोचा है कि नहीं सोचा है?
6: बिल्कुल सोचा है पापा।
5: क्या सोचा है?
6: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट ऑफर करता है एनिमेशन, VFX, गेमिंग डिजाइन एंड विजुअल इफेक्ट्स का कोर्स। मेरे तो सभी फ्रेंड्स ने वहाँ पे एडमिशन ले लिया है और आपके बेस्ट फ्रेंड शर्मा जी के बेटे ने भी वहाँ पर एडमिशन ले लिया है।
5: ये शर्मा वही है ना जिनके बेटे ने टॉप किया है?
6: जी पापा।
5: क्या बात है, तो फिर आज ही चलते हैं।
6: हाँ पापा बिल्कुल।
7: The programs under Sharda School of Media, Film and Entertainment are designed to enable students to develop skills to think about artistic and cultural interventions critically.
8: So where are you? The world is here at Sharda University.

हमारा शरीर जब अग्नि के संपर्क में आता है तो शरीर को बड़ी पीड़ा होती है। कल्पना करिए, जब किसी इंसान के चारों तरफ आग ही आग हो और जब वो वहां फंस जाए जहां से निकलना मुश्किल हो, तो हम कल्पना कर सकते हैं कि कितनी बड़ी घटना दुर्घटना घट सकती है। आग से अपने आप को हम कैसे बचा कर रखें, वो कौन कौन सी सावधानियां हैं जो आपको हमें बरतने की बहुत जरूरत है। राम राम दो असलाम सत श्री अकाल आदाब, मैं हूं गगन आपके साथ और आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि कहीं कभी जनधन हानि ना हो, लेकिन अगर हम लापरवाही बरत रहे हैं तो ये हमारे लिए सही नहीं है। इस गर्मी के मौसम में हमें सिर्फ कुछ सावधानियों को ध्यान में रखने की जरूरत है, क्योंकि दिल्ली NCR में बढ़ती आग की घटनाओं की वजह से जनधन हानि हमें देखने को मिल रही है। और इन घटनाओं से सबक लेते हुए गौतम बुद्ध नगर जिला क्या कर रहा है उसके बारे में बात करते हैं। और हमें क्या करना है, क्लब, होटल, मॉल, स्कूल और अस्पतालों के प्रबंधकों के साथ एक हमें मीटिंग करनी चाहिए, जो कि सरकारी अमला ये करता रहता है समय दर समय। हमारा फर्ज बनता है कि इस तरीके की मीटिंग में हमें सहयोग करना चाहिए। जी हाँ, आपदा प्रबंधन योजना, इसके तहत अग्नि सुरक्षा उपकरण, हर मंजिल पर वर्किंग कंडीशन में स्मोक डिटेक्टर, फायर अलार्म और सही श्रेणी के अग्निशमक यंत्र लगाए, निकास मार्ग यानी कि आपातकालीन सीढ़ियों और बाहर निकलने के रास्तों को हमेशा साफ रखें, वहां कोई सामान जमा ना करें, विद्युत सुरक्षा यानी कि बिजली के आउटलेट को ओवरलोड ना करें और शॉर्ट सर्किट से बचने के लिए सालाना वायरिंग की जांच करवाएं, इमरजेंसी प्लान यानी अपने संस्थान या घर का एक फ्लोर प्लान यानी निकासी नक्शा बनाएं और समय समय पर फायर मॉक ड्रिल का अभ्यास करें। आग लगने की स्थिति में तुरंत क्या करें, ध्यान दीजिए, अलार्म बजाएं। आग दिखने पर तुरंत फायर अलार्म का बटन दबाएं और आग आग चिल्लाकर दूसरों को सतर्क करें। तुरंत कॉल करें अग्निशमन सेवा को सूचित करने के लिए, तुरंत 101 नंबर पर कॉल करें। सीढ़ियों का प्रयोग यानी बाहर निकलने के लिए हमेशा केवल सीढ़ियों का उपयोग करें, लिफ्ट का उपयोग बिल्कुल ना करें। धुएं से बचाव अर्थात यदि कमरे में धुआं भरा हो तो नाक मुंह को गीले कपड़े से ढकें और फर्श पर झुककर या रेंगकर बाहर निकलें। दरवाजा जांचें, इसके अंतर्गत बात सामने आती है कि किसी भी बंद दरवाजे को खोलने से पहले उसे हाथ के पिछले हिस्से से छूकर देखें, यदि वो गर्म है तो उसे न खोलें। कहने का आशय यही है कि आपकी जान बेशकीमती है। कहते हैं कि सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी, हमें दुर्घटना घटने से बचाना है तो सावधानी को ध्यान में रखना है। अपना ख्याल रखिए और ऐसी जनहित में जारी जानकारी को सुनने के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM।

0: सुबह 45 मिनट योग करने से बीमारियां दूर रहती हैं और आप स्वस्थ रहते हैं। योग एक ऐसा विज्ञान है जो शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के साथ साथ आध्यात्मिक विकास के लिए बहुत उपयोगी है।
1: आओ करें सब योग।
2: आयुष मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।

शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, जहां सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया पर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ, आप यहीं के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in।

भाई मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम नए अंदाज में। सुनो शारदा 90.8 एफएम सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम। भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर। तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 एफएम।

0: फिल्म मेकिंग एक क्रिएटिव फील्ड है और यदि आप क्रिएटिव सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है। तो आज विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
1: The world is here।

हमारा शरीर जब अग्नि के संपर्क में आता है तो शरीर को बड़ी पीड़ा होती है। कल्पना करिए, जब किसी इंसान के चारों तरफ आग ही आग हो और जब वो वहां फंस जाए जहां से निकलना मुश्किल हो, तो हम कल्पना कर सकते हैं कि कितनी बड़ी घटना दुर्घटना घट सकती है। आग से अपने आप को हम कैसे बचा कर रखें, वो कौन कौन सी सावधानियां हैं जो आपको हमें बरतने की बहुत जरूरत है। राम राम, दो असलाम, सत श्री अकाल, आदाब, मैं हूं गगन आपके साथ और आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि कहीं कभी जनधन हानि ना हो, लेकिन अगर हम लापरवाही बरत रहे हैं तो ये हमारे लिए सही नहीं है। इस गर्मी के मौसम में हमें सिर्फ कुछ सावधानियों को ध्यान में रखने की जरूरत है, क्योंकि दिल्ली NCR में बढ़ती आग की घटनाओं की वजह से जनधन हानि हमें देखने को मिल रही है। और इन घटनाओं से सबक लेते हुए गौतम बुद्ध नगर जिला क्या कर रहा है उसके बारे में बात करते हैं और हमें क्या करना है। क्लब, होटल, मॉल, स्कूल और अस्पतालों के प्रबंधकों के साथ एक हमें मीटिंग करनी चाहिए, जो कि सरकारी अमला ये करता रहता है समय दर समय। हमारा फर्ज बनता है कि इस तरीके की मीटिंग में हमें सहयोग करना चाहिए। जी हाँ, आपदा प्रबंधन योजना, इसके तहत अग्नि सुरक्षा उपकरण, हर मंजिल पर वर्किंग कंडीशन में स्मोक डिटेक्टर, फायर अलार्म और सही श्रेणी के अग्निशमक यंत्र लगाए, निकास मार्ग यानी कि आपातकालीन सीढ़ियों और बाहर निकलने के रास्तों को हमेशा साफ रखें, वहां कोई सामान जमा ना करें, विद्युत सुरक्षा यानी कि बिजली के आउटलेट को ओवरलोड ना करें और शॉर्ट सर्किट से बचने के लिए सालाना वायरिंग की जांच करवाएं, इमरजेंसी प्लान यानी अपने संस्थान या घर का एक फ्लोर प्लान यानी निकासी नक्शा बनाएं और समय समय पर फायर मॉक ड्रिल का अभ्यास करें। आग लगने की स्थिति में तुरंत क्या करें, ध्यान दीजिए, अलार्म बजाएं। आग दिखने पर तुरंत फायर अलार्म का बटन दबाएं और आग आग चिल्लाकर दूसरों को सतर्क करें, तुरंत कॉल करें। अग्निशमन सेवा को सूचित करने के लिए तुरंत 101 नंबर पर कॉल करें। सीढ़ियों का प्रयोग यानी बाहर निकलने के लिए हमेशा केवल सीढ़ियों का उपयोग करें, लिफ्ट का उपयोग बिल्कुल ना करें। धुएं से बचाव अर्थात यदि कमरे में धुआं भरा हो तो नाक मुंह को गीले कपड़े से ढकें और फर्श पर झुककर या रेंगकर बाहर निकलें। दरवाजा जांचें, इसके अंतर्गत बात सामने आती है कि किसी भी बंद दरवाजे को खोलने से पहले उसे हाथ के पिछले हिस्से से छूकर देखें, यदि वो गर्म है तो उसे न खोलें। कहने का आशय यही है कि आपकी जान बेशकीमती है। कहते हैं कि सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी, हमें दुर्घटना घटने से बचाना है तो सावधानी को ध्यान में रखना है। अपना ख्याल रखिए और ऐसी जनहित में जारी जानकारी को सुनने के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM।

0: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, जहां सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया पर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ, आप यही के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in।
1: नमस्कार, आप सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM। भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी मन की बात के माध्यम से जन जन को प्रेरित करते हैं और कहते हैं कि जब आप 18 वर्ष के हो जाएं तो अपना वोटर कार्ड जरूर बनवाएं। वो कहते हैं कि इस उत्सव को अपने जन्मदिन के उत्सव की तरह ही मनाएं। आइए सुनते हैं भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को।
2: मेरे प्यारे देशवासियों, नमस्कार। साथियों, मतदाता ही लोकतंत्र की आत्मा होता है। साथियों, आम तौर पर जब कोई 18 साल का हो जाता है, मतदाता बन जाता है, तो उसे जीवन का एक सामान्य पड़ाव समझा जाता है। लेकिन दरअसल ये अवसर किसी भी भारतीय के जीवन का बहुत बड़ा माइलस्टोन होता है। इसलिए बहुत जरूरी है कि हम देश में वोटर बनने का, मतदाता बनने का उत्सव मनाएं। जैसे हम जन्मदिन पर शुभकामनाएं देते हैं और उसे सेलिब्रेट करते हैं, ठीक वैसे ही जब भी कोई युवा पहली बार मतदाता बने तो पूरा मोहल्ला, गांव या फिर शहर एकजुट होकर उसका अभिनंदन करे और मिठाइयां बांटी जाए। इससे लोगों में वोटिंग के प्रति जागरूकता बढ़ेगी। इसके साथ ही यह भावना और सशक्त होगी कि एक वोटर होना कितना मायने रखता है। साथियों, देश में जो भी लोग चुनावी प्रक्रिया से जुड़े रहते हैं, जो हमारे लोकतंत्र को जीवंत बनाए रखने के लिए जमीनी स्तर पर काम करते हैं, मैं उन सभी की बहुत सराहना करना चाहूंगा। आज मैं अपने युवा साथियों से फिर आग्रह करूंगा कि वे 18 साल का होने पर वोटर के रूप में खुद को जरूर रजिस्टर करें। संविधान ने हर नागरिक से जिस कर्तव्य भावना के पालन की अपेक्षा रखी है, इससे वो अपेक्षा भी पूरी होगी और भारत का लोकतंत्र भी मजबूत होगा। एक बार फिर आप सभी को मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।
1: अभी आप सुन रहे थे भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को। वो कह रहे थे कि वोटर कार्ड जरूर बनवाएं और वोट जरूर डालें। और जैसे ही आप अपना पहला वोटर कार्ड बनवाएं, तो उसे अपने जन्मदिन की ही तरह उत्सव के रूप में मनाएं। ऐसी अधिक जानकारी के लिए सुनते रहिए।

0: सुनो शारदा 90.8 FM।
1: पापा कहते हैं बेटा बड़ा नाम करेगा, पता नहीं मेरा देवांश क्या करेगा। 12th पास हो गया देवांश, फ्यूचर के बारे में कुछ सोचा है कि नहीं सोचा है?
2: बिल्कुल सोचा है पापा।
1: क्या सोचा है?
2: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट ऑफर करता है एनिमेशन, VFX, गेमिंग डिजाइन एंड विजुअल इफेक्ट्स का कोर्स। मेरे तो सभी फ्रेंड्स ने वहाँ पे एडमिशन ले लिया है और आपके बेस्ट फ्रेंड शर्मा जी के बेटे ने भी वहाँ पर एडमिशन ले लिया है।
1: ये शर्मा वही है ना जिनके बेटे ने टॉप किया है?
2: जी पापा।
1: क्या बात है, तो फिर आज ही चलते हैं।
2: हाँ पापा बिल्कुल।
3: The programs under Sharda School of Media, Film and Entertainment are designed to enable students to develop skills to think about artistic and cultural interventions critically.
4: So where are you? The world is here at Sharda University.
5: Hi, मैं हूं नवाजुद्दीन सिद्दीकी और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM ग्रेटर नोएडा का अपना

भाई मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM नए अंदाज में। सुनो शारदा 90.8 FM सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम। भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर। तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।

हाय, मैं हूँ विदिता बाग और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।

0: आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सेहत से ही लाभ कही और मैं हूं आपके साथ शशि कपूर। जैसा कि आप जानते हैं सुनो शारदा 90.8 FM और स्मार्ट मिलकर के एक स्वास्थ्य जन जागरूकता मुहिम चला रहे हैं जिसका नाम है सेहत से ही लाभ कही, ताकि हमारे जो समुदाय के लोग हैं वो सब जागरूक रहें, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें और अपने देश की तरक्की में अपना योगदान दें। और आप सभी जानते हैं इन दिनों भीषण गर्मी पड़ रही है और ऐसे में बीमारियां भी होती हैं, तो कौन कौन सी चीज़ें हमें खाने चाहिए, कैसे बचना चाहिए, क्या बीमारियां हो सकती हैं, तो इन सब बातों की जानकारी के लिए आज हमारे साथ में हैं डॉक्टर आर के शर्मा जी, उनसे हम बात करेंगे। तो सबसे पहले डॉक्टर साहब आपका कार्यक्रम में स्वागत है।
1: धन्यवाद
0: डॉक्टर साहब। गर्मी का मौसम है, गर्मी पड़ रही है, चिलचिलाती धूप है, तो किस तरह से लोग अपना इस मौसम में ध्यान रखें?
1: इस मौसम में सबसे पहले ये है कि धूप में काम कम से कम करें, सुबह शाम ज़्यादा करें, धूप में सिर पर कपड़ा रख के चलें, पानी बोतल या साथ में इलेक्ट्रॉल ORS या जो भी चीज़ अवेलेबिलिटी हो, या घर से अपने एक छाछ बेलपत्थर का जूस या जो भी जूस लेकर चल सकते हैं वो लेकर चलें साथ में, ताकि बीच में कहीं उसे पी सकें।
0: बिल्कुल डॉक्टर साहब, गर्मी हो या मौसम खराब हो, जो काम करने वाले हैं उनको तो अपना काम करना ही है, जाना ही है,
1: काम बहुत जरूरी है, काम बिना तो कुछ नहीं है।
0: तो काम पर जो लोग जाते हैं, खास करके जो शारीरिक परिश्रम करते हैं, तो उनको कैसे अपना ध्यान रखना चाहिए?
1: उनको यही सिर पर कपड़ा रखें हर समय
0: जी।
1: दूसरा ये कि कम से कम जो है मतलब ऐसे ही समय यदि देखें बहुत ज्यादा चिलचिलाती धूप है, 2 घंटे का टाइम एक बजे से लेकर 3 बजे तक, उस समय थोड़ा सा जो है कम काम करें या रेस्ट,
0: और
1: सुबह बहुत जल्दी से काम कर सकते हैं, शाम को भी देर तक काम कर सकते हैं, उस समय थोड़ा ठंड रहती है, पैर में जो है सब ज़्यादा परेशानी आती है।
0: तो आपके कहने का मतलब ये है कि जो काम है उसको, जो मौसम ठंडा ठंडा होता है थोड़ा, तो उसी में निपटा दें, और जो धूप होती है
1: उसमें आराम करें,
0: उसमें आराम
1: वहाँ भी जगह मिल जाए, अपना लेबर है तो अपना कहीं पेड़ है कुछ है या शेड है कहीं भी किसी तरह का जगह है उनको वहाँ पर अपना।
0: तो डॉक्टर साहब ये तो बात रही कि धूप से गर्मी से कैसे अपना बचाव कर सकते हैं, अब ये जो मौसम होता है ना बीमारियां भी हो जाती हैं, तो कौन कौन सी बीमारियां ज़्यादा होती हैं इस मौसम में?
1: खास तौर से जो है आपको एक तो उल्टी दस्त आते हैं, दूसरा बाजार का खाना पीना कहीं खा लिया, कोल्ड ड्रिंक पी ली तो गला खराब हो जाता है, पेट खराब हो जाता है, उससे लूज मोशन हो जाते हैं, तो बचाव करें। बाजार का खाना कम से कम खाएं, ना खाएं तो अच्छा है, और यदि बहुत ज़्यादा मजबूरी है तो बहुत हल्का या कम खाएं।
0: तो जैसे आपने बताया कि दस्त की बीमारी हो जाती है, उल्टी की बीमारियां भी हो जाती हैं,
1: हीट स्ट्रोक
0: हो जाता है,
1: बुखार आ जाता है,
0: बुखार भी आ जाता है, अब बच्चों में जैसे डायरिया भी होता है, तो इसके क्या कुछ कारण हैं?
1: डायरिया का भी एक मेन कारण है धूप में, यदि घर में रहते तो नहीं होता है, लेकिन बाहर के आना जाना रखते हैं औरतें हैं बच्चों को लेकर कहीं रिश्तेदारी में आना जाना कर रही हैं और धूप में गर्मी में है तो उनको उल्टी दस्त के ज़्यादा चांसेस है।
0: तो जिन बच्चों को मान लीजिए डायरिया हो गया है, कभी ऐसा देखा जाता है उल्टी भी है और उसको
1: लूज मोशन भी है,
0: तो किस तरह से इस बीमारी पर काबू पाया जा सकता है?
1: सबसे पहले तो उनको यही है कि थोड़ा सा उसको कोई उल्टी के लिए सबसे पहले जाना पड़ेगा, क्योंकि उल्टी जब तक नहीं रुकेगी दस्त वाली दवा भी नहीं पचेगी, तो सबसे पहले उसको उल्टी कंट्रोल करने के लिए लिक्विड आता है उल्टी के रोकने के लिए, उसके बाद ORS का पानी पिलाइए उसको, ORS का लिक्विड भी आता है रेडीमेड बना हुआ और ORS का जो पैकेट घोल के बना सकते हैं। तीसरा फिर उसको दस्त की दवा दें, कोई इन्फेक्शन है तो उसके लिए एंटीबायोटिक देनी पड़ सकती है, इन्फेक्शन नहीं है पेट में ज़्यादा तो खाली जो है दूध मोशन के लिए कोई टैबलेट वगैरह या लिक्विड में दे सकते हैं।
0: बिल्कुल डॉक्टर साहब, कई बार ऐसा होता है कि बहुत दूर दराज में कोई रहते हैं, मान लीजिए रात में ये दिक्कत हो गई, अब वो डॉक्टर साहब के पास जा नहीं सकते उस दौरान, तो उस दौरान वो क्या कुछ उपाय अपना सकते हैं?
1: घरेलू उपाय हैं, नमक चीनी का घोल ले सकते हैं, ORS तो लगभग गाँव आजकल सब जगह मिल जाता है, क्योंकि आशा आंगनबाड़ी के सबके पास में ORS रहता है, तो ORS का पानी तो पिला ही दें कम से कम, यदि और दवा भी नहीं मिलती है कोई और दवा मिल जाए आप, क्योंकि अब तो स्टोर भी काफ़ी लगभग हर गांव में एक आध कहीं ना कहीं स्टोर है, तो वहाँ से उल्टी की दवा तो ले ही सकते हैं।
0: तो डॉक्टर साहब जैसे अभी आप ORS की सिफारिश बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, तो इसके बारे में थोड़ा बताइए क्या चीज़ है ये ORS?
1: ORS एक जीवन रक्षक घोल है
0: जी,
1: और खाली दस्त उल्टी के लिए नहीं है, ये किसी भी हीट स्ट्रोक में गर्मी के समय में, या आप तो देख रहे हैं कि हमें थकान भी हो रही है कहीं पर कमजोरी महसूस कर रहे हैं, तब भी ORS का घोल जो होता है काम।
0: तो कहने का मतलब आपका यही हो गया कि अगर मान लीजिए कोई हमें बीमारी भी नहीं है गर्मी के मौसम वाली,
1: तब भी उसको ले सकते हैं,
0: तब भी हम उसको ले सकते हैं। अच्छा, हम जानना चाहेंगे कि अगर कोई अपने आप को स्वस्थ रखना चाहता है कि भाई हम अपने स्वस्थ रहें, तो किस तरह से उसकी दिनचर्या होनी चाहिए?
1: दिनचर्या तो यही है कि सुबह जल्दी उठे
0: जी,
1: कुछ एक्सरसाइज व्यायाम अपना करें, काम भी करें लेकिन व्यायाम सबसे पहले है, ताकि इससे इसमें फुर्ती आ जाए। दूसरा कम खाना और गम खाना, ये दोनों चीज़ साधन ऐसी है जिससे हमेशा स्वस्थ रहोगे, मन भी शांत रहेगा और शरीर भी ठीक रहेगा।
0: बिल्कुल, बहुत ही अच्छी बात आपने कही है, जो कार्यक्रम चल रहा है सेहत सही लाभ कही, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे?
1: बहुत अच्छा है प्रोग्राम आपका ये, और इस चीज़ को जागरूकता के लिए जगह जगह इसको सुनाया जाए, बताया जाए, जो भी अच्छे आपको जो है कहीं पे इस तरह की क्लिप मिलती है तो वो आपको जो बाहर उसको पब्लिक में सुनाया जाए।
0: आखिर में हमारे जो सुनने वाले हैं श्रोता हैं उनके लिए क्या संदेश देंगे?
1: गर्मी से बचें थोड़ा सा जितना हो सकता है, जितना हो सकता है, ये नहीं कि काम बंद कर दें, बाहर का बाजार का खाना कम से कम खाएं, बहुत ही मजबूरी में बाहर का खाना खाएं, घरेलू लिक्विड जो लें, मट्ठा हो, कोई मैंगो का जो आजकल जैसे पना बना लेते हैं वो ले लो, बेल पत्थर का जूस ले लो, ORS का पानी ले लो, ये घर से लेके चलें कुछ, और घर से एक बोतल पानी भी लेके चलें उसमें।
0: बिल्कुल डॉक्टर आर के शर्मा जी, बहुत ही अच्छी जानकारी आपने दी है रेडियो के माध्यम से।

0: नमस्कार, मैं हूँ अभिनव चतुर्वेदी और आप सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।
1: राम नाम दोस्त, राम सत श्री अकाल, आदाब, मैं हूँ गगन आपके साथ और आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM। स्मार्ट संस्था के साथ मिलकर एक खास संदेश मैं आप तक पहुँचाना चाहता हूँ। क्या आप हर समय थकान महसूस करते हैं? छोटे छोटे काम करने पर क्या आपकी सांस फूलती है, चक्कर आता है, स्किन पीली पड़ रही है या बार बार सिर दर्द होता है? तो माय डियर फ्रेंड्स, ये शरीर में कम हीमोग्लोबिन यानी एनीमिया के संकेत हो सकते हैं। कम हीमोग्लोबिन का मतलब है कि शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, जिससे काम करने की डेली एनर्जी, सेहत और यहाँ तक कि प्रेगनेंसी के रिजल्ट्स भी प्रभावित हो सकते हैं। समझ रहे हैं ना मैं क्या कह रहा हूँ? लेकिन अच्छी बात यह है कि एनीमिया से बचाव और इलाज दोनों संभव है। बस आप इसके सिम्टम्स को नजरअंदाज न करें, संतुलित पौष्टिक आहार खाएं, नियमित जांच कराएंगे और सही उपचार लेंगे तो यकीन मानिए कि आप पूर्ण रूप से स्वस्थ हो जाएंगे। ऐसी अपडेट के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM। फिल्म मेकिंग एक क्रिएटिव फील्ड है और यदि आप क्रिएटिव सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है। तो आज विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
2: The world is here.

हमारा शरीर जब अग्नि के संपर्क में आता है तो शरीर को बड़ी पीड़ा होती है। कल्पना करिए, जब किसी इंसान के चारों तरफ आग ही आग हो और जब वो वहां फंस जाए जहां से निकलना मुश्किल हो, तो हम कल्पना कर सकते हैं कि कितनी बड़ी घटना दुर्घटना घट सकती है। आग से अपने आप को हम कैसे बचा कर रखें, वो कौन कौन सी सावधानियां हैं जो आपको हमें बरतने की बहुत जरूरत है। राम राम, दो असलाम, सत श्री अकाल, आदाब, मैं हूं गगन आपके साथ और आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि कहीं कभी जनधन हानि न हो, लेकिन अगर हम लापरवाही बरत रहे हैं तो ये हमारे लिए सही नहीं है। इस गर्मी के मौसम में हमें सिर्फ कुछ सावधानियों को ध्यान में रखने की जरूरत है, क्योंकि दिल्ली NCR में बढ़ती आग की घटनाओं की वजह से जनधन हानि हमें देखने को मिल रही है। और इन घटनाओं से सबक लेते हुए गौतम बुद्ध नगर जिला क्या कर रहा है उसके बारे में बात करते हैं और हमें क्या करना है। क्लब, होटल, मॉल, स्कूल और अस्पतालों के प्रबंधकों के साथ एक हमें मीटिंग करनी चाहिए, जो कि सरकारी अमला ये करता रहता है समय दर समय। हमारा फर्ज बनता है कि इस तरीके की मीटिंग में हमें सहयोग करना चाहिए। जी हाँ, आपदा प्रबंधन योजना, इसके तहत अग्नि सुरक्षा उपकरण, हर मंजिल पर वर्किंग कंडीशन में स्मोक डिटेक्टर, फायर अलार्म और सही श्रेणी के अग्निशमक यंत्र लगाए। निकास मार्ग, यानी कि आपातकालीन सीढ़ियों और बाहर निकलने के रास्तों को हमेशा साफ रखें, वहां कोई सामान जमा ना करें। विद्युत सुरक्षा, यानी कि बिजली के आउटलेट को ओवरलोड ना करें और शॉर्ट सर्किट से बचने के लिए सालाना वायरिंग की जांच करवाएं। इमरजेंसी प्लान, यानी अपने संस्थान या घर का एक फ्लोर प्लान यानी निकासी नक्शा बनाएं और समय समय पर फायर मॉक ड्रिल का अभ्यास करें। आग लगने की स्थिति में तुरंत क्या करें, ध्यान दीजिए, अलार्म बजाएं। आग दिखने पर तुरंत फायर अलार्म का बटन दबाएं और आग आग चिल्लाकर दूसरों को सतर्क करें। तुरंत कॉल करें अग्निशमन सेवा को सूचित करने के लिए, तुरंत 101 नंबर पर कॉल करें। सीढ़ियों का प्रयोग, यानी बाहर निकलने के लिए हमेशा केवल सीढ़ियों का उपयोग करें, लिफ्ट का उपयोग बिल्कुल ना करें। धुएं से बचाव, अर्थात यदि कमरे में धुआं भरा हो तो नाक मुंह को गीले कपड़े से ढकें और फर्श पर झुककर या रेंगकर बाहर निकलें। दरवाजा जांचें, इसके अंतर्गत बात सामने आती है कि किसी भी बंद दरवाजे को खोलने से पहले उसे हाथ के पिछले हिस्से से छूकर देखें, यदि वो गर्म है तो उसे न खोलें। कहने का आशय यही है कि आपकी जान बेशकीमती है। कहते हैं कि सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी, हमें दुर्घटना घटने से बचाना है तो सावधानी को ध्यान में रखना है। अपना ख्याल रखें और ऐसी जनहित में जारी जानकारी को सुनने के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM।

0: Hi, this is Shalmali Kholgare and you're listening to me on 90.8 FM Suno Sharda.
1: नमस्कार, आप सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 एफएम, मेरे यानी गगन के साथ बात हेल्थ की में। आज हम बात करने वाले हैं कि विटामिन B12 की कमी से क्या क्या दिक्कतें परेशानियां हमारे सामने आ सकती हैं। बात करते हैं विटामिन B12 की कमी से शरीर और ब्रेन हो सकता है कमजोर। ये 5 फूड्स खाकर इस कमी को आप पूरा कर सकते हैं। विटामिन B12 की कमी से बचने के लिए लोगों को अपनी डाइट में ऐसे फूड्स शामिल करने की जरूरत पड़ती है जो विटामिन B12 से भरपूर हों। जाहिर सी बात है कि इसके बारे में कुछ रोज पहले हमने बातें की थी, लेकिन अब हम इससे कुछ आगे बढ़ते हैं तो बात निकलकर ये सामने आती है कि विटामिन B12 की कमी से बचने के लिए कुछ फूड्स बताए गए हैं, वो अगर आप खाते हैं तो निश्चित तौर पर इसका फायदा आपको आपकी सेहत में देखने को मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और विस्तार से बात करते हैं। विटामिन B12 की कमी की समस्या काफी कॉमन है, हालांकि कई बार लोग इसे अधिक गंभीरता से नहीं लेते। लेकिन क्या आप जानते हैं कि विटामिन B12 की कमी हो जाने के बाद मसल्स में कमजोरी और जोड़ों में दर्द जैसी परेशानियां हो सकती हैं? विटामिन B12 DNA बनाने का काम करता है, जो ये नर्वस सिस्टम को काम करने में भी सहायता करता है। हमारा शरीर विटामिन B12 का उत्पादन खुद नहीं कर सकता, इसीलिए इसकी कमी होने की संभावना भी बढ़ जाती है। विटामिन B12 की कमी से बचने के लिए लोगों को अपनी डाइट में ऐसे फूड्स शामिल करने की जरूरत पड़ती है जो विटामिन B12 से भरपूर हों। हम जानेंगे ऐसी फूड्स के बारे में जिनके सेवन से पर्याप्त मात्रा में विटामिन B12 पाया जा सकता है। बात करते हैं विटामिन B की कमी क्यों होती है, ये भी जानना समझना हमारे लिए बहुत जरूरी है। न्यूट्रिशनिस्ट डॉक्टर प्रिया पालन के अनुसार उम्र बढ़ने के साथ लोगों के शरीर में विटामिन B12 की कमी होने की आशंका भी बढ़ जाती है। मसल्स में कमजोरी, हाथ पैर सुन्न हो जाना, एनीमिया और कमजोरी जैसे लक्षण दिखाई दे सकते हैं। विटामिन B12 की पर्याप्त मात्रा के लिए डॉक्टर पायल कुछ विशेष फूड्स के सेवन की सलाह देती है। चलिए जानते हैं, सालमन मछली की बात करते हैं। नॉन वेजिटेरियन फूड्स में विटामिन B12 पाया जाता है, इसके लिए आप सालमन और टूना मछली का सेवन कर सकते हैं। बात करते हैं हरी पत्तेदार सब्जियों के विषय में। विटामिन B12 से भरपूर फूड्स में हरी पत्तेदार सब्जियां और कई फलों का नाम भी शामिल है। केला, पालक और चौलाई जैसी सब्जियों का सेवन करने से आपको विटामिन B12 प्राप्त हो सकता है। वहीं सीजनल फ्रूट्स का सेवन भी करने से विटामिन B12 मिल सकता है। लो फैट पनीर के विषय में जानते हैं। एक्सपर्ट्स के अनुसार लो फैट डेयरी प्रोडक्ट्स जैसे दही, पनीर, चीज और दूध का सेवन करने से विटामिन B12 की अच्छी मात्रा प्राप्त हो सकती है। डेयरी प्रोडक्ट्स का सेवन उन लोगों के लिए और भी महत्वपूर्ण है जो नॉनवेज नहीं खाते। दूध उन शाकाहारी फूड्स में से एक है जो विटामिन B12 से समृद्ध होते हैं, साथ ही इससे

प्रोटीन और कैल्शियम भी प्राप्त हो सकता है। बात करते हैं मशरूम की। कैल्शियम और विटामिन डी के अलावा विटामिन B12 की अच्छी मात्रा मशरूम्स में पाई जाती है। वहीं मशरूम में प्रोटीन और कई माइक्रोन्यूट्रिएंट्स भी पाए जाते हैं। आशा करता हूं ये जानकारी का आपने लाभ उठाया होगा। ऐसी खास जानकारी सुनने के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो साधन 90.8 FM।

0: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, जहां सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया पर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ, आप यहीं के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in।
1: नमस्ते, मेरा नाम सिया है। मैं 12 साल की हूँ और मैं स्कूल में पढ़ती हूँ। मेरे को पढ़ना पसंद है और अपने फ्रेंड्स के साथ खेलना और बातें करना पसंद है। मैं कहानियाँ पढ़ती हूँ, घर पर गेम्स खेलती हूँ। सबसे ज्यादा तो मुझे भूतों की कहानी सुनना पसंद है। बहुत दिन पहले छुट्टी में मैं अपने गांव गई थी। गांव में मैं अपने दादा और अपनी दादी के साथ रोज घूमने जाती थी, और फिर वहां जाकर मैं बहुत बीमार हो गई। मेरे गले पर एक बड़ा गोला जैसा बन गया था। अप्पा और अम्मा काफी डर गए थे। फिर वो मुझे गांव में डॉक्टर अंकल के पास ले गए। पता है, डॉक्टर ने टेस्ट करने के बाद कहा कि मेरे को तो ट्यूबरकुलोसिस या टीबी हो गई है। अब पूछो कि टीबी क्या होती है? ये बीमारी बैक्टीरिया से होती है। बैक्टीरिया पता है ना, ये बहुत छोटे छोटे कीटाणु जैसे होते हैं। ये नजर भी नहीं आते। वैसे तो ये हमारे फेफड़ों पर हमला करती है, लेकिन इसके कारण हमारे शरीर के दूसरे हिस्से में भी इन्फेक्शन हो सकता है। पता है, मुझे तो टीबी एक भूत जैसी लगती थी, बहुत डराती थी। फिर ना मुझे डॉक्टर अंकल ने समझाया कि टीबी तो किसी को भी हो सकती है, लेकिन सबसे अच्छी बात तो ये है कि इसका पूरा इलाज हो सकता है। तब मैंने फैसला किया कि मुझे इस बीमारी से लड़ना ही होगा। इसके बाद 2 साल तक मेरा इलाज चला, क्योंकि ये वाली टीबी ना कुछ अलग तरह की थी। इतने दिन तक इलाज चलने के बाद भी मैंने तो सोच रखा था कि टीबी से लड़ती रहूंगी। इसकी दवा मुझे इतनी कड़वी लगती थी, फिर भी मुझे जूस के साथ ये दवा लेनी पड़ती थी। कभी कभी तो मुझे उल्टी भी होती थी, लेकिन फिर भी डॉक्टर अंकल कहते थे कि अगर मुझे ठीक होना है तो दवा लेनी ही पड़ेगी। मैं रोज अपनी टैबलेट खाती थी और बहुत सारा अच्छा खाना भी खाती थी। मैं रोती भी थी, लेकिन हमेशा नहीं, सिर्फ कभी कभी, क्योंकि मैं बहादुर और स्ट्रांग हूँ ना। इसके बाद फिर कुछ ही दिनों में मैंने टीबी को हरा दिया। मैंने देखा कि ये भूत तो खुद ही डर कर भाग गया। मुझे बड़ा मजा आया। याद रखें, टीबी किसी को भी हो सकती है, लेकिन अगर हम अपना ख्याल रखें तो इसके बैक्टीरिया को फैलने से रोक सकते हैं। आप सब लोग टीबी के लक्षण ध्यान से सुने और याद भी रखें। आपको बहुत सारी खांसी होगी जो 2 हफ्तों के बाद भी ठीक नहीं होती। सीने में दर्द होगा, खांसी या बलगम में खून निकलेगा। इसके अलावा अगर खूब ठंड लगे, रात को पसीना आए, भूख ना लगे या बुखार आए और कमजोरी जैसे लगने लगे, तो समझ जाना कि कुछ तो गड़बड़ है और तुरंत डॉक्टर अंकल के पास जाना। याद रखें कि आप भी टीबी को रोक सकते हैं। हमेशा मुंह ढककर खांसें, और यदि आपको टीबी के लक्षण दिखाई दें तो तुरंत ही टीबी की जांच करवाएं। टीबी की जांच एवं इलाज सरकारी अस्पतालों और कुछ निजी अस्पतालों में मुफ्त में करी जाती है। टीबी का इलाज पूरा करना जरूरी है। और हाँ, एक बात और, किसी भी टीबी मरीज के साथ भेदभाव कभी नहीं करना, क्योंकि उन्हें भी तो प्यार और देखभाल की जरूरत होती है। टीबी का इलाज हो सकता है, आप इस बीमारी को हरा सकते हैं, जैसे मैंने हरा दिया। अच्छा, चलती हूँ, होमवर्क का टाइम हो गया।

0: भाई,
1: भाई मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM नए अंदाज में। सुनो शारदा 90.8 FM सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम। भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर। तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM। सुनो
2: शारदा। एक छोटी सी लापरवाही से बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है।
3: ऐसे ही जब आपकी जिंदगी भर की कमाई कोई साइबर फ्रॉडस्टर लूट ले तो तकलीफ तो होगी ही। हमेशा याद रखें अपनी बैंक डिटेल्स किसी के साथ शेयर ना करें।
2: साइबर फ्रॉड में पैसों की ठगी होने पर तुरंत इसकी शिकायत नेशनल साइबर क्राइम पोर्टल www.cybercrime.gov.in पर या हेल्पलाइन नंबर 1930 पर करें। इससे आपके पैसे रिकवर होने की संभावना बढ़ जाती है।
4: हाय मैं हूं रणविजय, आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा एट 90.8 FM।

0: Sharda School of Media, Film and Entertainment is a temple of creativity. यदि आप मीडिया में करियर बनाना चाहते हैं तो ज्वाइन कीजिए शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट. ये कोर्स ऑफर करता है बैचलर्स एंड मास्टर्स डिग्री इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, स्पेशली डिजाइन फॉर फिल्म, टेलीविजन, ओटीटी प्रोडक्शन, एनिमेशन, वीएफएक्स, गेमिंग डिजाइन, पब्लिक रिलेशन एंड एडवर्टाइजिंग.
1: और हाँ, एक खास बात, SSMFE का अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM. ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन. आरजिंग, एडिटिंग, प्रोडक्शन और स्क्रिप्ट राइटिंग सिखाने के साथ इंटर्नशिप का भी गोल्डन चांस देता है. तो फिर कहीं देर ना हो जाए, कॉल करिए 01204060210 पर और विजिट करिए www.sharda.ac.in. शारदा यूनिवर्सिटी, नॉलेज पार्क, ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश.
2: हाय, मैं हूँ विदिता बाग और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM, ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन.

0: कहते हैं बेटा बड़ा नाम करेगा, पता नहीं मेरा देवांश क्या करेगा। 12th पास हो गया देवांश, फ्यूचर के बारे में कुछ सोचा है कि नहीं सोचा है?
1: बिल्कुल सोचा है पापा।
0: क्या सोचा है?
1: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट ऑफर करता है एनिमेशन, VFX, गेमिंग डिजाइन एंड विजुअल इफेक्ट्स का कोर्स। मेरे तो सभी फ्रेंड्स ने वहाँ पे एडमिशन ले लिया है और आपके बेस्ट फ्रेंड शर्मा जी के बेटे ने भी वहाँ पर एडमिशन ले लिया है।
0: ये शर्मा वही है ना जिनके बेटे ने टॉप किया है?
1: जी पापा।
0: क्या बात है, तो फिर आज ही चलते हैं।
1: हाँ पापा बिल्कुल।
2: The programs under Sharda School of Media, Film and Entertainment are designed to enable students to develop skills to think about artistic and cultural interventions critically.
3: So where are you? The world is here at Sharda University.
4: नमस्कार, मैं हूं अभिनव चतुर्वेदी और आप सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।
5: ये मीनू है मेरी बेस्ट फ्रेंड और ये प्रशांत है मेरा।
6: तेरा
5: चले चले।

0: फिल्म मेकिंग एक क्रिएटिव फील्ड है और यदि आप क्रिएटिव सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है। तो आज विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
1: The world is here.
2: हाय प्रिया, तुम इतनी टेंशन में क्यों हो? आखिर हुआ क्या तुम्हें?
3: रोहन, अब क्या बताऊँ, इतने सारे कोर्स है, समझ नहीं आ रहा बैचलर्स में एडमिशन कहाँ लूँ।
2: अच्छा प्रिया, ये बताओ कि तुम्हें लाइफ में करना क्या है?
3: मुझे मैं चाहती हूँ मेरी आवाज पूरी दुनिया में गूंजे। मैं चाहती हूँ कि कैमरा उठा के निकल जाऊँ और फोटोग्राफी करूँ। मैं चाहती हूँ कि अपने ट्रेवल व्लॉग्स और फिल्में बनाऊँ। मैं चाहती हूँ।
2: मैं समझ गया प्रिया, तुम क्या चाहती हो। तुम ऐसा कोर्स चाहती हो जिसमें रेडियो, फिल्म और एंटरटेनमेंट का कॉम्बो हो।
3: लेकिन ऐसा कोई कोर्स है क्या?
2: बिल्कुल प्रिया, शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट एक ऐसा कोर्स ऑफर करता है जिसमें आपको सब कुछ सीखने को मिलेगा।
3: क्या सच में? इसका मतलब मेरे सपने साकार हो सकते हैं, तो चलें।
2: हाँ, मैंने तो एडमिशन ले लिया है, अब तुम्हारी बारी है।
4: Come and explore the world of Sharda School of Media, Film and Entertainment, which makes you industry ready.
0: और साथ ही साथ आपको मिलेगा ऑपरेशनल सुरुशादा 90.8 FM कम्युनिटी रेडियो स्टेशन के साथ काम करने का सुनहरा मौका, जहां से आप आरजेइंग सीख सकते हैं, प्रोडक्शन करना सीख सकते हैं, वॉइस ओवर करना सीख सकते हैं। और टीवी इंडस्ट्री का मौका चाहते हैं तो शारदा टीवी भी आपको मौका देता है, जहां नजदीकी से एक्टर, डायरेक्टर और प्रोडक्शन टीम के साथ सीखने को बहुत कुछ मिलता है।
4: सो वेयर आर यू, द वर्ल्ड इज हियर एट शारदा University.
5: हाय नमस्कार, मैं हूँ आरजे रौनक और आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM पर।

हमारा शरीर जब अग्नि के संपर्क में आता है तो शरीर को बड़ी पीड़ा होती है। कल्पना करिए, जब किसी इंसान के चारों तरफ आग ही आग हो और जब वो वहां फंस जाए जहां से निकलना मुश्किल हो, तो हम कल्पना कर सकते हैं कि कितनी बड़ी घटना दुर्घटना घट सकती है। आग से अपने आप को हम कैसे बचा कर रखें, वो कौन कौन सी सावधानियां हैं जो आपको हमें बरतने की बहुत जरूरत है। राम राम, दो असलाम, सत श्री अकाल, आदाब, मैं हूं गगन आपके साथ और आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि कहीं कभी जनधन हानि ना हो, लेकिन अगर हम लापरवाही बरत रहे हैं तो ये हमारे लिए सही नहीं है। इस गर्मी के मौसम में हमें सिर्फ कुछ सावधानियों को ध्यान में रखने की जरूरत है, क्योंकि दिल्ली NCR में बढ़ती आग की घटनाओं की वजह से जनधन हानि हमें देखने को मिल रही है। और इन घटनाओं से सबक लेते हुए गौतम बुद्ध नगर जिला क्या कर रहा है उसके बारे में बात करते हैं और हमें क्या करना है। क्लब, होटल, मॉल, स्कूल और अस्पतालों के प्रबंधकों के साथ एक हमें मीटिंग करनी चाहिए, जो कि सरकारी अमला ये करता रहता है समय दर समय। हमारा फर्ज बनता है कि इस तरीके की मीटिंग में हमें सहयोग करना चाहिए। जी हाँ, आपदा प्रबंधन योजना, इसके तहत अग्नि सुरक्षा उपकरण, हर मंजिल पर वर्किंग कंडीशन में स्मोक डिटेक्टर, फायर अलार्म और सही श्रेणी के अग्निशमक यंत्र लगाए, निकास मार्ग यानी कि आपातकालीन सीढ़ियों और बाहर निकलने के रास्तों को हमेशा साफ रखें, वहां कोई सामान जमा ना करें, विद्युत सुरक्षा यानी कि बिजली के आउटलेट को ओवरलोड ना करें और शॉर्ट सर्किट से बचने के लिए सालाना वायरिंग की जांच करवाएं, इमरजेंसी प्लान यानी अपने संस्थान या घर का एक फ्लोर प्लान यानी निकासी नक्शा बनाएं और समय समय पर फायर मॉक ड्रिल का अभ्यास करें। आग लगने की स्थिति में तुरंत क्या करें, ध्यान दीजिए, अलार्म बजाएं। आग दिखने पर तुरंत फायर अलार्म का बटन दबाएं और आग आग चिल्लाकर दूसरों को सतर्क करें। तुरंत कॉल करें अग्निशमन सेवा को, सूचित करने के लिए तुरंत 101 नंबर पर कॉल करें। सीढ़ियों का प्रयोग यानी बाहर निकलने के लिए हमेशा केवल सीढ़ियों का उपयोग करें, लिफ्ट का उपयोग बिल्कुल ना करें। धुएं से बचाव अर्थात यदि कमरे में धुआं भरा हो तो नाक मुंह को गीले कपड़े से ढकें और फर्श पर झुककर या रेंगकर बाहर निकलें। दरवाजा जांचें, इसके अंतर्गत बात सामने आती है कि किसी भी बंद दरवाजे को खोलने से पहले उसे हाथ के पिछले हिस्से से छूकर देखें, यदि वो गर्म है तो उसे न खोलें। कहने का आशय यही है कि आपकी जान बेशकीमती है। कहते हैं कि सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी, हमें दुर्घटना घटने से बचाना है तो सावधानी को ध्यान में रखना है।

0: ख्याल रखिए और ऐसी जनहित में जारी जानकारी को सुनने के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM।
1: पापा कहते हैं बेटा बड़ा नाम करेगा, पता नहीं मेरा देवांश क्या करेगा। 12th पास हो गया देवांश, फ्यूचर के बारे में कुछ सोचा है कि नहीं सोचा है?
2: बिल्कुल सोचा है पापा।
1: क्या सोचा है?
2: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट ऑफर करता है एनिमेशन, VFX, गेमिंग डिजाइन एंड विजुअल इफेक्ट्स का कोर्स। मेरे तो सभी फ्रेंड्स ने वहाँ पे एडमिशन ले लिया है और आपके बेस्ट फ्रेंड शर्मा जी के बेटे ने भी वहाँ पर एडमिशन ले लिया है।
1: ये शर्मा वही है ना जिनके बेटे ने टॉप किया है?
2: जी पापा।
1: क्या बात है, तो फिर आज ही चलते हैं।
2: हाँ पापा बिल्कुल।
3: The programs under Sharda School of Media, Film and Entertainment are designed to enable students to develop skills to think about artistic and cultural interventions critically.
4: So where are you? The world is here at Sharda University.
5: Hi, this is Shalmali Kholgare and you're listening to me on 90.8 FM, Suno Sharda.

शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, जहां सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया पर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ, आप यही के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in।

0: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट इज अ टेम्पल ऑफ क्रिएटिविटी। यदि आप मीडिया में करियर बनाना चाहते हैं तो ज्वाइन कीजिए शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट। ये कोर्स ऑफर करता है बैचलर्स एंड मास्टर्स डिग्री इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, स्पेशली डिजाइन फॉर फिल्म, टेलीविजन, OTT प्रोडक्शन, एनिमेशन, VFX, गेमिंग डिजाइन, पब्लिक रिलेशन एंड एडवर्टाइजिंग।
1: और हाँ, एक खास बात, SSMFE का अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM, ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन। आरजिंग, एडिटिंग, प्रोडक्शन और स्क्रिप्ट राइटिंग सिखाने के साथ इंटर्नशिप का भी गोल्डन चांस देता है। तो फिर कहीं देर ना हो जाए, कॉल करिए 01204060210 पर और विजिट करिए www.sharda.ac.in। शारदा यूनिवर्सिटी, नॉलेज पार्क, ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश।
2: हाय, मैं हूं नवाजुद्दीन सिद्दीकी और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM, ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।

0: भाई,
1: भाई मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम नए अंदाज में। सुनो शारदा 90.8 एफएम सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम। भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर। तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 एफएम।
2: पापा कहते हैं बेटा बड़ा नाम करेगा, पता नहीं मेरा देवांश क्या करेगा। 12th पास हो गया देवांश, फ्यूचर के बारे में कुछ सोचा है कि नहीं सोचा है?
3: बिल्कुल सोचा है पापा।
2: क्या सोचा है?
3: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट ऑफर करता है एनिमेशन VFX गेमिंग डिजाइन एंड विजुअल इफेक्ट्स का कोर्स। मेरे तो सभी फ्रेंड्स ने वहाँ पे एडमिशन ले लिया है और आपके बेस्ट फ्रेंड शर्मा जी के बेटे ने भी वहाँ पर एडमिशन ले लिया है।
2: ये शर्मा वही है ना जिनके बेटे ने टॉप किया है?
3: जी पापा।
2: क्या बात है, तो फिर आज ही चलते हैं।
3: हाँ पापा बिल्कुल।
4: The programs under Sharda School of Media, Film and Entertainment are designed to enable students to develop skills to think about artistic and cultural interventions critically.
5: So where are you? The world is here at Sharda University.
6: Hi, I'm Ranvijay. You are listening to Suno Sharda at 90.8 FM.

0: हमसे मोहब्बत कमाल की होती है, जिनका मिलना मुकद्दर में ही नहीं होता।
1: हाय, मैं हूँ विदिता बाग और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM, ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।
2: हाय प्रिया, तुम इतनी टेंशन में क्यों हो? आखिर हुआ क्या तुम्हें?
3: रोहन, अब क्या बताऊँ, इतने सारे कोर्स हैं, समझ नहीं आ रहा बैचलर्स में एडमिशन कहाँ लूँ।
2: अच्छा प्रिया, ये बताओ कि तुम्हें लाइफ में करना क्या है?
3: मुझे मैं चाहती हूँ मेरी आवाज़ पूरी दुनिया में गूंजे। मैं चाहती हूँ कि कैमरा उठा के निकल जाऊँ और फोटोग्राफी करूँ। मैं चाहती हूँ कि अपने ट्रेवल व्लॉग्स और फिल्में बनाऊँ। मैं चाहती हूँ।
2: मैं समझ गया प्रिया, तुम क्या चाहती हो। तुम ऐसा कोर्स चाहती हो जिसमें रेडियो, फिल्म और एंटरटेनमेंट का कॉम्बो हो।
3: लेकिन ऐसा कोई कोर्स है क्या?
2: बिल्कुल प्रिया, शारदा स्कूल ऑफ मीडिया, फिल्म एंड एंटरटेनमेंट एक ऐसा कोर्स ऑफर करता है जिसमें आपको सब कुछ सीखने को मिलेगा।
3: क्या सच में? इसका मतलब मेरे सपने साकार हो सकते हैं, तो चलें।
2: हाँ, मैंने तो एडमिशन ले लिया है, अब तुम्हारी बारी है।
4: Come and explore the world of Sharda School of Media, Film and Entertainment, which makes you industry ready.
5: और साथ ही साथ आपको मिलेगा ऑपरेशनल सुरुशादा 90.8 FM कम्युनिटी रेडियो स्टेशन के साथ काम करने का सुनहरा मौका, जहां से आप आरजेइंग सीख सकते हैं, प्रोडक्शन करना सीख सकते हैं, वॉइस ओवर करना सीख सकते हैं। और टीवी इंडस्ट्री का मौका चाहते हैं तो शारदा टीवी भी आपको मौका देता है, जहां नजदीकी से एक्टर, डायरेक्टर और प्रोडक्शन टीम के साथ सीखने को बहुत कुछ मिलता है।
4: सो वेयर आर यू, द वर्ल्ड इज हियर एट शारदा University.
6: राहे मोहब्बत में कुछ कड़ियां ऐसी होती है जो जुड़ने पर ही समझ में आती है। मुझे तुम्हारा आज भी इंतजार है और मुझे यकीन है कि तुम जरूर आओगी।

0: कुछ सवालों के जवाब कभी नहीं मिलते हैं। मैं आज तक नहीं समझ पाया कि तुमने मुझे क्यों छोड़ दिया।
1: पापा कहते हैं बेटा बड़ा नाम करेगा, पता नहीं मेरा देवांश क्या करेगा। 12th पास हो गया देवांश, फ्यूचर के बारे में कुछ सोचा है कि नहीं सोचा है?
2: बिल्कुल सोचा है पापा।
1: क्या सोचा है?
2: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट ऑफर करता है एनिमेशन, VFX, गेमिंग डिजाइन एंड विजुअल इफेक्ट्स का कोर्स। मेरे तो सभी फ्रेंड्स ने वहाँ पे एडमिशन ले लिया है और आपके बेस्ट फ्रेंड शर्मा जी के बेटे ने भी वहाँ पर एडमिशन ले लिया है।
1: ये शर्मा वही है ना जिनके बेटे ने टॉप किया है?
2: जी पापा।
1: क्या बात है, तो फिर आज ही चलते हैं।
2: हाँ पापा बिल्कुल।
3: The programs under Sharda School of Media, Film and Entertainment are designed to enable students to develop skills to think about artistic and cultural interventions critically.
4: So where are you? The world is here at Sharda University.

0: इंडिया।
1: नमस्कार, मैं हूँ अभिनव चतुर्वेदी और आप सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।
2: पापा कहते हैं बेटा बड़ा नाम करेगा, पता नहीं मेरा देवांश क्या करेगा। 12th पास हो गया देवांश, फ्यूचर के बारे में कुछ सोचा है कि नहीं सोचा है?
3: बिल्कुल सोचा है पापा।
2: क्या सोचा है?
3: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट ऑफर करता है एनिमेशन, VFX, गेमिंग डिजाइन एंड विजुअल इफेक्ट्स का कोर्स। मेरे तो सभी फ्रेंड्स ने वहाँ पे एडमिशन ले लिया है और आपके बेस्ट फ्रेंड शर्मा जी के बेटे ने भी वहाँ पर एडमिशन ले लिया है।
2: ये शर्मा वही है ना जिनके बेटे ने टॉप किया है?
3: जी पापा।
2: क्या बात है, तो फिर आज ही चलते हैं।
3: हाँ पापा बिल्कुल।
4: The programs under Sharda School of Media, Film and Entertainment are designed to enable students to develop skills to think about artistic and cultural interventions critically.
5: So where are you? The world is here at Sharda University.
6: Zindagi, music produced and arranged by Ruhan Malik, lyrics by Saqib Nabi, only on Surushata 90.8 FM. Zindagi.

0: फिल्म मेकिंग एक क्रिएटिव फील्ड है और यदि आप क्रिएटिव सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है। तो आज ही विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
1: The world is here.

0: सुनो शारदा 90.8 FM।
1: पापा कहते हैं बेटा बड़ा नाम करेगा, पता नहीं मेरा देवांश क्या करेगा। 12th पास हो गया देवांश, फ्यूचर के बारे में कुछ सोचा है कि नहीं सोचा है?
2: बिल्कुल सोचा है पापा।
1: क्या सोचा है?
2: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट ऑफर करता है एनिमेशन, VFX, गेमिंग डिजाइन एंड विजुअल इफेक्ट्स का कोर्स। मेरे तो सभी फ्रेंड्स ने वहाँ पे एडमिशन ले लिया है और आपके बेस्ट फ्रेंड शर्मा जी के बेटे ने भी वहाँ पर एडमिशन ले लिया है।
1: ये शर्मा वही है ना जिनके बेटे ने टॉप किया है?
2: जी पापा।
1: क्या बात है, तो फिर आज ही चलते हैं।
2: हाँ पापा बिल्कुल।
3: The programs under Sharda School of Media, Film and Entertainment are designed to enable students to develop skills to think about artistic and cultural interventions critically.
4: So where are you? The world is here at Sharda University.

हमारा शरीर जब अग्नि के संपर्क में आता है तो शरीर को बड़ी पीड़ा होती है। कल्पना करिए, जब किसी इंसान के चारों तरफ आग ही आग हो और जब वो वहां फंस जाए जहां से निकलना मुश्किल हो, तो हम कल्पना कर सकते हैं कि कितनी बड़ी घटना दुर्घटना घट सकती है। आग से अपने आप को हम कैसे बचाकर रखें, वो कौन कौन सी सावधानियां हैं जो आपको हमें बरतने की बहुत जरूरत है। राम राम, दो असलाम, सत श्री अकाल, आदाब, मैं हूं गगन आपके साथ और आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि कहीं कभी जनधन हानि न हो, लेकिन अगर हम लापरवाही बरत रहे हैं तो ये हमारे लिए सही नहीं है। इस गर्मी के मौसम में हमें सिर्फ कुछ सावधानियों को ध्यान में रखने की जरूरत है, क्योंकि दिल्ली NCR में बढ़ती आग की घटनाओं की वजह से जनधन हानि हमें देखने को मिल रही है। और इन घटनाओं से सबक लेते हुए गौतम बुद्ध नगर जिला क्या कर रहा है उसके बारे में बात करते हैं और हमें क्या करना है। क्लब, होटल, मॉल, स्कूल और अस्पतालों के प्रबंधकों के साथ एक हमें मीटिंग करनी चाहिए, जो कि सरकारी अमला ये करता रहता है समय दर समय। हमारा फर्ज बनता है कि इस तरीके की मीटिंग में हमें सहयोग करना चाहिए। जी हाँ, आपदा प्रबंधन योजना, इसके तहत अग्नि सुरक्षा उपकरण, हर मंजिल पर वर्किंग कंडीशन में स्मोक डिटेक्टर, फायर अलार्म और सही श्रेणी के अग्निशमक यंत्र लगाए। निकास मार्ग, यानी कि आपातकालीन सीढ़ियों और बाहर निकलने के रास्तों को हमेशा साफ रखें, वहां कोई सामान जमा ना करें। विद्युत सुरक्षा, यानी कि बिजली के आउटलेट को ओवरलोड ना करें और शॉर्ट सर्किट से बचने के लिए सालाना वायरिंग की जांच करवाएं। इमरजेंसी प्लान, यानी अपने संस्थान या घर का एक फ्लोर प्लान यानी निकासी नक्शा बनाएं और समय समय पर फायर मॉक ड्रिल का अभ्यास करें। आग लगने की स्थिति में तुरंत क्या करें, ध्यान दीजिए, अलार्म बजाएं। आग दिखने पर तुरंत फायर अलार्म का बटन दबाएं और आग आग चिल्लाकर दूसरों को सतर्क करें। तुरंत कॉल करें। अग्निशमन सेवा को सूचित करने के लिए तुरंत 101 नंबर पर कॉल करें। सीढ़ियों का प्रयोग, यानी बाहर निकलने के लिए हमेशा केवल सीढ़ियों का उपयोग करें, लिफ्ट का उपयोग बिल्कुल ना करें। धुएं से बचाव, अर्थात यदि कमरे में धुआं भरा हो तो नाक मुंह को गीले कपड़े से ढकें और फर्श पर झुककर या रेंगकर बाहर निकलें। दरवाजा जांचें, इसके अंतर्गत बात सामने आती है कि किसी भी बंद दरवाजे को खोलने से पहले उसे हाथ के पिछले हिस्से से छूकर देखें, यदि वो गर्म है तो उसे न खोलें। कहने का आशय यही है कि आपकी जान बेशकीमती है। कहते हैं कि सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी, हमें दुर्घटना घटने से बचाना है तो सावधानी को ध्यान में रखना है। अपना ख्याल रखिए और ऐसी जनहित में जारी जानकारी को सुनने के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM।

0: Hi, this is Shalmali Kholgare and you're listening to me on 90.8 FM Suno Sharda.
1: आइए समझते हैं महावारी के चक्र को। महावारी की शुरुआत गर्भाशय की परत के टूटने से शुरू होती है। इस दौरान हार्मोन के कम स्तर की वजह से महिला या लड़की अक्सर चिड़चिड़ा महसूस करती है। महावारी के दौरान अंडाशय पर तरल से भरे हुए फॉलिक्स आने लगते हैं। इनमें से प्रत्येक में एक अंडा होता है जो बाहर आने की प्रतीक्षा कर रहा होता है।
2: फॉलिकुलर चरण, इस चरण में गर्भाशय की परत फिर से बनने लगती है। एस्ट्रोजन का स्तर लगातार बढ़ता रहता है और फॉलिकल जिसमें अंडा रहता है और बड़ा हो जाता है। अंडे के छूटने से ठीक एक दिन पहले और अंडे के छूटने का दिन सबसे ज्यादा प्रजनन योग होते हैं। ये आमतौर पर माहवारी के 11वें से 14वें दिन के बीच में होता है, लेकिन ये बहुत अधिक इस बात पर भी निर्भर करता है कि महिला या लड़की का मासिक चक्र कितना लंबा है।
1: ओव्यूलेशन चरण, इस चरण में अंडा बाहर निकलता है। यदि महिला इस दिन या 3 दिन पहले यौन संबंध बनाती है तो गर्भवती होने की संभावना सबसे ज्यादा रहती है। फॉलिकल का फटना गर्भाशय की परत को और भी मोटा बना देता है। अंडाशय से निकला हुआ अंडा फैलोपियन ट्यूब के जरिए अपनी यात्रा शुरू करता है और आगे जारी रखता है।
2: ल्यूटियल चरण, ल्यूटियल चरण के दौरान होने वाले हार्मोनल परिवर्तन अक्सर माहवारी के पहले महसूस किए जाने वाले सामान्य लक्षणों से संबंधित होते हैं, जैसे कि आमतौर पर माहवारी से पहले मूड में बदलाव, सिर दर्द, चेहरे पर मुहासे, पेट फूलना, स्तनों में भारीपन और दर्द आदि का अनुभव हो सकता है जो कि सामान्य है। गर्भाशय में जमी हुई परत एक प्रकार का रसायन छोड़ती है जो कि अंडे के निषेचित होने पर उसे गर्भाशय की दीवार से चिपकने में मदद करती है, और यदि निषेचन नहीं हुआ है तो वही रसायन उस परत को टूटने और बहकर बाहर निकलने में मदद करता है।
1: महावारी संबंधी अधिक जानकारी के लिए नजदीकी ANM या आशा से संपर्क करें।
2: यूनिसेफ के सहयोग से सुनो शारदा 90.8 FM द्वारा जनहित में जारी।
3: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, जहां सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया पर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ, आप यही के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in।

0: का सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
1: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
2: रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
0: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: भाई मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ, जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM नए अंदाज में।
4: सुनो शारदा 90.8 FM, सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम।
3: भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM, सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक।
4: इन समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर। तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।

0: हाय, मैं हूं रणविजय। आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा एट 90.8 FM।
1: नमस्कार, आप सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM में, यानी गगन के साथ बात हेल्थ की। मैं आज हम बात करने जा रहे हैं हल्दी, मेथी और सौंठ का एक साथ अगर आप सेवन करते हैं तो शरीर की 5 समस्याओं से तुरंत आपको छुटकारा मिल जाएगा। जी हाँ, हल्दी, मेथी और अदरक के पाउडर का मिश्रण शरीर के लिए फायदेमंद हो सकता है। कैसे, आइए जानते हैं इसके कुछ लाभ के बारे में विस्तार से बात करते हैं। तो बात सामने आती है कि हल्दी, मेथी और अदरक के पाउडर का मिश्रण के क्या क्या फायदे हैं। तो एक्सपर्ट बताते हैं कि हमारे देश में मसालों का भंडार है। घर की रसोई हो या फिर किसी ढाबे और रेस्टोरेंट की रसोई, हर जगह आपको मसालों की खुशबू आसानी से मिल जाएगी। मसालों का कई मिश्रण ऐसा होता है जो आपके शरीर की बीमारियों को दूर कर सकते हैं। इन मिश्रण में मेथी, हल्दी और अदरक यानी सौंठ का मिश्रण है। मेथी, अदरक और हल्दी के मिश्रण से कई परेशानियों को दूर किया जा सकता है। अब जानते हैं कि अदरक, मेथी और हल्दी से सेहत को होने वाले फायदे क्या क्या है। बात सामने आती है कि उल्टी और दस्त में किस तरीके से आराम करता है। अगर आपको उल्टी या फिर जी मिचलाने जैसा अनुभव हो रहा है तो ऐसी स्थिति में अदरक, मेथी और हल्दी का मिश्रण फायदेमंद हो सकता है। साथ ही इससे दस्त की परेशानी को कम करने में मदद मिल सकती है। अब बात करते हैं कि हड्डियों को मजबूत कैसे बनाए। अदरक, मेथी और हल्दी का मिश्रण प्रोटीन, कैल्शियम, जिंक और कई विटामिन का संयोजन होता है जो आपकी हड्डियों की मजबूती को बढ़ावा दे सकता है। नियमित रूप से इस मिश्रण के सेवन से हड्डियों को विकास और मजबूती में मदद मिल सकती है। बात जोड़ों के दर्द में किस तरीके से आराम मिलता है, तो हल्दी, मेथी और अदरक में एंटी इंफ्लेमेटरी गुण होता है जो शरीर की सूजन को कम कर सकता है, साथ ही जोड़ों में होने वाले दर्द से आराम दिला सकता है। इन मसालों की तासीर भी गर्म होती है जिससे मांसपेशियों को रिलैक्स महसूस होता है। अगर आप अपने जोड़ों के दर्द से परेशान हैं, तो हल्दी, अदरक और मेथी के मिश्रण का सेवन जरूर करें। बात इम्यूनिटी को कैसे बूस्ट करें। शरीर की कमजोर इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए हल्दी, अदरक और मेथी के मिश्रण का सेवन कर सकते हैं। इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स भरपूर रूप से मौजूद होते हैं जो आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट कर सकते हैं। इससे संक्रमण और वायरल बीमारियों से दूर करने में मदद मिल सकती है। बात कफ की परेशानी को कैसे कम करें। तो जिन लोगों को कफ की परेशानी होती है उन लोगों के लिए अदरक, हल्दी और मेथी का मिश्रण फायदेमंद होता है। दरअसल इन मसालों का मिश्रण फायदेमंद होता है जिससे वात कफ की परेशानी कम हो सकती है, साथ ही अन्य बीमारियां भी दूर होती हैं। ऐसी खास जानकारी को सुनने के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM, मेरे यानी गगन के साथ।
2: हाय, मैं हूँ विदिता बाग और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।

0: स्मार्ट के सौजन्य से प्रोजेक्ट सेहत सही लाभ कई में आपका स्वागत है। इसका उद्देश्य है आपको स्वस्थ रखना और आपकी उन्नति प्रगति और खुशहाली में योगदान देना। यह एक विशेष सामुदायिक रेडियो पहल है जिसके अंतर्गत हमारा उद्देश्य है समुदाय तक सही और सटीक जानकारी पहुंचाना। तो आइए हाथ मिलाएं और सरकार द्वारा की गई इस पहल को सफल बनाएं।
1: नमस्कार श्रोताओं, हमारे साथ है डॉक्टर कालिंदी और जानते हैं हम उनसे कि इस बदलते मौसम में अपनी सेहत का बचाव कैसे कर सकते हैं।
2: हेलो, मैं हूं डॉक्टर कालिंदी सूद, सीनियर रेसिडेंट इन डिपार्टमेंट ऑफ डर्मेटोलॉजी। मैं आपको बताऊंगी कि आप क्या प्रिकॉशंस ले सकते हैं ड्यूरिंग चेंजिंग वेदर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, आपको थोड़ा स्मार्टली ड्रेस करना है। प्लीज वेयर लेयर्स सो दैट आपको अगर तो ठंड लगती है, यू आर इजीली एबल टू पुट ऑन अ जैकेट। देन स्टे हाइड्रेटेड टू कीप योर स्किन एज वेल एज योर इम्यून सिस्टम हेल्दी। सो प्रॉपर हाइड्रेशन इज इम्पॉर्टेंट। अपने साथ पानी हमेशा कैरी कीजिए। अपनी डाइट का ध्यान दीजिए, इंक्लूड विटामिन सी रिच फ्रूट्स एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, बिकॉज इस टाइम पे वायरल इन्फेक्शन आर वेरी कॉमन। अपनी इम्यूनिटी का ध्यान रखिए, रेगुलर एक्सरसाइज जरूर कीजिए, वो भी आपकी इम्यूनिटी के लिए इम्पॉर्टेंट है। अपार्ट फ्रॉम दैट, टेक केयर ऑफ योर स्किन, बिकॉज वेदर कभी भी ड्राई हो सकता है। आपको मॉइस्चराइजर जरूर यूज करना चाहिए ऐसे टाइम में। बाहर जाने से पहले हमेशा सनस्क्रीन यूज करें। अगर आपको कोई सीजनल एलर्जीज हो जाती हैं तो इट विल बी बेनिफिशियल कि आप एक एयर प्योरीफायर में भी इन्वेस्ट करें अपने घर में। हाइजीन हमेशा मेंटेन करें। फ्रीक्वेंट हैंड वॉशिंग विल बी बेनिफिशियल फॉर यू। जब आप बाहर होते हैं अपने फेस पे आईज पे कहीं पे भी टच ना करें। अपने साथ एक हैंड सैनिटाइजर रखें एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली गेट एडिक्वेट स्लीप। थैंक यू।
1: तो ये थी हमारे साथ डॉक्टर कालिंदी जिन्होंने हमें बताया कि बदलते मौसम में अपने स्वास्थ्य का बचाव कैसे करें।
0: आप सुन रहे थे स्मार्ट के सौजन्य से हमारा विशेष कार्यक्रम सेहत सही लाभ कई, जिसका उद्देश्य है आपको स्वस्थ रखना और आपकी उन्नति प्रगति और खुशहाली में योगदान देना। तो आइए इस मुहिम को सफल बनाएं।
3: नमस्कार, मैं हूं अभिनव चतुर्वेदी और आप सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।

0: फिल्म मेकिंग एक क्रिएटिव फील्ड है और यदि आप क्रिएटिव सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है। तो आज विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
1: The world is here.
2: अरे सुनीता, कैसे बा मुनिया?
3: नमस्ते आशा दीदी,
2: सब ठीक बा?
3: साफ सफाई के ध्यान रखत आरु ना?
2: जी दीदी, जैसे रहुआ कहल रहनी हर द्वार के साफ सफाई की जिम्मेदारी लेनी हम। जहाँ कहीं भी पानी जमा देखे नी ओकेरा के तुरंत साफ करें, जैसे के पानी के ड्रम, कूलर, फ्रिज, ट्रे सब के साफ सफाई करी ले हम।
4: और आसपास कहूं भी टायर नर

0: बस अब ली हर इतवार के साफ सफाई की जिम्मेदारी, मिलके पड़ब जा मच्छर बन पर भारी।
1: हाय नमस्कार, मैं हूँ आरजे रौनक और आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM पर।

0: हमारा शरीर जब अग्नि के संपर्क में आता है तो शरीर को बड़ी पीड़ा होती है। कल्पना करिए, जब किसी इंसान के चारों तरफ आग ही आग हो और जब वो वहां फंस जाए जहां से निकलना मुश्किल हो, तो हम कल्पना कर सकते हैं कि कितनी बड़ी घटना दुर्घटना घट सकती है। आग से अपने आप को हम कैसे बचा कर रखें, वो कौन कौन सी सावधानियां हैं जो आपको हमें बरतने की बहुत जरूरत है। राम राम दो असलाम सत श्री अकाल आदाब, मैं हूं गगन आपके साथ और आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि कहीं कभी जनधन हानि न हो, लेकिन अगर हम लापरवाही बरत रहे हैं तो ये हमारे लिए सही नहीं है। इस गर्मी के मौसम में हमें सिर्फ कुछ सावधानियों को ध्यान में रखने की जरूरत है, क्योंकि दिल्ली NCR में बढ़ती आग की घटनाओं की वजह से जनधन हानि हमें देखने को मिल रही है। और इन घटनाओं से सबक लेते हुए गौतम बुद्ध नगर जिला क्या कर रहा है उसके बारे में बात करते हैं और हमें क्या करना है। क्लब, होटल, मॉल, स्कूल और अस्पतालों के प्रबंधकों के साथ एक हमें मीटिंग करनी चाहिए, जो कि सरकारी अमला ये करता रहता है समय दर समय। हमारा फर्ज बनता है कि इस तरीके की मीटिंग में हमें सहयोग करना चाहिए। जी हाँ, आपदा प्रबंधन योजना, इसके तहत अग्नि सुरक्षा उपकरण, हर मंजिल पर वर्किंग कंडीशन में स्मोक डिटेक्टर, फायर अलार्म और सही श्रेणी के अग्निशमक यंत्र लगाए, निकास मार्ग यानी कि आपातकालीन सीढ़ियों और बाहर निकलने के रास्तों को हमेशा साफ रखें, वहां कोई सामान जमा ना करें, विद्युत सुरक्षा यानी कि बिजली के आउटलेट को ओवरलोड ना करें और शॉर्ट सर्किट से बचने के लिए सालाना वायरिंग की जांच करवाएं, इमरजेंसी प्लान यानी अपने संस्थान या घर का एक फ्लोर प्लान यानी निकासी नक्शा बनाएं और समय समय पर फायर मॉक ड्रिल का अभ्यास करें। आग लगने की स्थिति में तुरंत क्या करें, ध्यान दीजिए, अलार्म बजाएं। आग दिखने पर तुरंत फायर अलार्म का बटन दबाएं और आग आग चिल्लाकर दूसरों को सतर्क करें। तुरंत कॉल करें अग्निशमन सेवा को सूचित करने के लिए, तुरंत 101 नंबर पर कॉल करें। सीढ़ियों का प्रयोग यानी बाहर निकलने के लिए हमेशा केवल सीढ़ियों का उपयोग करें, लिफ्ट का उपयोग बिल्कुल ना करें। धुएं से बचाव अर्थात यदि कमरे में धुआं भरा हो तो नाक मुंह को गीले कपड़े से ढकें और फर्श पर झुककर या रेंगकर बाहर निकलें। दरवाजा जांचें, इसके अंतर्गत बात सामने आती है कि किसी भी बंद दरवाजे को खोलने से पहले उसे हाथ के पिछले हिस्से से छूकर देखें, यदि वो गर्म है तो उसे न खोलें। कहने का आशय यही है कि आपकी जान बेशकीमती है। कहते हैं कि सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी, हमें दुर्घटना घटने से बचाना है तो सावधानी को ध्यान में रखना है। अपना ख्याल रखिए और ऐसी जनहित में जारी जानकारी को सुनने के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM।
1: नमस्कार, मेरा नाम राजेश कुमार है। मैं आज आपसे टीबी की बात करने आया हूँ। डेली रेजिमेन के अंतर्गत अब टीबी मरीज को 6 से 8 महीने रोज दवा लेनी होगी। जहाँ पहले एक दिन में कई गोलियाँ लेनी पड़ती थी, आज आपको अपने वजन के हिसाब से मात्र 2 से 5 गोलियाँ ही लेनी पड़ेंगी और बच्चों के लिए पानी में घुलने वाली दवाइयाँ दी जाती हैं। आप अपना इलाज सहयोगी किसी को भी बना सकते हैं, दोस्त, घर वाले, पड़ोसी या अन्य। तो आइए मिलकर देश को टीबी मुक्त बनाएं।
2: अधिक जानकारी के लिए 1800-1166 पर संपर्क करें।
3: टीबी हारेगा देश जीतेगा।
4: Hi, this is Shalmali Kholgare and you're listening to me on 90.8 FM Suno Sharda.
5: Now listen girls, please understand. First things first, I only want a shirt.

शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, जहां सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया पर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ, आप यही के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in। फ्रिज का

0: भाई, मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ, जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM नए अंदाज में। सुनो शारदा 90.8 FM, सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम। भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM, सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर। तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM। सुनो
1: शारदा। ताजा खबर, कमला के घर में चार औरतें चोरी छिपे घुस गईं। कमला जी, कौन थी औरतें?
2: अरे मेरी सहेलियाँ, वो आई थी पता करने मेरी मुन्नी की तंदुरुस्ती का राज।
1: क्या है राज?
2: 6 महीने पूरे होते ही पेट पूजा। रसोई में जो भी हो, जैसे दाल चावल ले लो, इसमें कोई भी साग सब्जी मिला के पकाओ, इनको मीस के गाढ़ा बनाओ, और अगर घी हो तो ऊपर से थोड़ा घी मिलाओ और बच्चे को खिलाओ। दिन में 3 बार 100 ग्राम की कटोरी में।
3: स्तनपान विकल्प नहीं संकल्प है, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
4: स्मार्ट के सहयोग से अभी आप सुन रहे थे ये खास जानकारी। स्वास्थ्य बाण कार्यक्रम के अंतर्गत ऐसी अधिक जानकारी के लिए सुनते रहिए।
5: पापा कहते हैं बेटा बड़ा नाम करेगा, पता नहीं मेरा देवांश क्या करेगा। 12th पास हो गया देवांश, फ्यूचर के बारे में कुछ सोचा है कि नहीं सोचा है?
6: बिल्कुल सोचा है पापा।
5: क्या सोचा है?
6: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट ऑफर करता है एनिमेशन, VFX, गेमिंग डिजाइन एंड विजुअल इफेक्ट्स का कोर्स। मेरे तो सभी फ्रेंड्स ने वहाँ पे एडमिशन ले लिया है, और आपके बेस्ट फ्रेंड शर्मा जी के बेटे ने भी वहाँ पर एडमिशन ले लिया है।
5: ये शर्मा वही है ना जिनके बेटे ने टॉप किया है?
6: जी पापा।
5: क्या बात है, तो फिर आज ही चलते हैं।
6: हाँ पापा बिल्कुल।
7: The programs under Sharda School of Media, Film and Entertainment are designed to enable students to develop skills to think about artistic and cultural interventions critically.
8: So where are you? The world is here at Sharda University.
9: Hi, I'm Ranvijay. You are listening to Suno Sharda at 90.8 FM.